सुबह की भोर का सौंदर्य हमारे मन मस्तिष्क को शांति और स्फूर्ति पर भर देता है। भोर होते ही गहरा नीला और काला आसमान धीरे धीरे सुनहरे गुलाबी और नारंगी रंगों की चादर ओढ़ लेता है। पक्षियों की चहचहाहट सोई हुई प्रकृति को जगा देती है और पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की मधुर आवाजें गूंजने लगती है, जो एक प्राकृतिक संगीत सा महसूस होता है। भोर की बहने वाली धीमी और ठंडी हवा तन और मन को तरोताजा कर देती है। नमस्ते लखनऊ में, मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र समाचार सुनने के लिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है, जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनी मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई भेंटवार्ता, भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में जहां मूंगफली उत्पादन की योजना है तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपीएन सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि खरीफ में जहां तिलहन उत्पादन में मूंगफली पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या सलाह है?
2: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मूंगफली में आप जानते हैं कि खरीफ में तिलहनी फसलों में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान आता है और इसलिए भी आता है कि ये असिंचित और सिंचित अवस्था दोनों अवस्था में इसकी खेती कर लेते हैं और सबसे फायदेमंद ये है कि इसमें तत्व के रूप में देखा जाए तो 10-12% कार्बोहाइड्रेट, इसमें 40-50% तक फैट पाया जाता है, वसा का जो प्रतिशत है। और इसमें अगर कुछ हमारे किसान भाई प्रजातियों का चयन करने में अगर शुरू में सावधानी लें, इसकी खेती की जा सकती है और पैदावार अच्छी ले जा सकती है।
1: तो शुरुआत करें कि खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
2: मूंगफली की जो खेती है वो ज्यादातर बलुई दोमट और दोमट भूमि में बहुत ही अच्छी होती है। जहाँ सिंचाई के साधन हो, पर्याप्त हो, जल भराव न हो, वहाँ पर खेती इसकी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से की,
1: यानी जल निकास का प्रबंध अच्छा हो
2: जी
1: और बलुई दोमट हो तो सबसे अच्छा,
2: बहुत बढ़िया है।
1: और खेत की तैयारी में?
2: खेत की तैयारी में पहले तो आप मिट्टी पलट हट से इसकी जुताई कर लेते हैं खेत की और उसके बाद कल्टीवेटर चला के और पाटा चला के इसको पूरा समतल कर लें, क्योंकि समतल करना बहुत ही जरूरी होता है बाद के लिए कि सिंचाई जब करते हैं तो उसमें पानी की बराबर की मात्रा फैलती है।
1: उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी खरीफ में? डॉक्टर साहब
2: खरीफ में पैदावार देने के लिए जैसे पुरानी अगर प्रजातियों को हम लोग लेके चलें तो पुरानी प्रजातियों में चित्रा है, कौशल है, प्रकाश है, ये चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय की हम लोग के यहाँ की प्रजाति है जो मैनपुरी में इसका रिसर्च सेंटर था उससे
1: निकली हुई है।
2: पैदावार बहुत अच्छी है। जैसे अब कुछ गुण है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। चित्रा प्रजाति जो हमारे यहाँ है, इस प्रजाति में थोड़ा सफेद कलर होते हैं जो दाने में छिलके के वो कलर होते हैं। और दूसरा कौशल प्रजाति बहुत अच्छी चली। कौशल में दोनों गुण है, सिंचित और असिंचित दोनों समय में खेती इसकी कर सकते हैं दोनों तरीके से। थोड़ा बहुत उत्पादन में अंतर आता है और ये भी 8-10 क्विंटल उपज प्रति एकड़ आपको मिल जाता है, बहुत अच्छा और बड़े दाने में है जिसकी बहुत मांग होती है। प्रकाश उसी के साथ अगर देखा जाए तो प्रकाश प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की प्रजाति होती है, वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से अंबर है और बाहर की अगर प्रजाति कहें तो TG 37A है
1: जो उत्कर्ष गर्मी में भी होती है और बरसात में
2: जी
1: भी
2: जी जी ये भी अच्छी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी की है जो रस्ट रेजिस्टेंट है। और दिव्या है, बाहर की अगर प्रजाति कहें तो GJG 31 है, GJG 9 है। और एक प्रजाति जो 2008 की है अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है, गिरनार 2, ये भी प्रजाति बहुत अच्छी है।
1: अब डॉक्टर साहब बुआई का उपयुक्त समय क्या है और बुआई में कौन कौन सी खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी है मूंगफली उत्पादन?
2: देखिए मूंगफली उत्पादन अब 15 जून से अगर देखा जाए तो इसका बुआई का समय शुरू हो चुका रहेगा, 15 जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसको ले सकते हैं
1: जी।
2: और जो मैंने पहले भी बताया कि जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां पर खेती इसकी अवश्य करें, जल भराव क्षेत्र एकदम ना होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो तापक्रम है, जो मौसम का तापक्रम भी ध्यान देने की जरूरत है कि 40°C से ज्यादा न हो तब इसकी बुआई का उचित समय माना जाता है। थोड़ा ज्यादा है तो उस समय कुछ देर टाला जा सकता है।
1: हाँ, बीज दर प्रति एकड़ कितना लगेगी डॉक्टर साहब?
2: बीज दर इसके दाने पर है, अगर बड़े दाने की जो प्रजाति है उसकी जो दाने की बीज की मात्रा है उसकी है 36-38 किलो। जैसे प्रकाश है, मैंने पहले बताया कि प्रकाश की प्रजाति थोड़ी बड़े दाने की है, कौशल थोड़ी कम है, तो कौशल और प्रकाश को अगर लिया जाए तो 36-38 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको बीज दर के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो प्रजातियां हमारी मध्यम और छोटे दाने की जो प्रजातियां हैं उसमें अगर देखा जाए तो 26-30 किलो प्रति एकड़ के दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब स्पेसिंग क्या होगी, यानी अंतरण क्या होगा, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी, और बुआई के पहले क्या बीज शोधन और भूमि शोधन करना जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न। जब मूंगफली की खेती करते हैं तो हमें पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए कि लाइन में और पूरी तरीके से इसका जो अंतर है बुआई का वो जरूर पालन करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना

0: मोबाइल नंबर बता दें
1: 94-157-44-645 9415744645 94-157-44-645।
0: डॉक्टर आरपीएन सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर रुद्र प्रताप नारायण सिंह से की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। कठिन परिस्थितियों में कभी कभी एक पंक्ति ही मनोबल को वापस लौटा देती है। आज के सुविचार में सुनी मातृभूमि के बारे में, स्वर डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का है।
3: मातृभूमि में एक ऐसी अलौकिक मोहिनी शक्ति है जो मूक से मूक प्राणी को भी मुग्ध कर लेती है। जो जितना ही अधिक संवेदनशील होता है इसके प्रति उसका भावनात्मक लगाव उतना ही अधिक रहता है। मानव हृदय में कवि चेतना सबसे अधिक संवेदनशील होने के कारण महान कवियों की रचनाओं में मातृभूमि का गौरवगान मिलता है। भारत भूमि को प्रकृति ने ऐसा इंद्रधनुषी सौंदर्य दिया है कि वह किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहता। महापुरुषों की देश सेवा प्रेरणा स्रोत है। मातृभक्त से श्रेष्ठता मिलती है, निस्वार्थ साधना इतिहास रचती है। मातृभूमि बहुलता में एकता स्थापित करके जीने की कला सिखाती है। सप्तपुरियों में एक का नाम लेने पर सभी की उपस्थिति हो जाती है। सदाचार, विचार और चरित्र से निर्मित मातृभूमि की जीवन दृष्टि कीर्ति बढ़ाती है। उपकार स्वीकार करने पर परोपकारी धन्य होता है। एक कोयल ने तोते के बच्चे से पूछा, अपने माता पिता का साथ छोड़कर मेवा फल खाकर संतुष्ट रह पाओगे? उसने कहा, पराधीनता में इसकी भूख नहीं है, अपने माता पिता के साथ पत्तियां खाकर रह जाऊंगा। अपनी मातृभूमि के प्रति है एक पक्षी का इतना उदात्त भाव। माँ की गोद में जन्म देने वाली मातृभूमि से बड़ा स्वर्ग दूसरा नहीं है। जहाँ ग्राम देवता में अन्नदाता रहते हैं, यहाँ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि पूरे विश्व को त्याग प्रेम का संदेश देती हैं। भारतीयता का सृजन मंत्र गूंजने पर जीवन चेतना थिरकने लगती है। मातृभूमि की दिव्यता बोध से अनुप्राणित कवि कुलगुरु कालिदास नगाधिराज हिमालय को देवात्मा और पृथ्वी का मानदंड कहते हैं। भवभूत के राम पूर्ण शैला गंगा अस्तवन करते हुए कुल देवता के रूप में प्रणाम करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत की एकता को एक सामाजिक सच्चाई माना। बंकिम बाबू ने राष्ट्र प्रेम को सबसे बड़ा धर्म कहा है। रामचंद्र बंदोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखते समय बंकिम चंद्र से कहा था, वंदे मातरम से बंग दर्शन का पेट नहीं भरेगा, आप जल्द एक उपन्यास लिखना आरंभ कर दें। इसका उत्तर बंकिम बाबू ने दिया, इस गीत का मर्म अभी तुम लोग नहीं समझ सकोगे, अगर 25 वर्ष जीवित रह गए तो देखोगे कि इस गीत के पीछे सारा बंगाल पागल हो उठेगा। गुरु रामकृष्ण परमहंस के कहने पर 3 बार विवेकानंद ने काली माता से धन न मांग कर ज्ञान वैराग्य मांगा। इसी देवभूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ी है। यहीं से हमारी सभ्यता संस्कृत का जन्म और पोषण हुआ है। हिम पुत्रियों के तटों पर वेदों पुराणों का गायन किया गया। देवात्मा के अतिरिक्त संसार के और किसी भाग में कस्तूरी मृग के दर्शन नहीं होते। यहाँ स्वर्ग से अधिक शांतिप्रद स्थान है। नदियों में ऋषियों मुनियों ने स्नान करके इसे अलौकिक तीर्थ बना दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सहपाठी वेदमूर्ति पंडित क्षेत्रेश चंद चट्टोपाध्याय को पत्र में लिखा, तुम वेद में कार्य करो, मैं देश सेवा के लिए कार्य करूंगा। फांसी का फंदा तोड़ने वाले नरनाहर राम नारायण ने यही जन्म लिया। त्याग परोपकार शरणागत के रक्षक शिव दधीच के देश में जन्म लेने के लिए देवता लालायित रहते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी, अटक से कटक और द्वारिका से रामेश्वरम के कण कण में राष्ट्रीयता का आदर्श समाहित है। क्या और कहीं मलय की रम्य घाटियां देखने को मिल सकती हैं, जहां तमाल वनशोभा पान बेल से ढके सुपारी वृक्ष और इलायची के बेलों से लिपटे चंदन के वृक्ष हों। सेतुबंध से लेकर सरजू, त्रिवेणी से गोदावरी, कालिंद कन्या की कलकल धारा मातृभूमि का अध्याय रचती है। गगनचुंबी माल्यवान की अद्भुत चोटियां हैं तो पंचोटी का कहना ही क्या। अगस्त्य, सातकर्णी,

0: सुतीक्ष्ण सरभंग ने तप से इसे गौरवान्वित किया है। उच्च शिखरों वाला चित्रकूट और मंदाकिनी का दृश्य मातृभूमि के कंठ में मोतियों का हार पहनाता है। अत्रि अनसुईया के क्षेत्र से पावन धारा बहती है। केरल में त्रिकूट देश का दक्षिणी मानदंड और विजय स्तंभ है। शिप्रा महाकाल के कारण अवंती को जो प्रतिष्ठा प्राप्त है वह गंगा और विश्वनाथ के कारण प्राप्त काशी के गौरव से किसी भांति कम नहीं। कलिंग में महेंद्र पर्वत के साथ हिलोरे लेता सागर का सौंदर्य स्वर्गिक है। नर्मदा सोनभद्र का उद्गम अमरकंटक अलौकिक है। हमारी पर्व परंपराएं मातृभूमि को अर्घ्य चढ़ाती हैं। जीवन बचाने के लिए मातृभूमि अनुराग विलक्षण सार्वभौमिक तत्व है। इतनी पूर्ण मातृभूमि को प्रणाम करके मन नहीं लगाता।
1: आज के सुविचार में आप सुन रही थी मातृभूमि के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: श्रोताओं आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। भक्ति भाव का आधार प्रेम श्रद्धा और समर्पण है। मन में भक्ति भाव के उठने पर नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और ये कैसे संभव है जब हम ईश्वर की आराधना करें।

शिविर का नाम जीवन की सबसे बड़ी पावन यात्रा है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को स्वर देता है कि जहाँ शिव का वास है वहीं आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है।

मीरा की भक्ति में समर्पण है, विरह है और अनंत विश्वास की मिठास है। और सच ही है, जब ये मन पूरी तरह से प्रभु में रम जाए तो संसार अपने आप छूट जाता है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती।

जय रघुनंदन। यह जय घोष प्रभु श्री राम की मर्यादा, करुणा और धर्म स्वरूप का स्मरण कराता है। श्री राम का नाम लेते ही हृदय में शांति और करुणा आ जाती है। आइए श्रद्धा भरे मन के साथ इस मधुर भजन को सुनें।

शिव शंकर ये नाम लेते ही मन में शांति, वैराग्य और आत्मबल का भाव जाग उठता है, जो हमें स्थिरता, संयम और सत्य के मार्ग की ओर ले जाता है।

नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। राम करुणा में हैं, राम शक्ति में हैं, राम एकता में हैं, राम प्रगति में हैं, राम तेरे तन में हैं, राम मेरे मन में हैं और राम घर घर में हैं। तो आइए चलते हैं राम नाम का सुमिरन करने और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 216।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकेयी तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं

के लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और सुरेश वाटिकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि

0: अस्मिन् पथसञ्चलनकार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स् देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीयवार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्दमहासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीयसुरक्षया सह आर्थिकसमृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजोन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वौ अपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडी नगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीयव्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
2: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप सभी श्रोताओं का नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। तनाव छोड़े, मुस्कान अपनाएं, अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए यही सबसे सरल उपाय। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का यही प्रयास कि हमारे श्रोता कैसे स्वस्थ रहें। आज सुनिए इस कार्यक्रम में सेहत के लिए प्रोटीन युक्त चना विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कर

0: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो न केवल भारतीय रसोई का हिस्सा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य का भी आधार है। ये है चना, जिसे हम अक्सर सादा, भुना हुआ, अंकुरित या फिर किसी सब्जी में मिलाकर खाते हैं। चना चाहे काला हो या सफेद, पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से अद्भुत है। ये न केवल ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि हमारे शरीर की कई जरूरतों को भी पूरा करता है। आज हम चने के स्वास्थ्य लाभ और इसे अपने आहार में शामिल करने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। चना प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो शाकाहारी हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है क्योंकि ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। जिन लोगों को थकावट महसूस होती है उनके लिए चना ऊर्जा का एक त्वरित स्रोत बन सकता है। इसे अपने नाश्ते में शामिल करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। चना फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। ये पेट को हल्का और साफ रखने में मदद करता है। जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए चना एक प्राकृतिक उपाय है। भुना हुआ चना या अंकुरित चना पेट के लिए हल्का होता है और पाचन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा चना हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे ये मधुमेह रोगियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। चना हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। साथ ही इसमें फाइबर की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है। नियमित रूप से चने का सेवन करने से हृदय संबंधी समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो चना आपके लिए आदर्श आहार हो सकता है। ये कैलोरी में कम और पोषण में उच्च होता है। चना खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जिससे अनावश्यक भूख को कम करने में मदद मिलती है। आप इसे भुना हुआ स्नैक के रूप में या फिर सलाद के हिस्से के रूप में भी खा सकते हैं। ये एक हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प है जो आपकी वजन घटाने की यात्रा को सरल और प्रभावी बना सकता है। चने में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करने में सहायक है। खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए चना बेहद फायदेमंद है। आयरन न केवल शरीर को ताकत देता है बल्कि रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को भी बढ़ाता है। जो लोग एनीमिया जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए चना एक प्राकृतिक और सस्ता उपाय हो सकता है। चने को अपने आहार में शामिल करना बेहद आसान है। इसे भूनकर खाना सबसे सरल और लोकप्रिय तरीका है। भुना हुआ चना हल्का, स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता है। अंकुरित चना भी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसे रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाएं। ये न केवल शरीर को डिटॉक्स करता है बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। चने का उपयोग सब्जियों और करी में भी किया जा सकता है। छोले की सब्जी भारतीय भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है और ये प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। अगर आप कुछ हल्का ट्राई करना चाहते हैं तो चने का सूप या चने का पराठा एक स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प हो सकता है। चना हमारी त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा कुछ स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं। चने का बेसन त्वचा को साफ करने और निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बालों को मजबूत और घना बनाने में भी मदद करता है। श्रोताओं, चना न केवल सस्ता और सुलभ है बल्कि ये एक संपूर्ण आहार भी है। ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके लाभों का अनुभव करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सेहत के लिए प्रोटीन युक्त चना, अभी आप इस विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा संपन्न हुई। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे प्रदक्षिणा मिश्रा से सुनिएगा काव्य पाठ। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश। सुनिएगा किस्सा चार दरवेश।

आज दूसरी दरवेश की कहानी आप सुनेंगे। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गायन आप सुनेंगे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 10:30 पर ऋषिकेश गांगुर्डे का गायन श्रोता सुनेंगे। दिन में 1:15 पर घरांगन कार्यक्रम में महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, कारण, लक्षण, बचाव विषय पर डॉक्टर सागर मीना से की गई भेंटवार्ता बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर सफलता की कहानी खरीफ उत्पादन, इस विषय पर अंगनु दास से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है ओम प्रकाश शर्मा। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर, इसमें डॉक्टर रश्मि गृह विज्ञान में करियर के बारे में बताएंगी। भेंट की है सुरेंद्र राजेश्वरी ने। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर नेशन नेक्स्ट में सुनिए ओबी पर आधारित कार्यक्रम भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत कल की अर्थशक्ति भारत। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में मौसमी बुखार कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है नीना सोनकर। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर प्रकाश चंद्र सिंह से की गई भेंटवार्ता का विषय है खरीफ में हरा चारा उत्पादन। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें गुर्दे के ट्यूमर विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज यादव से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुनिएगा। साथ ही डॉक्टर विकास कुशवाहा की वार्ता होगी फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर उपमा पांडे की गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर हरिहरन की गाई गजलें पेश की जाएंगी। पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 बजे से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हम अपने श्रोताओं को बता दें जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल प्रसारित होगी। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाद फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश, सुनेगा किस्सा चार दरवेश, आज दूसरे दरवेश की कहानी आप सुनेंगे। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जीवन में हम

जो कुछ देखते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, उसका बहुत बड़ा आधार हमारी दृष्टि होती है। इसी सत्य को हमारे ऋषि मुनियों ने एक छोटे से वाक्य में समेट दिया, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें ये सृष्टि दिखाई देती है। संसार वही रहता है, परिस्थितियां भी वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया बदल जाए तो पूरी दुनिया बदली हुई प्रतीत होती है। वास्तव में मनुष्य बाहरी संसार से पहले अपने भीतर के संसार को देखता है। यदि मन में आशा, विश्वास और सकारात्मकता है तो कठिनाइयों में भी अवसर दिखाई देते हैं, और यदि मन में निराशा, भय और नकारात्मकता है तो सुखद परिस्थितियां भी बोझ लगने लगती हैं। एक सुंदर उदाहरण है, आधा भरा हुआ गिलास दो व्यक्तियों के सामने रखा गया। एक व्यक्ति ने कहा, गिलास आधा खाली है। दूसरे ने कहा, गिलास आधा भरा हुआ है। दोनों ने एक ही वस्तु देखी लेकिन उनकी दृष्टि अलग थी। पहले व्यक्ति को कमी दिखाई दी जबकि दूसरे को संभावना दिखाई दी। यही यथा दृष्टि तथा सृष्टि का सार है। जीवन में भी हमें हर दिन ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जहां हम चुन सकते हैं कि हमें समस्या देखनी है या समाधान। प्रकृति हमें सत्य का सुंदर संदेश देती है। वर्षा होने पर किसान प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसे अपनी फसल की हरियाली दिखाई देती है, जबकि वही वर्षा किसी ऐसे व्यक्ति को परेशानी में डाल सकती है जिसे कहीं जाना हो। वर्षा तो एक ही है लेकिन उसे देखने की दृष्टि अलग अलग है। इसी प्रकार सूर्योदय सभी के लिए समान होता है, लेकिन कोई उसमें नए अवसरों का संदेश देखता है तो कोई उसे एक सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर देता है। महाभारत में एक प्रसिद्ध प्रसंग आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन की परीक्षा ली। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि संसार में कोई बुरा व्यक्ति खोज कर लाओ। युधिष्ठिर बहुत खोजने के बाद लौटे और बोले, मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य है। फिर दुर्योधन से कहा कि कोई अच्छा व्यक्ति खोज कर लाओ। वह लौटकर बोले, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। हर किसी में कोई ना कोई कमी है। संसार वही था, लोग वही थे, लेकिन दोनों की दृष्टि अलग थी, इसीलिए उनकी सृष्टि भी अलग थी। आज के समय में ये विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं की भरमार है। यदि हम केवल नकारात्मक समाचारों, शिकायतों और आलोचनाओं पर ध्यान देंगे तो हमें लगेगा कि दुनिया में केवल समस्या ही समस्याएं हैं। लेकिन यदि हम समाज में हो रहे अच्छे कार्यों, लोगों की मदद, नई खोजों और सकारात्मक प्रयासों को देखेंगे तो हमें आशा और प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को संतुलित और सकारात्मक बनाएं। एक छोटे बालक का उदाहरण लें। वह चलना सीख रहा था। कई बार गिरा, चोट लगी, लेकिन उसने गिरने को असफलता नहीं माना। उसकी दृष्टि लक्ष्य पर थी, इसीलिए वह बार बार उठता रहा और अंततः चलना सीख गया। यदि वह पहली बार गिरकर यही सोच लेता कि वह कभी नहीं चल पाएगा तो शायद वह आगे नहीं बढ़ पाता। सफलता और असफलता का अंतर भी अक्सर दृष्टिकोण का ही अंतर होता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कभी कभी जो परिस्थिति हमें संकट लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए वरदान बन जाती है। अनेक महान व्यक्तियों ने संघर्षों को अवसर में बदला। उन्होंने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी सोच को बदला। जबकि दृष्टि बदलती है तब चुनौतियां भी शिक्षक बन जाती हैं और बाधाएं भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय संबंधों में भी दिखाई देता है। यदि हम दूसरों को सम्मान, विश्वास और सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे संबंध मधुर बनते हैं। लेकिन यदि हम हर व्यक्ति में केवल दोष खोजते हैं तो रिश्तों में दूरी पड़ने लगती है। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये पंक्तियां हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देती हैं। जब हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं

आज पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव, डिजिटल सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेक विषयों पर जागरूकता की आवश्यकता है। यदि हम प्रकृति को केवल संसाधन समझेंगे तो उसका दोहन करेंगे, लेकिन यदि उसे अपनी धरोहर मानेंगे तो उसका संरक्षण करेंगे। इसीलिए समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रिय श्रोताओं, जीवन एक दर्पण की तरह है। हम जैसे भाव, विचार और दृष्टिकोण उसमें रखते हैं, वैसा ही प्रतिबिंब हमें वापस दिखाई देता है। यदि हर सुबह यह संकल्प लें कि हमें अच्छाई को देखना है, सीखने की भावना रखनी है और हर परिस्थिति में अवसर खोजने हैं, तो हमारा जीवन अधिक सुखद, सार्थक और सफल बन सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास कीजिए। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो परिस्थितियां भी अनुकूल लगने लगती हैं। जब मन में विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी आसान प्रतीत होते हैं, और जब दृष्टि में प्रेम, करुणा और आशा होती है तब पूरी सृष्टि सुंदर दिखाई देने लगती है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह

0: और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी

0: होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मैटरनल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में गायन। बोल हैं राम को नाम साजो।

अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का राग भैरव में गायन सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में

0: भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तर्कश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात

0: अर्थात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 0112371 07 0116 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC

0: महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्ता ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से भी बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर वहां के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की।

0: इसका उन्वान है रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशन। मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, अहम रियासती वुजरा और आलमी सिफारतकार इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद वस्ती गुजरात के खत्ते में सनती तरक्की की रफ्तार तेज करना है। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 30 से ज़्यादा सेमिनार मुनाकिद किए जाएंगे, जिनमें जापान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूक्रेन और रवांडा समेत शराकतदार मुल्कों के 151 माहरीन और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मरकजी गुजरात की इकतसादी तरक्की पर मरकूज इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के लिए तैयार शोबों पर तवज्जो दी जाएगी, जिनमें सेमीकंडक्टर लॉजिस्टिक्स, माहौलियात के लिए साजगार हाइड्रोजन, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़राअत, खला, दिफा और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 150 से ज़्यादा स्टॉल्स पर मुश्तमिल इस बड़ी नुमाइश में इलाकाई MSMEs, तरक्की याफ्ता टेक स्टार्टअप्स और कुछ बड़ी कंपनियां जैसे अमूल और GSFC वगैरह हिस्सा लेंगी। वडोदरा से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से निश्र किया जा रहा है। भिवंडी में एक सेशंस अदालत ने उन तीन मुलजिमों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें महाराष्ट्र टीचर अहलियत इम्तिहान टेट के पेपर लीक केस में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशकारों को शक है कि ये लोग इम्तिहान के बैन रियासती रैकेट में मुलव्विस हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
2: भिवंडी पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन इफ्शा किए गए TET सवालनामे को 1,50,00,000 रुपए में बेचने के लिए दिल्ली से भिवंडी गए थे। ये पेपर असल में कहां से इफ्शा हुआ, तफ्तीशकारों ने यह जानने के लिए इन लोगों को 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में तलब किया है। पुलिस इस सिलसिले में माली लेनदेन के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि आया ये पेपर महाराष्ट्र में किसी और जगह भी फरोख्त किया गया है। पुलिस रैकेट के दीगर अरकान की भी शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरान ने बताया कि अब वो इस सिलसिले में दो मफरूर मुलजिमीन को तलाश कर रहे हैं। TET इम्तिहान इतवार 28 जून को होना था, लेकिन इस केस की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हफ्ते को एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देने का हुक्म दिया है। मुंबई से शैलजा तिवाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: ओडिशा में आज सुबह लाखों की तादाद में अकीदतमंद पुरी पहुंचे। आज श्री जगन्नाथ मंदिर में पवित्र देव स्नान यात्रा या स्नान यात्रा रिवायती शानो शौकत के साथ मुनक्किद की जा रही है। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र स्नान यात्रा में शामिल होने के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में यकजा हुई। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तीनों देवताओं को रस्मी तौर पर स्नान बेड़ी तक लाया गया, जहां वैदिक मंत्रों के जाप, शंखों की आवाज़ और भजनों के साथ उन्हें स्नान कराया जाएगा। मस्कूरा त्यौहार देव स्नान पूर्णिमा के पवित्र मौके पर मनाया जाता है और सालाना रथ यात्रा से कबल इन तीनों देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। अजीमुशान रथ यात्रा आइंदा महीने की 16 तारीख से शुरू होगी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सिक्किम और मगरबी बंगाल के सैली हिमालयाई खित्ते में बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आइंदा 2-3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून की मजीद पेशरफ्त के लिए हालात साजगार हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, आसाम, मेघालय, केरला और माहे में आइंदा 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आसाम के धेमाजी जिले में बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाने के खतरात बढ़ गए हैं। खबरें हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गाई नदी के बहाव में आरजी तौर पर रुकावट आ गई है। समझा जाता है कि ये रुकावट बड़े पैमाने पर जमीनी तौदे खिसकने की वजह से आई है। खित्ते में तौदे खिसकने का ये हादसा कई दिन की शदीद बारिश की वजह से पेश आया है। एक रिपोर्ट।
1: धेमाजी जिला इंतजामिया ने लोगों के लिए एक फौरी हिदायत जारी की है और उन्हें खबरदार किया है कि जो पानी यहाँ जमा हो गया है, अगर उसे आगे जाने दिया जाए तो अचानक सैलाब आ सकता है। यहाँ दरिया, झरनों, दलदली जमीनों, पानी के जखीरों और दीगर नशेबी इलाकों के पास रहने वालों से कहा गया है कि वो चौकन्ना रहें। कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त से मुतालिक जिला अथॉरिटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो सरकार की तरफ से जारी की गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें, मकामी हुक्काम के साथ तआवुन करें और अगर जरूरी हो तो महफूज

0: जगहों पर मुंतकिल हो जाएं। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों पर मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िले के कुछ इलाके पानी में डूब गए हैं और यहाँ पानी कौमी शाहरा नंबर 515 के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट आ गई है। इस बढ़ते हुए सैलाब से घर और खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से इमलाक और खड़ी फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3

0: रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कल लंदन में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग के मुकाबले में भारत ने शानदार दिफाई मुजाहिमत का मुजाहिरा करते हुए इंग्लैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था, जिसके बाद मस्कूरा गोल पेनल्टी शूटआउट में किए गए। इस जीत के साथ ही आइंदा हॉकी आलमी कप से कबल भारतीय टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ये कनाडा की किसी फीफा आलमी कप के किसी नॉकआउट मुकाबले में सबसे पहली जीत है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराहे रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे छोटे कारोबारियों के लिए बढ़ते हुए छोटे कारोबार और मौके के मौजू पर एक तफसीली मुजाकिरा नश्र करेगा। ये मुजाकिरा MSME की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर रजनीश के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले अहम उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे को अपने सफाई अव्वल की नुमाया खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम मोदी के बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बहरुल काहिल की सलामती और खुशहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सेशल्स के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का वक्त, दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दद अहम माहदों पर दस्तखत। रोजनामा प्रताप की शहसुर्खी है, पीएम मोदी को सेशेल्स ने मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। रोजनामा इनकलाब ने प्रोग्राम मन की बात के ताल्लुक से वजीर आजम के इस बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान महफूज और आत्मनिर्भर बन रहा है। कुछ अहम बैन अलावामी खबरें इस तरह हैं, जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी, ईरान अमरीका फिर आमने सामने, कशीदगी में इजाफा, साबिक वजीर आजम शेख हसीना का बांग्लादेश वापसी का ऐलान, इबोला वायरस की वजह से सऊदी अरब ने 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी दिन की तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। उन्होंने मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम से बातचीत की। अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोकने और कल से बातचीत दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दिफा से मुतालिक एक तकरीब में बहादुरी इनामात अता करेंगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज सैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और हॉकी में भारत ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग की अपनी मुहिम जीत के इशारे के साथ मुकम्मल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमारे पास पहला मेल आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का, और एक मेल है हमारे पास दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का। उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवारकर, राही श्रीमती सरिता गंवारकर, प्रिंस एकांश गंवारकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गंवारकर, सिद्धांत गंवारकर, लाडला टुकटुक गंवारकर। आकार हाइट्स बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश गंवारकर, सुमित गंवारकर और कुमारी ध्वनि गंवारकर परी। आप सभी सुनना चाहते हैं बेताब फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर रखना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: जनपद हरदोई से विजय लक्ष्मी कुशवाहा ततरेंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जिला बरेली से शाहनूर नूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीसी मोइन अंसारी तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान और हमारे पास एक मेल है लखनऊ से सुनील पाठक कमल पाठक दीपक मल्होत्रा गवैया मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक आप सभी सुनना चाहते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में

और श्रोताओं, हमारे पास मेल आया है जिला रायबरेली से। रामराज राजभानु, रामशंकर पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, मिर्जा तुराक बेग और पप्पू कासी का, और लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही। और एक मेल है हमारे पास राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार का। और हमारे पास एक मेल है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। आप सभी सुनना चाहते हैं सनम बेवफा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। हमारे पास मेल है मितौली जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पाल का। ये लिखते हैं कि इन्हें आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और ये नियमित श्रोता हैं और इन्हें आज का विविधा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इन्होंने वक्त फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश की है आशा भोसले की आवाज में और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल है जालौन उत्तर प्रदेश से चंसोलिया सतीन चंसोलिया, आदर्श चंसोलिया, सार्थक चंसोलिया और अलौकिक चंसोलिया का। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

हमारे पास मेल है सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई जान भाई, राजकुमार वोडाला और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का। एक मेल है हमारे पास, ये है मोताला महाराज से विजय सुरलकर का, रतन माला, ओम कुमार और आरती सुरलकर। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में सुहाग फिल्म का ये गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब यहीं समाप्त हो रहा है। दीजिए इस कार्यक्रम से अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए हमीरपुर और इटावा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार का।
2: जनपद हमीरपुर की राठ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 21 जून के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत आए और उन्होंने जनपद हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं को 636.82 करोड़ की लागत की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, मुख्यमंत्री मुद्रा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कुल 12 लाभार्थियों को मंच से डेमो चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मान और प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड के लोग पानी और रोजगार की समस्या को लेकर पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब नमामि गंगे मिशन जल शक्ति के चलते हर घर नल जल से जल मिल रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक माह में कम से कम 4 बार रोजगार मिलों का

0: आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नामी गिरामी कंपनियां प्रतिभाग कर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। बिना किसी जात मजहब को दरकिनार कर सभी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य किया जा रहा है। जनपद हमीरपुर को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सौगात के तहत बेतवा नदी में 650 मीटर लंबा पीपा पुल बनाने का कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों को जाम की झाम से निजात के साथ 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चों को भी सहूलियत मिलेगी और कानपुर जालौन जाने में भी सहूलियत रहेगी। सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापत ने बताया कि मेरे द्वारा 4,16,00,000 की कार्य योजना बनाकर शासन को स्वीकृत के लिए भेजी थी, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है और मंजूरी मिल गई है। बरसात के बाद पैटून पुल का निर्माण कराया जाएगा। जनपद हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस को उत्साह और व्यापक जन भागीदारी के साथ राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम में मनाया गया, जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली, नोडल अधिकारी भूतत्व निदेशक माला श्रीवास्तव, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद सहित अन्य लोगों ने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल सांस्कृतिक धरोहर है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में प्रभावी माध्यम है। बुंदेलखंड के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों को सुविधापूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए 31 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 2 भव्य व अत्याधुनिक छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावासों में रहने से बुंदेलखंड सहित अन्य जिलों के अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा की राह सुगम और आसान होगी। जनपद हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वर्ष 2021 की अपेक्षा 2026 में लगभग 5% मतदाताओं की वृद्धि विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद हुई है। 2026 की मतदाता सूची में 34,495 नए मतदाता शामिल हुए हैं, वहीं 4,556 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम डिलीट भी किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसके शुक्ला ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण डुप्लीकेट मतदाता सत्यापन के बाद अब जनपद हमीरपुर की नई मतदाता सूची में 7,28,518 मतदाता हैं, जिसमें 3,26,350 महिला मतदाता और 4,01,762 पुरुष मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनपद हमीरपुर में 7 विकास खंडों की 330 ग्राम पंचायतों में कुल 524 मतदान केंद्र और 1214 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद हमीरपुर का किसान पारंपरिक खेती के साथ कैश क्रॉप की तरफ तेजी से रुझान बढ़ा है और फायदा भी मिला है। जिला उद्यान अधिकारी सौभाग सिंह ने बताया कि किसानों को भीमा सुपर प्याज की खेती करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें निशुल्क प्याज का बीज दिया गया, जिससे किसानों ने प्याज की खेती करके नासिक प्याज के ऊपर निर्भर न रहते हुए अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं।
1: NHRDF द्वारा उपलब्ध उच्च प्रजातियां का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें मुख्यतः एग्रीफाउंड लाइट रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, भीमा शक्ति जैसी प्रजातियां किसान भाइयों को निःशुल्क दी जाती हैं, जिनका जमाव और उत्पादन दोनों ही बहुत अच्छा हुआ है।
2: हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
3: इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ताओं के लिए DBA सभागार में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी बीमारियों के एक दर्जन से अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम ने परीक्षण किया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज रजत सिंह जैन ने फीता काट कर किया। इटावा में 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ। सदर विधायक सरता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित समारोह में 14 टॉपर्स को 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। अन्य मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोक भवन लखनऊ से लाइव प्रसारण को भी देखा गया। विधायक सरता भदौरिया ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने भी छात्रों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के सम्मान की सीख दी। इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में एक जनपद एक नदी, डिजिटल लाइब्रेरी, जीरो पॉवर्टी अभियान समेत कई योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सिरसा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए फिल्टर चैम्बर प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन में नए पात्रों को शौचालय से जोड़ने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामुदायिक शौचालय बनाने को कहा। 117 डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी पुस्तकें रखने और जीरो पॉवर्टी के चिन्हित परिवारों को राशन, हर घर नल का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। केंद्र

0: पत्रकार के 12 साल पूरे होने पर इटावा में उद्यमी संवाद कार्यक्रम हुआ। सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि 12 साल में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। इटावा के अंगोछा, बेडशीट, खीर मोहन जैसे उत्पादों को भी नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि ODOP योजना में 2000 लोगों को टूल किट, विश्वकर्मा योजना में 5805 को प्रशिक्षण और युवा उद्यमी अभियान में 1937 युवाओं को 74 करोड़ से अधिक ऋण मिला। जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल ने भी युवाओं से नवाचार के साथ आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में लाभार्थियों को ऋण चेक और टूल किट वितरित की गई। इटावा पहुंची महिला कल्याण मंत्री बीबी रानी मौर्य ने केंद्र की 12 राज्य और 9 साल के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, अपराधी जेल में है, महिला सुरक्षा प्राथमिकता है, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इटावा में यमुना और सिरसा नदी में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए जिला पंचायत राज विभाग ने बड़ी पहल की है। DPRO रोहित कुमार ने बताया कि यमुना किनारे के 10 गांव में फिल्टर चैम्बर बना दिए गए हैं। 10 ग्राम पंचायतों में 16 फिल्टर चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 12 तैयार हो चुके हैं। सिरसा नदी का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। इस पहल से यमुना और सिरसा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा और गांव का गंदा पानी नदियों में जाने से रोका गया है।
1: हमारे 10 गांव थे जिनका गंदा पानी जो यमुना नदी में जा रहा था, तो जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में उनमें हमने फिल्टर चैम्बर बनाए गए। 10 गांव जो हमारे थे कवर किए गए, अब उनमें जो है पानी साफ तरीके से लगभग जा रहा है।
0: जनपद इटावा में 285 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 21 राजकीय, 54 सहायता प्राप्त और 210 वित्त विहीन विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में 1,29,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जनपद में 5 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। इटावा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,31,97,000 रुपए कीमत के मादक पदार्थ नष्ट किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 7 केसों से जुड़ा 1,772 किलो गांजा चरस डोडा कानपुर देहात के अधिकृत प्लांट में जलाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। इटावा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने यह कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत विभिन्न थानों पर पंजीकृत 7 अभियोगों से संबंधित कुल 1,772 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहुंचे ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने नुमाइश पंडाल में पहुंचकर योग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए यह प्रारंभ किया है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के बाद इटावा प्रशासन सतर्क हो गया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी संगठनों और कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कोचिंग मॉल और प्लाजा में फायर सेफ्टी मानकों का 100% पालन हो, शॉर्ट सर्किट रोकने को अच्छी वायरिंग MCB लगाएं। SSP ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
6: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश का अंत।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सामईन कराम, आदाब अर्ज है। मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान और आज के प्रोग्राम में आपके लिए पेश कर रही हूं एक दिलचस्प और सबक आमोज दास्तान, जिसमें इश्क, वफा, आजमाइश और किस्मत के अजीब रंग नुमाया है। ये किस्सा है एक ऐसे शहजादे का जो मोहब्बत की शिद्दत में दुनिया से बेनियाज हो गया, और एक दरवेश का जिसने उसके दर्द को अपना दर्द समझ कर उसकी मदद का अहद किया। तो आइए सुनते हैं दास्तान बाग बहार का अगला हिस्सा, सैर दूसरे दरवेश की।

जब पहले दरवेश की कहानी खत्म हुई तो दूसरे दरवेश की बारी आई। वो चारों के दरमियान बैठा और बोला, ऐ यारो, इस फकीर का माजरा सुनो। मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो। जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द निपटला दवा सुनो। दूसरा दरवेश अपनी दास्तान बयान करते हुए बताता है कि वो इस्फान के बादशाह का बेटा था। बेहतरीन तालीम

तरबियत की बदौलत कम उम्र ही में इल्म दानिश और आदाब शाही में महारत हासिल कर ली। एक रोज उसके एक दाना मुसाहिब ने उसे हातिम ताई की सखावत और फयाजी का मशहूर किस्सा सुनाया। मुसाहिब ने बताया कि हातिम ताई अपनी बेमिसाल सखावत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। उसकी शोहरत से मुतासिर होकर एक बादशाह नौफिल ने उसके खिलाफ लश्कर कशी कर दी।

खूनरेजी से बचने के लिए हातिम ने मुकाबला करने के बजाय एक पहाड़ी की गार में पनाह ले ली। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो शख्स हातिम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तभी गरीब बूढ़ा, उसकी बीवी और बच्चे लकड़ियां चुनने के लिए उसी गार के करीब आए। गुर्बत से तंग आकर बुढ़िया ने हसरत से कहा कि अगर हातिम मिल जाए तो उसे पकड़वा कर इनाम हासिल कर लें और फाकों से निजात पा जाएं। बूढ़े ने तकदीर पर राजी रहने की बात की, मगर उनकी ये गुफ्तगु गार में मौजूद हातिम ताई ने सुन ली। गार में छिपे हुए हातिम ने जब गरीब बूढ़े और उसकी बीवी की गुफ्तगु सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा कि अगर उसकी वजह से इन मोहताजों की परेशानी दूर हो सकती है तो खुद को छिपाए रखना मुनासिब नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। चुनाचे वो गार से बाहर आया और बोला, ऐ अजीज, मैं ही हातिम हूँ, मुझे नौफिल के पास ले चलो ताकि तुम्हें इनाम मिल जाए। बूढ़ा इस बात पर आमादा न हुआ और बोला, मैं महज माल की खातिर तुम्हें दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। जब हातिम के बहुत इसरार के बावजूद बूढ़ा न माना तो आखिरकार खुद हातिम उसे लेकर नौफिल के दरबार में पहुंच गया। नौफिल ने हकीकत दरियाफ्त की तो बूढ़े ने सारा माजरा सच सच बयान कर दिया। हातिम मेरी खातिर खुद आपके पास आया है। ये सुनकर नौफिल हातिम की बुलंद हिम्मती और फयाजी से बेहद मुतासिर हुआ और बोला, वाह, तेरी सखावत और जवान मर्दी की क्या बात है। नौफिल ने हातिम का जब्त शुदा माल और इसबाब वापस कर दिया, उसका मर्तबा बहाल किया और बूढ़े को भी 500 शिफिया इनाम में अता की। मुसाहिब की जबानी हातिम ताई का किस्सा सुनकर दरवेश को मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि ईसार और इंसान दोस्ती का दूसरा नाम है। दरवेश के दिल में भी सखावत का जज्बा पैदा हुआ। उसने शहर के बाहर 40 दरवाजों वाली एक अजीम इमारत तामीर करवाई, जहां रोजाना मोहताजों और जरूरतमंदों में अशफियां तकसीम की जाती और हर साइल की हाजत पूरी की जाती। एक रोज एक फकीर आया, दरवेश ने उसे एक अशफी दी। वही फकीर बार बार मुख्तलिफ दरवाजों से आता रहा और हर मरतबा अशरफी लेता रहा, यहाँ तक कि 40 अशफियां जमा कर ली। फिर वो दोबारा पहले दरवाजे पर पहुंचा। दरवेश ने ताज्जुब से पूछा, तुम कैसे फकीर हो कि किनात का दामन छोड़ बैठे हो? फकीरी हिर्स और लालच का नाम नहीं। फकीर को चाहिए कि सब्र, किनात और तवक्कुल इख्तियार करे। खैरात जरूरत पूरी करने के लिए होती है, जमा करने के लिए नहीं। इस पर फकीर ने दरवेश को नसीहत करते हुए कहा कि हकीकी सखावत सिर्फ माल लुटाने का नाम नहीं बल्कि इसार, इखलास और खुदा की रजा के लिए दूसरों की खिदमत का नाम है। सखावत अगर सीखनी है तो बसरा की शहजादी से सीखो। ये बातें कहकर वो चला गया, मगर उसकी गुफ्तगु दरवेश के दिल पर गहरा असर छोड़ गई और शहजादी से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। एक रोज उसने सल्तनत का इंतजाम वजीर के सुपुर्द कर दिया और फकीरों का सा भेस बदल कर तन्हा बसरा की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे हैरत हुई कि हर मंजिल पर आने वाले मुसाफिरों की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाती थी। ये सब इंतजाम बसरा की शहजादी की जानिब से था। बसरा पहुंचकर उसकी मुलाकात एक निहायत खुश अखलाक और सखी नौजवान से हुई। उसने मोहब्बत से कहा, मैं मुसाफिरों और फकीरों की खिदमत को अपना फर्ज समझता हूँ, आप मेरे घर तशरीफ ले चलें और मुझे खिदमत का मौका दें। दरवेश उसके साथ चला गया। वहाँ उसने बेमिसाल मेहमान नवाजी देखी। तरह तरह के उम्दा खाने, मेवे और लजीज पकवान पेश किए गए। खाने के बाद आराम और आसाइश का ऐसा इंतजाम किया गया कि दरवेश हैरान रह गया।

और यहाँ किस तरह पहुंची। तो मलिका ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी और बताया कि वो उन्हीं की शहजादी है जिसे कभी जंगल में छोड़ दिया गया था। ये सुनते ही बादशाह जज्बात से भर गए और उसे गले लगा लिया। बादशाह के इंतकाल के बाद सल्तनत भी उसी बेटी को मिली। यही इस दौलत की हकीकत है, सच्ची है, खुदा की अता को जवाल नहीं। इसके बाद दरवेश सफर पर रवाना हो गया। जब शहर नीमरोज पहुंचा तो देखा कि लोग स्याह लिबास पहने गम में मुब्तला हैं। चांद रात के दिन सब लोग एक मैदान में जमा हुए। अचानक वहीं पर वो सवार नौजवान नमूदार हुआ। उसने हसबे मामूल एक अजीब चीज लोगों को दिखाई जिसे देखकर सब रोने लगे, फिर अपने गुलाम को कत्ल करके वापस जाने लगा। कई बार कोशिश करने के बाद दरवेश उसका पीछा करने में कामयाब हो गया, लेकिन जवान ने उसका कत्ल करने के लिए तलवार बाहर निकाल ली। तभी दरवेश ने अदब से सलाम किया। उस पर जवान ने हैरत से कहा, ऐ फकीर, अपनी जान खतरे में क्यों डालता है, जा वापस चला जा। लेकिन दरवेश ने उसका पीछा जारी रखा। जवान जंगल के अंदर

कई बार कोशिश करने के बाद दरवेश उसका पीछा करने में कामयाब हो गया, लेकिन जवान ने उसका कत्ल करने के लिए तलवार बाहर निकाल ली। तभी दरवेश ने अदब से सलाम किया। उस पर जवान ने हैरत से कहा, ऐ फकीर, अपनी जान खतरे में क्यों डालता है, जा वापस चला जा। लेकिन दरवेश ने उसका पीछा जारी रखा। जवान जंगल के अंदर एक बुलंद चार दीवारी तक पहुंचा। उसने जोरदार नारा लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक गुलाम बाहर आया और दरवेश को भी अंदर ले गया। वहां उसने देखा कि वो जवान निहायत शान और शौकत के साथ बैठा है। रात के वक्त जब दोनों तन्हा हुए तो जवान ने पूछा, ऐ अजीज, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसने तुझे अपनी जान खतरे में डालने पर। दरवेश ने पूरी दास्तान सुना दी और अर्ज किया, मुझे उम्मीद है कि आपकी इनायत से मेरी मुराद पूरी होगी। ये सुनकर जवान ने एक ठंडी आह भरी और बोला, इश्क के दर्द को वही जानता है जो खुद इस आग में जला हो। आफतों को इश्क की आशिक से पूछा चाहिए, क्या खबर फासिक को है सादिक से पूछा चाहिए। उसकी बातों से दरवेश को यकीन हो गया कि ये नौजवान भी इश्क के किसी आजमाइश में गिरफ्तार है। चुनाचे उसने दरख्वास्त की कि अपनी सरगुजश्त बयान करे। तब नौजवान ने अपनी हैरत अंगेज कहानी सुनाना शुरू की और कहा, मैं अकली में नीमरोज के बादशाह का बेटा हूँ। मेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने पेशगोई की कि मैं अजीम बादशाह बनूंगा, लेकिन 14 बरस की उम्र तक एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। इसी खौफ से बादशाह ने मुझे एक महफूज बाग और महल में परवरिश दी, जहाँ सूरज और चांद की रोशनी तक मुझ पर ना पड़ने दी गई। मैंने वहीं तमाम उलूम और फनून सीखे और दुनिया की हर नेमत पाई। एक दिन अचानक मैंने आसमान में एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक जवाहरात से आरास्ता तख्त नीचे उतरा, जिस पर एक निहायत हसीन परी बैठी थी। वो मेरे पास आई, मोहब्बत भरी बातें की और मुझे अपना असीर कर लिया और फिर बोली, दिल तो चाहता है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर है। इन चंद लम्हों की मुलाकात ने मेरे दिल में उसके लिए दीवानगी पैदा कर दी। अभी मैं इस खुशी में डूबा ही हुआ था कि अचानक परीजादों ने आकर कोई खबर दी। परी का चेहरा बदल गया और वो रुखसत हो गई और मैं जुदाई के गम में दीवाना हो गया। इस इश्क के बदौलत क्या क्या खराबियां हैं, दिल में उदासियां हैं और इस तराबियां हैं। मैंने न खाया न पिया न आराम किया, तबीब हकीम दुआएं और तावीज सब बेअसर रहे। एक सौदागर के मशवरे से मुझे एक बड़ी जोगी के पास ले जाया गया। उसके इलाज से बदन तो संभल गया मगर दिल का दर्द बाकी रहा और मैं हर वक्त परी की याद में मुब्तला रहने लगा। न जानू किस परी रूह की नजर हुई, अभी तो था भला चंगा मेरा दिल। इस तरह एक दिन शहजादे को एक किताब मिली जिसमें अजीब उलूम और जिनो परी की तस्खीर के राज थे। इस इल्म के जरिए उसने दोबारा अपनी महबूब परी को बुलाया, वो वापस भी आई। शहजादा उसकी मोहब्बत में इस कदर मगन हो गया कि उसे दुनिया की किसी चीज की फिक्र न रही। परी उसकी वफादारी और वादा निभाने पर हैरान थी, मगर वो बार बार उसे एक बात की नसीहत करती थी, अपनी इस किताब की हिफाजत करना, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत है जिस पर जिन्नात की नजर है। अगर तुम किसी वक्त गफलत करोगे तो वो इसे चुरा ले जाएंगे। शहजादा भी उस किताब को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था और हमेशा अपने पास रखता था, मगर एक रात उससे गफलत हो गई। परी के करीब बैठा हुआ बातों में ऐसा खो गया कि उसे किताब का ख्याल तक न रहा। उसी लम्हे परी ने उसे मुतनब्बे किया, ये किताब मुझे दे दो, इसमें इसमें आजम है, इसकी बेहरमती ना करो। शहजादा इश्क की सरमस्ती में ये न समझ सका कि उससे कितनी बड़ी गलती हो रही है। उसने बेखबरी में वो किताब परी के हवाले कर दी। परी ने जब ये देखा तो अफसोस से कहा, देखो आखिर तुमसे लग्जिश हो ही गई, तुम मेरी नसीहत भूल गए। ये कहकर वो बेहोश हो गई। शहजादे ने देखा कि एक देव उसके सिरहाने खड़ा है और किताब ले जाने की कोशिश कर रहा है। शहजादा उसे पकड़ने दौड़ा, मगर देव ने वो किताब दूसरे देव के हवाले कर दी और वो उसे लेकर भाग गया। शहजादे ने फौरन वो मंत्र पढ़े जिनसे जिन्नात काबू में आते थे। एक देव तो उसके असर से बैल बन गया, मगर अफसोस कि परी को होश ना आया।

0: अभी आप उपमा पांडे के स्वर में ये झूमर सुन रही थी। संगत कर रहे थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, हारमोनियम पर थे संतोष तिवारी, बांसुरी पर विमलकांत और साइड रिदम पर थे अरुण मिश्रा। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वे पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। श्री गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहुंचे। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, और खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए।
5: इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अभी भी दिन रात खोज और बचाव कार्य में लगे हैं। अधिकारी राहत कार्यों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बचाव दल तटीय और पहाड़ी इलाकों में प्रभावित समुदाय तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहा है। इस बीच वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि शनिवार को देश के मध्य क्षेत्र में 4.1

0: तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में आए दो विनाशकारी भूकंप के कारण पहले से ही डरी सहमी आबादी और अधिक परेशान हो गई। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इस मैच में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए एलिस पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय पुरुष टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। आयरलैंड के जय मंदुड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। आयरलैंड ने 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस में व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 1450 हुई। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

घर आंगन माहे बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। चित्रपट से इसमें सुनिए कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की।

अभी आप सुन रहे थे जरा हट के जरा बच के फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था वरुण जैन, शादा फरीदी और अल्तमश फरीदी ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना। संगीत जतिन ललित का है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है आप सबका पसंदीदा फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, जहां पर कुछ कहने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा हमारा फोन नंबर, और फोन नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। और देखिए हमारे श्रोता इतने उतावले हैं कि उन्होंने पहले ही से फोन डायल करना शुरू कर दिया है। तो आज सबसे पहले मिलते हैं हमारे एक नियमित श्रोता मजनू दीवाना जी से। हेलो।
1: अरे जागे।

0: छूटे लेकिन दीप्ति जोशी दीदी जान ना छूटे।
1: क्या बात है, आपने तो शुरुआत ही गजब की करी है। इतनी सुरीली शुरुआत,
0: वाह। मैं बता दूं, कहते हैं कि आप वो सितारे हैं, आप वो सितारे हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता।
1: वाह।
0: और जो कोई जुड़ गया दीदी जान तो फिर कोई छोड़ नहीं सकता। मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से मजनू दीवाना।
1: स्वागत है आपका मजनू दीवाना जी, कैसी है आपकी?
0: भगवान की कृपा हो जाती है मेरे ऊपर और मैं भगवान से यही दुआ करता रहता हूँ कि हमारे आलबर्ट की नंबर वन
1: क्यों नहीं
0: जान से बात हो जाए तो समझ लो कि अनमोल।
1: अरे बस बस, बहुत हो गया बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी लैला दीवानी कैसी हैं?
0: ये खड़ी है बगल में, चिपकी रहती है फेविकोल की तरह। अभी आम का अचार रख रही थी तो हमको भी चिपकाई थी साथ में।
1: बहुत अच्छी बात है, साथ में काम करना चाहिए आपको। आम का अचार बनाने में अच्छा लगेगा जब आप खाएंगे ना।
2: अचार रख रहे थे दो ही जन।
1: हाँ नहीं नहीं, तो अच्छी बात है। देखिए आप एक दूसरे का हाथ बटाएंगे ना काम में, तो जब आप उसको, जब आप वो अचार तैयार हो जाएगा और जब आप खाएंगे ना, तो आपको उस और दुगना मजा आएगा, है ना? आपको याद आएगा कि अरे इसमें तो मैंने भी
0: तोड़ कर आपको भेज देंगे। आपको बहुत चाहती है दीदी जाने, क्यों नहीं, भाभी जान, कहीं नहीं मिलेंगी।
1: चलिए बहुत अच्छा है, और क्या, हमें खुश, हम खुश नसीब हैं कि हमारे ऐसे इतने अच्छे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब सुनवाएं आप क्या, क्या बारिश हो रही?
0: अरे

0: बारिश तो दीदी जान अभी नहीं हुई, एक बार हो चुकी है। हालांकि माहौल यहाँ का बहुत ठंडा रहता है, मैंने पहले पहले बता दिया शीतलहर का प्रकोप रहता है, लेकिन अब ज्यादा समय को जाते करते हुए हम लोग गुनगुना लेंगे थोड़ा सा
1: जल्दी से जल्दी से। हाँ, फोन बिल्कुल,
0: प्रेमदास बाबा जी के साथ में फिल्म का नाम है तहलका, अन्य सानू और मोहम्मद अजीज की आवाज में। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी,
2: मेरे छतरी के नीचे आजा, भीगे कमला खड़ी खड़ी।
1: जाइए जाइए छतरी में जाइए और बारिश बरसाइए और सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
0: आपको प्रणाम, नमस्कार
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: मेरी छतरी के नीचे, ओ मेरी छतरी।

0: मैं दिल की पोंगी बजाऊं, तू नाच ले गोरी।
1: कार्यक्रम में मिलते हैं एक बहुत ही प्यारी सी आवाज, गुंजन, जो कि वाकई गुंजन करेगी। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, जरा जोर से बोलिए गुंजन।
2: मैं गुंजन तिवारी बोल रही हूँ, अयोध्या से।
1: अयोध्या से गुंजन तिवारी, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, क्या करती हैं आप?
2: आपकी भी प्यारी है, आप जब अच्छा। आती है ना, मेरा कॉल नहीं लगता।
1: आज तो लग गया।
2: जी, मैं आज से 25 मई।
1: हेलो
2: हेलो मैम, आपसे 25 मई को बात हुई थी।
1: अच्छा,
2: आज हुई।
1: ओहो, आप डेट भी नोट कर रखी है आपने। चलिए, तो आज तो बात हो रही है, तो गुंजन जी कैसी हैं आप बताइए?
2: जी मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसी हो?
1: हम भी बढ़िया हैं। तो क्या करती हैं आप?
2: जी मैं तो घर का काम करती हूँ।
1: क्या क्या काम कर लिया आज?
2: मेरी सिस्टर ने किया।
1: अच्छा, आज आपकी बहन ने काम किया, आपने नहीं किया?
2: नहीं मैम।
1: क्यों, बारी लगती है क्या दोनों की?
2: जी मैं वो सुबह करती हूँ, हम शाम को करती हूँ।
1: पकड़ लिया हमने। ऐसा होता है देखो, और वो ये अच्छी भी बात है, जो काम होता है ना उसको शेयर करना चाहिए। तो जो जितने भी भाई बहन होते हैं ना, जो हमें भी पता है, हम भी जब छोटे थे ना तो हम भी अपनी बहनों के साथ में काम शेयर करते थे। किसी ने झाड़ू उठाई, किसी ने पोछा उठाया, किसी ने बर्तन मांजे, सब काम फटाफट हो जाता था। और जब आप शेयर करते हो तो किसी से मनमुटाव भी नहीं होता है कि पता चला एक ही जना काम कर रहा है, दूसरा आराम से बैठा है, तो वो सोचेगी अच्छा मैं तो

0: अपना काम कर रही हूँ और ये बैठे बैठे आराम कर रही है, फिर लड़ाई होगी तो इससे क्या फायदा। इसलिए मिल बांट के जब काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है ना।
1: जी
0: लड़ाई होती है आपकी बहन के साथ में?
1: नहीं, लड़ाई तो नहीं होती है।
0: होती है ना, थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए है ना। क्योंकि क्या होता है जब आप लोग छोटे होते हैं तो आपके बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जब आप बाद में बड़े हो जाते हैं इधर उधर चले जाते हैं, फिर वो सब चीज़ें ना, वो बचपन का जो होता है वो याद जब आता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। वो बातें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी बहुत, क्योंकि क्या है ना, सब कुछ मीठा मीठा मीठा मीठा नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा कड़वा हो तो वो मिक्स्ड जब स्वाद आता है ना तब मज़ा आता है ज़िंदगी में। चलिए ठीक है, तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।
1: मैम,
0: और
1: कुछ दस
0: हाँ
1: सकती
0: हाँ
1: हूँ
0: बिल्कुल
1: प्लीज?
0: लीजिए, बिल्कुल लीजिए, अपनी बहन का जरूर लीजिएगा नाम।
1: मेरी बहन का नाम राप्ती तिवारी है।
0: अच्छा, राप्ती।
1: राप्ती तिवारी और साथ में कुछ दोस्त और हो गए भगवान सिंह परमार,
0: हाँ
1: और कानपुर
0: हाँ
1: से पूनम दीदी, रिंकी पिंकी और अमित तिवारी, और आपके लिए।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत गुंजन, थैंक यू। अब आप सुनिए अपनी पसंद,
1: नमस्ते।
0: आप सुनना चाहते हैं दिल मांगे मोर फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में, ठीक है? तो सुनिए आप अपनी पसंद का गीत।
1: राय
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: सोनू निगम के साथ आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़, फिल्म का नाम था दिल मांगे मोर। और अब जो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो श्रोता हैं, वो हैं, हेलो जी,
1: जी
0: ग्राम बेसोड़ा, नमस्ते, ग्राम बेसोड़ा नागदा मध्य प्रदेश,
1: अच्छा
0: उज्जैन,
1: हाँ,
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ दीप्ति जी, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: ये अच्छी बात है, हाँ चलिए ठीक है।
1: मुझे है ना आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगा, आपसे मतलब होती है ना बात तो मतलब ये समझिए कि हमें मतलब बहुत सारी खुशी एक साथ मिल जाए ऐसा लगता है हमें।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, चलिए हम खुशियाँ देते हैं, हमें इस बात की खुशी है ना।
1: जी बिल्कुल, है ना दीप्ति जी, कार्यक्रम मोबाइल ऐप से तो सुनते हैं तो एकदम स्पष्ट आवाज आती है और प्रसारण भी साथ मिलता है।
0: चलिए अच्छी बात है, और ऐप पे तो आप बहुत सारे स्टेशन सुन सकते हैं, कई तरह के अलग अलग जगहों के आप प्रोग्राम सुन सकते हैं, ये बहुत ऐप का बड़ा अच्छा फायदा है ना,
1: अच्छा
0: आप कहीं पर
1: भी फायदा हुआ और मतलब साथ ही प्रसारण भी मिलता है और कई राज्य के मतलब आकाशवाणी सुनने को मिल जाते
0: हैं, अलग अलग जगह के आप कार्यक्रम सुन सकते हैं, बहुत अच्छी
1: जी,
0: बात।
1: और मैं बताऊं दीप्ति जी, अभी हमारे यहाँ पे बारिश हो चुकी है।
0: अच्छा, इसीलिए मैं कहूँ कि अभी लखनऊ में तो बहुत छुटपुट हो रही है, यहाँ भी हुई थोड़ी सी, लेकिन
1: जी।
0: अभी छतरी वाला टाइम तो नहीं दिख रहा है हमें।
1: लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में छतरी खुल चुकी है कई लोगों के,
0: बहुत अच्छी बात,
1: बरसात हो गई है और किसानों ने काफी उत्साह है, सोयाबीन की फसल

0: रहे हैं सभी लोग।
1: हाँ, सबकी मेहनत जो है वो सफल हो, मेहनत का फल मिले, है ना? यही हम लोग
0: जी
1: भी चाहते हैं। किसान भाई हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, खरीफ की फसल अब बोनी है तो उसके लिए तैयारियां हो गई हैं, तो बारिश होती है तो निसंदेह बहुत अच्छा ही लगता है सभी को। एक तो मौसम भी
0: जी जी
1: खुशगवार हो जाता है, दूसरा आपके काम भी अच्छे से हो सकता है ना?
0: बिल्कुल।
1: चलिए, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। आप सुनना चाहते हैं गोपी किशन फिल्म का गीत? हाँ,
0: जी हाँ,
1: कुमार
0: कैटरीना कैफ
1: सानू,
0: बरसात
1: पूर्णिमा
0: में।
1: के।
0: जी
1: हाँ ठीक है,
0: जी
1: और किसी को बोलना चाहेंगे? फटाफट बोल दीजिए
0: मैं
1: नाम।
0: तो यही कहूंगा कि मैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ा रहता हूँ और अच्छी अच्छी जानकारियां सुनता रहता हूँ और अपने सभी दोस्तों को बताता हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगाइए, बातें करिए, और अगर बातें नहीं हो फिर भी दीप्ति जी से बातें जरूर करिए।
1: जरूर कर लीजिए। ठीक है,
0: जी
1: चलिए तो ठीक है, फिर आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल
0: जी
1: करने
0: थैंक
1: के लिए।
0: थैंक यू सो
1: नमस्कार।
0: मच जी।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं उन श्रोता से जो कि बहुत ऊपर यानी कि शिमला में बैठे हैं और मेरी आवाज वापस शिमला से आ रही है मेरे पास, तो थोड़ा दूर हो जाइए। राकेश जी,
1: जी हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: ये बहुत बढ़िया है, बारिश का आनंद ले रहे हैं।
0: हाँ, खूब लीजिए आनंद।
1: और ऐसे मौसम में आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का।
0: तो
1: बहुत अच्छा,
0: अभी
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा लग रहा है। रिम जिम थोड़ी पानी की छींटे जो है पड़ रहे हैं और पहाड़ों पे हैं, और ऐसे मौसम में फिर सेब भी तैयार हो गए हैं, मीठे मीठे, और खूब खाइएगा। हम तो खा रहे कभी पेड़ की पेड़ से तोड़ के खाएंगे और नमक के साथ। और
0: तो सेब तो आप हमको भेजते ही हैं, हम ये सोच रहे थे कि आप कभी लखनऊ आइए आम खाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि शिमला तक आम पहुंचना बहुत मुश्किल है।
1: जी जी जी जी, शिमला तक तो नहीं पहुंचते तो हैं, लेकिन
0: पहुंचते हैं
1: जो आम होते हैं,
0: लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाती। हाँ, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है ना आपको। तो आप लखनऊ आएंगे तब आपको बढ़िया आम मिलेंगे। तो आप जो है कभी लखनऊ आइए और यहाँ के आम खाइए, फिर बताइए कि सेब अच्छे के आम। क्योंकि आम क्या होता है, सिर्फ मुश्किल से 2 महीने का होता है फल, और बस उसके बाद गायब हो जाता है। और सेब तो हमको 12 महीने मिल जाते हैं, ये है। तो इम्पोर्टेंस किसकी ज्यादा होती है?

0: बारह महीने सेब मिलती, जो आपको जो सेब मिलती है वो स्टोरेज की।
1: हाँ, वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता। अब आम स्टोर नहीं हो पाते, आम को जो है आप स्टोरेज में नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं सेब को कर सकते हैं, इसलिए सेब तो हमें। लेकिन तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस किस चीज की है, कि जो जो जो फल दो महीने में एक बार आता है, मतलब दो महीने के लिए ही आता है साल में, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: नहीं नहीं, लेकिन लेकिन सेब तो जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए
0: बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि फ्रूट जो है सुबह शाम खाना चाहिए, क्योंकि जो है आयरन की कमी पूरी करता है और ये बिल्कुल उससे सेहत के लिए ठीक होता है। जो आम होता है वो थोड़ी जो है गर्मी का जो है
1: सीजनल फल है, उसमें भी बहुत क्वालिटीज होती हैं, लेकिन वो एक सीजनल है, तो वो तो बस एक सीजन में आता है, ये गर्मी के सीजन में। लेकिन सेब जो है, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमें सुबह शाम जरूर खाना चाहिए। आम आप अपने स्वाद के लिए खा सकते हैं, है ना, लेकिन सेब जो है वो आप अपनी हेल्थ के लिए खा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए खा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अपने हेल्थ के लिए जो है बिल्कुल खा सकते हैं।
1: तो सुनवाए फिर आपकी पसंद का गीत।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपके शिमला में सावन आ गया है, जबकि वैसे सावन अभी आया नहीं है।
0: आप ये बिल्कुल बिल्कुल सुनाइएगा। जी जी,
1: तो ये है साजन का घर फिल्म का गीत। हाँ
0: जी जी, साजन का घर, धन्यवाद।
1: चलिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में अब मिलते हैं श्रीचंद निषाद जी से। हेलो
1: जी, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: मैं ग्राम जलालपुर जिला बांदा तहसील बघेल से श्रीचंद निषाद बोल रहा हूँ।
0: आपका स्वागत है श्रीचंद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक है, बढ़िया है दीदी जी।
0: बढ़िया है। तो क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कार्यक्रम में ठीक ठाक है, बढ़िया है, और क्या कहना चाहें?
0: समझ नहीं है।
1: तो कुछ नहीं है दीदी जी।
0: क्यों नहीं कहना है? कार्यक्रम का नाम क्या है?
1: तुम कहो हम सुने।
0: नहीं सुने नहीं। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो हम भी तभी कहेंगे जब आप कुछ कहेंगे। कहिए कुछ तो कहिए। जी आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए। श्रीचंद जी अगली बार कॉल करिएगा तो कुछ सोच के आइएगा कि क्या कहना है। ठीक है, आप क्या करते हैं वैसे?
1: किराने की दुकान चलाता हूँ।
0: तो फिर क्या है, किराने की दुकान में भी आप कुछ कह ही सकते हैं, ऐसा क्या है? सुबह से कितने कस्टमर्स आ गए, कितने ग्राहक आ गए, कितनी अच्छी आपकी आमदनी हुई, सेल हुई, है ना? यही सब बता दीजिए, हम डाका डालने नहीं आएंगे आपके यहाँ।
1: ज्यादा नहीं, बस ठीक ठाक धंधा चलता है अपना।
0: बस ठीक है, ठीक ठाक चलते रहना चाहिए, और ज्यादा से करना क्या है, है नहीं? सब कुछ तो यही छोड़ के जाना है। है ना, सब यही छोड़ के जाना। लालच जो है करना बिल्कुल ही बेकार बात है, कोई फायदा नहीं है। जाना है खाली हाथ, तो इसलिए बस उतने में खुश रहो जितने में जो है आपको कोई तकलीफ ना हो।

0: और आप खुशियां बांट सकें, है ना?
1: जी जी जी।
0: बस यही चाहिए जिंदगी में। तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
1: जी जी जी।
0: हाँ, आपने तो गाना भी ऐसे ही सुना है, चुना है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। चलिए, हम चाहते हैं कि ये गाना सुन के आपके चेहरे में भी खुशी आ जाए।
1: फोन लगाते ही हमारे चेहरे पे खुशी।
0: अरे क्या बात है। चलिए ठीक है, तो ये वक्त फिल्म का गीत है आशा भोसले की आवाज में। हाँ
1: जी जी जी।
0: ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं एक ऐसी आवाज से जो शायद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हेलो
1: जी, फैजाबाद अयोध्या कैंट से अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ।
0: और आपके चाहने वाले बहुत हैं क्योंकि बहुत लोग आपका नाम लेते हैं और आपको गाना डेडिकेट करते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बात कही कि वाकई आपको, आपकी आवाज़ जो है बहुत लोगों को अपनी ही मतलब पसंदीदा आवाज़ है बहुत लोगों की।
1: जी जी, हमारा केंद्र तो 2020 में ऑन एयर हुआ।
0: हाँ,
1: न्यूज़ ऑन एयर पर।
0: हाँ,
1: और उसके पहले तो बरसों से हमें यहाँ के श्रोता सुन रहे हैं। 93 से 26 अगस्त को मैंने पहली ड्यूटी किया था।
0: अच्छा, वाह।
1: तो बस श्रोताओं का प्यार है, इसीलिए मैं जो आरजेज है ना उनको भी पसंद करता हूँ। जो मुझे आरजेज अच्छे लगते हैं बोलने में, मैं उनको अभी कल जो वीरेंद्र सिंह कमेंट्री कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में,
0: अच्छा,
1: तो मैं जालंधर जाके उनको मिला था। उनकी आवाज इतनी अच्छी है मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मन करता सुनते ही जाइए उनको।
0: ये होता है,
1: सीनियर अनाउंसर है जालंधर के।
0: अच्छा, कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है, तो अब दिल को जो पसंद आता है वो कहना भी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं।
1: पहले क्या होता था, जब मैं रेडियो में आने का शौक रखता था ना, तो मैं गाने कम सुनता था और अनाउंसर्स की आवाज को ज्यादा सुनता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था। तो ये चीजें थी।
0: नहीं तो हाँ, ये तो है, अट्रैक्ट तो वही करती है ज्यादा। गाने तो आप कहीं भी सुन सकते हैं, है ना।
1: हाँ,
0: ये हमारे
1: हाँ,
0: सभी श्रोता कहते भी हैं, उनको जिनको बातें करने का शौक है, जिनको बताने का कुछ भी अच्छा लगता है, वो यही कहते हैं कि गाने तो सुन लेते हैं लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: इस प्रोग्राम में कहना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: कि नाम मैं किसी में ले रहा हूँ, एक कुछ अनाउंसर्स आते हैं ना तो गाने तो बहुत तेज बजाते हैं लेकिन उनकी आवाज कम भी कम आती है। हाँ, और फोन में भी कम आती है।
0: अच्छा,
1: ये होता है कभी कभी, गाने बहुत तेज बजते हैं।
0: हुँ।
1: पता लगा गाना धीमा किया तो उनकी आवाज और धीमी हो गई।
0: हाँ,
1: ये होता है कभी कभी।
0: ये है, चलिए कोई बात नहीं, ये बात हम बता देंगे जो अपने सहयोगी लोग हैं उनको, सबको बता देंगे।
1: तो आज गाना मैंने आपको भी बताया था, तेरी मेहरबानियां फिल्म का आंचल उड़ाया मैंने।
0: हाँ, तो सुनवाए फिर।
1: क्योंकि बारिश का मौसम है तो कुछ मौसम से रिलेटेड गाना होगा।

0: तो ज्यादा अच्छा लगता है।
1: जरूर जरूर जरूर। तो अभी आपका क्या चल रहा है?
0: अभी बस अभी मेरा रिटायरमेंट नजदीक आ गया, सितंबर मेरी लास्ट ड्यूटी होगी।
1: अच्छा।
0: हाँ, 33 साल हो गए बोलते हुए।
1: हम लोग भी एक ही नाव में सवार हैं।
0: अब हम लोगों ने देखिए दो जमाने देख लिए, एलपी रिकॉर्ड्स के भी
1: ये
0: जमाने
1: तो
0: देख
1: है।
0: लिए और इंटरनेट का भी देख लिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत चेंज देखा है
0: टीटीआर भी
1: और
0: चलाया, हम लोगों ने स्कूल भी
1: वाकई
0: चलाया।
1: सब चलाया, एलपी भी सब चलाए हैं।
0: हाँ
1: और आज जो है ये इतना हाईटेक सारा
0: जी
1: सिस्टम
0: जी
1: है, तो
0: बिल्कुल।
1: उसको भी हम लोग कर ही ले रहे हैं मैनेज, है ना? तो
0: पहले हम लोग
1: चलिए।
0: 10-10, 12-12 LP रिकॉर्ड्स लेके जाते थे,
1: हाँ
0: उसमें से निकालते थे, बजाते थे,
1: बिल्कुल।
0: ऐसे डिब्बे लेके जाते थे सीट, उसे सीडी प्लेयर वाले जो थे या टेप के। तो अब
1: सही
0: तो कुछ
1: बात
0: भी
1: है,
0: नहीं ले जाना है, बहुत इजी हो गया,
1: अब
0: आसान हो
1: बहुत
0: गया सब।
1: आसान हो गया, बहुत आसान। और अभी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। अब जब हम
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं से, क्योंकि बरसों पहले तो हम बात ही नहीं कर पाते थे ना, जो पत्र
0: अब
1: आते
0: देखिए ना,
1: थे
0: हम
1: बस
0: लोग की
1: उसी के
0: आवाज
1: जरिए
0: अब विदेश में बैठे लोग भी सुन रहे
1: सुन
0: हैं,
1: रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल
0: सबसे
1: सही
0: बड़ी
1: कह रहे हो
0: चीज ये
1: आप।
0: है।
1: हाँ बिल्कुल, ये
0: अभी जैसे आपके यहाँ व्हाट्सएप नंबर अगर दे दिया जाए ना किसी को
1: हाँ हाँ
0: आपके
1: हाँ
0: फोन का, तो
1: हाँ हाँ हाँ
0: बाहर से भी विदेशों से भी कॉल आने लगेगी यहाँ पर। हाँ,
1: अच्छा।
0: एक व्हाट्सएप नंबर चलाइए वहां
1: चलिए, नहीं
0: से।
1: कोई नहीं, हमारे अपने यहाँ के ही श्रोता बहुत
0: क्योंकि
1: हैं। ठीक है,
0: विदेश
1: तो
0: के भी श्रोताओं को आना चाहिए, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के,
1: हाँ
0: न्यूजीलैंड के।
1: हाँ अभी तो सब सो रहे होंगे वहां
0: जी
1: पे। चलिए, तो
0: जी
1: सुनवाएं आपकी पसंद का गीत। और
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद कॉल
0: एलपी जी।
1: करने के लिए।
0: जी
1: नमस्कार अमरजीत जी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको फ़ोन नंबर डायल करना है 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। और हमारे साथ हैं हमारी एक श्रोता जिनके की फ़ोन कॉल में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जल्दी से अपना नाम बता।
1: सुबह सुनती हूँ, शाम सुनती हूँ, जिंदगी में बसी हूँ, तमाम सुनती हूँ, पूरे दिन में बाहर से छा जाती है जब मैं आकाशवाणी लखनऊ में कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का प्रोग्राम सुनती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: क्या बात, कौन बोल रही हैं ये भी तो बता दीजिए।
1: आपके चैनल की अभी नई जुड़ने वाली श्रोता बात कर रही हूँ, स्वाति सिंह, अम्बरपुर मनकापुर।

0: गोंडा से।
1: वाह वाह स्वाति जी, आपका अंदाज बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत बढ़िया लगा।
0: थैंक यू।
1: बस थोड़ा सा फोन पे डिस्टर्बेंस है, इस तरह इस वजह से एक आवाज आ रही है तो।
0: जी मैम, नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है ना, आजकल बारिश हो रहा है तो नेटवर्क फोन में पकड़ नहीं रहा है बराबर।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया है ना स्वाति जी, स्वाति जी गोंडा से। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो और कुछ कहना चाहेंगी स्वाति जी?
0: जी मैम, आपसे फर्स्ट बार बात हो रही है आज, बहुत चाहने के बाद आज आपसे बात हो पाई। बात तो हुई है मेरी, 3-4 बार कॉल लग चुकी है।
1: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन आज आपसे फर्स्ट बार बात हो रही है, जबकि आप मेरी फेवरेट अनाउंसर।
1: अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपकी आवाज इतनी अच्छी है, बात करने का तरीका इतना अच्छा है मैम, आपसे बात हो चाहे ना हो, लेकिन जब आप प्रोग्राम में आ जाती है ना तो पूरे चांद जैसे मतलब पूरे एकदम आ जाते हैं, चांद तारे जैसे आप सामने वैसे प्रोग्राम।
1: लेकिन पता है क्या है, हम भी तभी बात कर पाते हैं अच्छे से जब हमारे श्रोता हमसे बात करते हैं ना। आप लोग इतना प्यार से अच्छे से बात करते हैं और इतनी मतलब शिद्दत से फोन लगाते हैं कि हम सभी को सलाम करते हैं, सारे श्रोताओं को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और लखनऊ के जो प्रोग्राम ऐसे खास करके कुछ सारे बहुत अच्छे होते हैं, और मैम हम आकाशवाणी अयोध्या भी सुनते हैं, लेकिन वहाँ के भी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, लखनऊ भी सुनते हैं तो कुछ और भी अच्छे लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आपको सुनवाएं आपकी पसंद का गीत?
0: जी मैम सुनवा दीजिए, लेकिन मैम 2-3 दोस्त हैं।
1: हाँ हाँ, आप ये भी बता दीजिए आप।
0: अभी हमारे सर का फोन आया था, आकाशवाणी सीनियर अनाउंसर अमरजीत सिंह का।
1: हाँ
0: मैम, वो तो मेरे दिल के करीब रहते हैं, बात होती रहती है आकाशवाणी अध्याय पे, जो सर आते हैं तो बात हो जाती है उनसे।
1: बहुत बढ़िया।
0: भगवान सिंह परमान जी हो गए, और फिर उसके बाद में आप हो गई, मेरी दीदी हो गई, और जितने भी श्रोता लाइव सुन रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। सभी के लिए गाना डेडिकेट है।
1: कौन सा गाना है ये भी बता दीजिए।
0: जी मैम, मूवी का नाम है निशान, और गाने के बोले कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक आबादी है,
1: बढ़िया
0: जुल्फों में दिए जादू आंखों में हया दी है।
1: बहुत बढ़िया, सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: कार्यक्रम में अब मिलते हैं बेटा सिंह जी से। हेलो
1: जी दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: मैं दीदी ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका बेटा सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी बढ़िया है, अच्छा है, मस्त है। और घर बनवा रहे थे,
0: अच्छा,
1: मेहमानों की दोपहर में छुट्टी हो जाती है तो हम सोचा फोन भी लगा लिया जाए, और फोन लग भी गया।
0: अच्छा, घर बनवा रहे थे, कहाँ पर बन रहा है आपका घर?
1: जी दीदी जी,

0: किराने की दुकान खोलने वाला हूँ, तो थोड़ी पहले जगह लिया था, इसके बाद वही बनवाना चालू किया। किराने की दुकान खोलने वाला हूँ, शायद
1: अच्छा
0: हाँ
1: चलिए
0: अगले महीने से रेडी हो जाएगा, तो 1-1.5 महीने के बाद किराने की दुकान रखने वाले हैं।
1: बढ़िया। फिर तो क्या है, वहां पर आपका रेडियो बजेगा बढ़िया से।
0: बिल्कुल बिल्कुल दीदी जी, वैसे खेती किसानी भी करते थे दीदी जी, तो क्या है कि
1: हाँ
0: वहाँ भी रेडियो लेके जाते थे साथ में,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वैसे कोई दिक्कत नहीं होती सुनने में भी, रेडियो
1: हाँ
0: लगा
1: हाँ
0: के रख देते थे और अपना काम भी करते रहते थे और रेडियो भी चालू रहता था।
1: हाँ नहीं तो अब क्या होगा, किराने की दुकान में जब आप रेडियो रखेंगे तो आप तो खुद सुनेंगे ही सुनेंगे, आपके
0: जी
1: जितने भी ग्राहक आएंगे वो भी सुनेंगे, है ना।
0: ये बात तो सही है।
1: तो सबको
0: जी
1: बता दीजिएगा कि आकाशवाणी लखनऊ सुनते हैं हम, है
0: जी जी बिल्कुल दीदी, वैसे भी सभी लोग श्रोताओं को भी पता है और
1: ना।
0: जितने हमारे गांव के भी लोग हैं वो लोग सब लोग जानते भी हैं और सुनते भी हैं।
1: अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई,
0: जी
1: हम तो
0: जी जी
1: चाहते हैं कि हमारे केंद्र के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, और
0: नहीं
1: इसीलिए
0: दीदी,
1: हमारी
0: बहुत अच्छा
1: कोशिश
0: लगता है
1: रहती है।
0: कार्यक्रम, जो ईमेल वाले कार्यक्रम आते हैं वो भी हम लगातार सुनते हैं,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: खेती किसानी वाले आते हैं ये भी सुनते हैं जो भी है, और ये तो छूटता ही नहीं है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और हेलो मेरी पसंद और
1: हाँ
0: फिल्म संगीत जितने भी कार्यक्रम आते हैं ये मानो कि बड़े ध्यान से हम लोग सुनते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और
0: जी
1: तो अब आप आज सुनना चाहते हैं सीआईडी फिल्म का
0: जी
1: गीत,
0: जी
1: है
0: दीदी, फिल्म का नाम रहेगा सीआईडी और गीत की बोर्ड है कि लेके पहला पहला प्यार बन के आंखों में घुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, और कुछ मेरे मित्र रहेंगे जैसे कि मांगी लाल चंदेल साहब हो गए,
1: जी
0: और फूलचंद मनकारी से हो गए, दिनकर चित्रकूट धाम से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, मणिराम पाल हो गए, जितने हमारे श्रोता सुन रहे सभी लोग के लिए।
1: और हम भी तो
0: जी जी जी ओके दीदी,
1: हमारे लिए नहीं।
0: नहीं, बिल्कुल आपके लिए तो डेडिकेट ही रहता है हमेशा।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत। सुनिए
0: जी
1: अपनी पसंद का गीत, नमस्कार।

0: और हमारे कार्यक्रम में बदायूं से आए हैं हमारे श्रोता। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: पहले परिचय बाद में दूंगा, पहले दो लाइनें पेश
0: करूंगा। अरे बिल्कुल,
1: लिखकर दर्ज किताबों में छुपाने से क्या होगा, जो समझ ना सके खामोशी उसे सुनाने से क्या होगा। वक्त ने मिटा दिए कई पुराने निशान, वक्त ने मिटा दिए कई पुराने निशान, अब बीते हैं लम्हों को याद करने से क्या होगा।
0: ओ हो, बड़ी दर्द भरी लाइनें आपने कही हैं। तो
1: सबसे पहले आपको आपके भैया विमल का प्यार भरा नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार विमल जी, कैसे हैं आप? आप बताइए आगे।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से विमल ठाकुर जुड़ चुका हूँ। बहुत दिनों के बाद आज कुछ तुम कहो कुछ हम कहें इस प्रोग्राम में हमारा कॉल शामिल हुआ है।
0: वाह, और आपने शुरुआत में ही सब आपने कह दी अपने दिल की बात, है ना?
1: जी, कैसे हो मैम, बताओ आप।
0: बहुत बढ़िया है, और मुझे लग रहा है शायद

0: आपसे पहली बार मेरी मुलाकात या बात हो रही है?
1: नहीं, एक बार मेरी बात आपसे हुई है, उस
0: अच्छा
1: समय मैंने आपको एक फेर अर्ज किया था और आज भी मैंने एक फेर अर्ज किया, आपसे मेरी
0: अच्छा
1: बात एक बार हो चुकी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा।
1: जी,
0: तो ये आप खुद
1: हाँ
0: लिखते हैं कि कहीं से आपने पढ़ा है और वो हमें सुनाया है?
1: बिल्कुल मैम, शेर पढ़ने का मुझे शौक है
0: बहुत
1: और
0: अच्छी
1: शेर
0: बात।
1: करने का, अरे मुझे वो ये भी शौक है, रेडियो के जरिए मैं अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाता हूं और न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से तमाम श्रोता इस समय रेडियो को सुन रहे हैं, उन सभी को भी हमारा दिल से शुक्रिया, क्योंकि रेडियो को लगातार सुनते रहे और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत किए जाते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये प्रचार और प्रसार करने के
1: जी
0: लिए। तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।
1: जी बिल्कुल, मेरी पसंद का गीत सुनवा दीजिए, साथ में नाम तो नहीं बोलूंगा, चलते चलते सभी श्रोताओं के बीच में दो लाइनें और छोड़े जाता
0: हाँ हाँ
1: हूँ।
0: बिल्कुल
1: इंसान के
0: छोड़िए।
1: कानों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कानों पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं, नहीं मिला जिन्हें सुकून जिंदगी में, नहीं मिला जिन्हें सुकून जिंदगी में, वो सुकून की तलाश में संतान जा रहे हैं।
0: अरे

0: गीत सुनवाते हैं?
1: जी बिल्कुल, मेरी पसंद का गीत सुनवा दीजिए, साथ में नाम तो नहीं बोलूंगा, चलते चलते सभी श्रोताओं के बीच में दो लाइनें और छोड़े जाते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल छोड़िए।
1: इंसान के कानों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कानों पर इंसान जा रहा है, कफन में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे हैं, नहीं मिला जिन्हें सुकून जिंदगी में, नहीं मिला जिन्हें सुकून जिंदगी में, वो सुकून की तलाश में संतान जा रहे हैं।
0: अरे राम, आपने तो बिल्कुल ही इतना, आप कुछ वैसी शायरी भी तो करिए, कुछ खुशनुमा और थोड़ा सा, आपने तो बहुत दर्द दर्द दर्द दे दिया। और
1: बिल्कुल मैम, अगली बार अगर अगली बार आपसे बात करेंगे, जरूर मौका मिलेगा, तो खुशनुमा शायरी लेके प्रस्तुत होंगे आपके प्रोग्राम में, क्योंकि समय कम रहता है और भी श्रोता हमारे जुड़ते हैं, और जो हमने अर्ज किया शायद सभी को पसंद आए। इस
0: नहीं नहीं पसंद तो आ रहा है, सब पसंद आ रहा है, लेकिन कोशिश ये करिए कुछ पॉजिटिव लिखिए तो अच्छा लगता है ना सुनने में।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल,
0: दर्द आप बांटेंगे तो
1: आपकी पॉजिटिव लेकर
0: ठीक है। चलिए तो अब, लेकिन गाना आपने बड़ा पॉजिटिव चुना है अभी, तो ये है कुली नंबर वन का गाना ना, पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ों में,
1: क्योंकि इस समय बहुत ही भयंकर,
0: कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है। चलिए ठीक है, तो सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, नमस्ते।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं दूर आसाम से हमारे श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए।
1: हेलो नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते
0: जी।
1: गुड मॉर्निंग।
0: कौन?
1: हाँ। मैं प्रियंकी चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, आसाम सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से।
0: जी आसाम से स्वागत है आपका।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो लाइन मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। आकाशवाणी लखनऊ लाइन मिला तो बहुत नसीब है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हमेशा मैं ट्राई कर रहा करके लेकिन लाइन नहीं मिला, और आज मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा फोन आप रिसीव किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद इतनी कोशिश करने के लिए और पसंद करने के लिए आकाशवाणी।
1: आज मैडम मैं गाना सुना चाहता हूँ।
0: हाँ आप और कुछ भी
1: है,
0: वो तो
1: आंधी।
0: हाँ हाँ आंधी फिल्म का गीत है।
1: और इस गाने में गाया लता जी और किशोर जी।
0: जी
1: गाने का बोल ऐसे है कि रेजी में जिंदगी।
0: जी जरूर सुनवाएंगे। और
1: गाया आर डी बर्मन जी।
0: क्या बात,
1: आर डी बर्मन जी बहुत बड़ा चित्रकार है ना।
0: बिल्कुल हाँ,
1: बहुत अच्छा सुर दिया, बहुत अच्छा लगा उनका गाना सुन के।
0: तो आप ये बताएंगे कि आप क्या करते हैं?
1: मैडम मैं तो ब्राह्मण परिवार से परिवार से है, इसलिए पूजा पाठ तो मेरा पैसा है। मैं
0: अच्छा, आप पूजा पाठ करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है।
1: और

0: मैडम
1: जी
0: मैं एक दो मित्रों को नाम लेना चाहता
1: हूँ। हाँ बिल्कुल लीजिए,
0: अनुमति दीजिए।
1: बिल्कुल लीजिए।
0: पहले मैडम आप सुनिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सेकंड अनूप कुमार भट्टाचार्य जी,
1: जी
0: और आशुतोष देवनाथ जी।
1: जी बहुत दिन से बात नहीं हुई इनसे।
0: अभी आकाशवाणी लखनऊ जो श्रोता सुन रहा है
1: सबके लिए,
0: सबको लेके सुनेंगे मैडम, आप सुनिए। और आपका आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा है।
1: बहुत बहुत अनेक अनेक धन्यवाद। देखिए आपको, आपके यहाँ से जो अनूप कुमार भट्टाचार्य जी आते हैं उनको भी हम दादा बोलते हैं, तो आपको भी हम दादा बोलेंगे। तो दादा अनेक अनेक धन्यवाद।
0: मेरा उम्र 36 मैडम।
1: अच्छा तो दादा तो है ही, क्या है?
0: ठीक है, आप तो मेरा दीदी है ना।
1: ठीक है, हम आपके दीदी, आप हमारे दादा। चलिए
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है,
1: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का। धन्यवाद।
0: फाइन फाइन,
1: धन्यवाद।
0: आप अच्छे रहे, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: थैंक यू सो मच।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं राहुल कुमार जी से। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, राहुल कुमार जी,
1: दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: ये जिला इटावा पोस्ट कर रही ग्राम लालपुरा से राहुल कुमार बात कर रहा हूँ दीदी जी।
0: स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता, और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये चीज जो है, आप क्यों कहते हैं, आप सुन तो रहे हैं हमारा कार्यक्रम, और जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं वो और अच्छे तरह से सुन रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ सुनने में है। ये बड़ी बात है ना।
1: जी
0: तो आप जब आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते हैं ना, तो वो जो आपके अंदर ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ें दिमाग में बैठती हैं, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि जो हम लोग हैं ना, जिनके पास आंखें होती हैं, तो हम लोगों का ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है ना। तो इसलिए इस बात को आप अन्यथा मत लिया करिए कि ये तो देखिए दुर्भाग्य ही होता है, लेकिन इसको हम अच्छे उसमें ले सकते हैं। हम इसको जो जो हमें हमारी कमी है ना, उसको हम अपनी ताकत बना के आगे बढ़ सकते हैं, है ना।
1: जी
0: हेलो,
1: दी दी जी
0: ठीक है ना। तो राहुल जी, निराश मत होइए, और आप सुनते हैं और आप अच्छे से, आप कुछ बोलते भी होंगे, विचार भी आपके आते होंगे, तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसा है?
1: जी दीदी, सही बात है।
0: तो आप वैसे क्या करते हैं और?
1: कुछ नहीं दीदी, घर पे ही रहता हूँ, लेकिन फ्री टाइम रहता हूँ।
0: हाँ, तो आप कुछ तो करने की कोशिश किया करिए जो आप कर सकते हो। ईश्वर हमको बहुत कुछ देता है, अगर हमसे कुछ लेता है ना, तो जो बाकी चीज़ें हैं वो हमको बहुत अच्छे से देता है, भर भर के। तो आप उसका इस्तेमाल करिए, अपने अपनी खूबियाँ देखिए कि आप किस चीज़ को क्या अच्छे से ले सकते हैं, है ना। ठीक है।
1: जी दीदी।

0: राहुल जी, जीवन में निराश नहीं हुए होइए, आगे बढ़िए, उम्मीद रखिए और आगे बढ़ के कोशिश करिए कि कुछ अच्छा कर सकें।
1: जी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं 2001 से रेडियो सुन रहा हूँ, तब से मुझे बहुत शौक हो गया और रेडियो सुनने से मुझे बहुत कुछ मिला है।
0: हम यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता लाभान्वित हों हर तरह से, इसीलिए हम कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आता हो, लेकिन हमारा स्वभाव ये है कि हम अपनी तरफ से कह देते हैं कि भाई सबका भला हो, ठीक है ना? तो हमारे यही दिल में भावना रहती है कि सब लोग खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें। तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाएं,
1: दीदी कुछ मित्रों को
0: जल्दी से,
1: याद कर
0: जल्दी से
1: सकता
0: ले
1: हूँ,
0: लीजिए,
1: ज्यादा नहीं केवल सिर्फ दो तीन।
0: जल्दी से, जल्दी से।
1: जी, इटावा से ओम नारायण पुष्पाजी हो गए, मांगीलाल चंदेल भाई साहब हो गए, और दिनकर सिंह जी हो गए, और
0: जी
1: गुलचंद पाल भाई साहब हो गए मनकारी से,
0: ठीक
1: और
0: है,
1: जितने लोग सुन रहे हैं उन
0: सबके
1: सबके लिए।
0: लिए ये
1: लेकिन ये कह रहा हूँ, हेलो
0: समझौता फिल्म का गीत आप सुनाना चाहते हैं मोहम्मद
1: हेलो,
0: रफी की आवाज में। हाँ जी सुनिए।
1: नहीं ये कह रहा हूँ दीदी, हमारे गांव में रेडियो केवल कोई नहीं सुनता है, केवल हम ही सुनते हैं।
0: हाँ,
1: कुछ
0: कोई बात,
1: लोगों से कहता हूँ मैं, रेडियो
0: सबको
1: सुना करो,
0: सुनाइए।
1: बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते
0: हाँ
1: हैं, तो बोले हमारे यहाँ रेडियो मिलता ही नहीं है अब।
0: नहीं, मोबाइल पे तो मोबाइल सबके पास होता है, ऐप डाउनलोड करें और सुने,
1: जी
0: ठीक है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनिए।

0: कार्यक्रम में बड़ी दूर से आ गए हैं हमारे भाई जी मांगीलाल जी, गुना मध्य प्रदेश से, ग्राम हेलो
1: सनौतिया।
0: ओहो, इस बार मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। जी मांगीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, आप से मैं बढ़िया हूँ।
0: बस कार्यक्रम खत्म होते होते आपका फोन लग गया।
1: किस्मत की मेरी कि आज आपसे बात हो जाए तो हो गई।
0: और सब बढ़िया है?
1: हाँ, सब बढ़िया है, आपकी दुआ से। और बारिश भी खूब हो गई हमारे मध्य प्रदेश में,
0: बहुत बढ़िया।
1: बोनी का काम भी चल रहा, कुछ बो दई कुछ बो रहे हैं, मतलब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: बिल्कुल बारिश काल भयंकर भाई बहन।
0: बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप सब किसान लोग खूब खुश रहें, खूब बढ़िया से फसलें उगाएं और हम लोगों तक बहुत बढ़िया अनाज पहुँचे, है ना?
1: तो सही है।
0: तो सब परिवार में सब ठीक है आपके?
1: हाँ बिल्कुल, आपकी दुआ से सब आनंद है।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। दुआएं आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा, ठीक है?
1: जी,
0: और
1: जी,
0: आपने
1: जी।
0: आज गाना जो चुना है
1: लेकिन गाना चुना मैंने,
0: क्या
1: समय के हिसाब से,
0: समय के हिसाब से चुना है।
1: बाकी नहीं, मतलब
0: दिल तो हमारा भी नहीं भरता है, लेकिन समय की जो पाबंदी है वो तो देखनी पड़ती है, ठीक है? तो सुनवाते हैं ये आपने हम दोनों फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, ठीक है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार,
1: धन्यवाद। अभी न जाओ छोड़ कर,

दिल अभी नहीं भरा, लेकिन समय की पाबंदी है और उसको हमें मानना ही है। इसलिए आज का ये कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया।

0: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे

0: होली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी, ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से,
0: हैं?
1: कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे
1: हाँ
0: अरे, रोने
1: हाँ
0: लगी। अरे सुन तो। अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़। पुरखों की भी यही रीत है, मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं,
0: है?
2: कोई बहाना बना देंगे। ठीक
0: हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे
1: चुब्बा। ये क्या घुल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं।
1: जरूर मुझे बुद्धू बनाने की बात होगी।
0: नहीं नहीं नहीं
1: हाँ, अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
2: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं
1: अरे
2: अम्मा
1: चुप,
2: की।
1: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू, चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अच्छी अच्छी
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस।
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: देखो ये
0: पेड़ देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
4: ध्यान से बेटा।
1: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो, देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे, सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है बुधवा, रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम

0: दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: तू समझ गई ना?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
2: बता?
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
2: बोल ना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
2: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण

0: चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सदाबहार नगमे।

इज्जत फिल्म का गीत आपने सुना। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। इन्हीं आवाजों में आइए सुनते हैं एक नज़र फिल्म का ये नगमा। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार खयाम। श्रोताओं, ये खूबसूरत नगमों का सफर आप आगे भी हम जारी रखेंगे आपके लिए। बस वक्त है एक अंतराल का।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर हर दिन शाम 5:45 पर। रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत कश्मीर की गली फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, SH बिहारी की रचना, OP नैयर का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जंगली फिल्म का गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने और आवाजें दी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

0: जंगली फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का

0: उद्देश्य होर्मुज जलडमरु मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: सपनों को देना है नई रफ्तार तो सुनिए आकाशवाणी प्राइमरी चैनल का बेहतरीन प्रोग्राम। यूथ के लिए जरूरी जानकारी, सामयिक चर्चा, फील्ड से ओबी रिपोर्ट्स और गीत संगीत का परफेक्ट मिक्स, सब कुछ एक ही मंच पर हर दिन शाम 5:45 पर। रेडियो ऑन रखिए और जुड़िए नई उड़ान से।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
8: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
1: श्रोताओं, हम आपको आज शाम के कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम होगा आज शाम 7:31 पर, जिसमें आप सुनेंगे गुर्दे के ट्यूमर के बारे में जानकारी देंगे प्रोफेसर डॉक्टर मनोज यादव, भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। इसके अलावा डॉक्टर विकास कुशवाहा बताएंगे फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। हिंदी कार्यक्रम में आज रात 8 बजे प्रदक्षिणा मिश्रा का काव्य पाठ प्रसारित किया जाएगा। हरिहरन की गाई गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:10 पर। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा आज रात 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे ऋषिकेश गांगुर्डे का गायन।

0: शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में खरीफ में हरा चारा उत्पादन के बारे में प्रकाश चंद्र सिंह से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव बताएंगे मौसमी बुखार के कारण और निवारण, और उनसे भेंट करेंगी नीना सोनकर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत के बरखेड़ा और बीसलपुर असेंबली हलकों में 569 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने 2500 बेघर खानदानों में शहरियत और लीज़ तकसीम की। जलसायाम से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हुकूमत का अज़्म गरीबों, नौजवानों और ख़वातीन का तहफ़ है। मरकज़ी वज़ीर मम्लकत और पीलीभीत के MP जितिन प्रसाद भी इस तकरीब में मौजूद थे।
2: हमारी प्रतिबद्धता गरीब के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता युवा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी प्रतिबद्धता व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। हमारी प्रतिबद्धता किसी गुंडा माफिया के प्रति नहीं हो सकती है, और हम उसको कोई संरक्षण भी न देंगे न देने देंगे।
1: पीलीभीत के बाद वज़ीर-आला मुरादाबाद जाएंगे, जहां वो मुरादाबाद डिवीज़न में महकमा तामीरात आम्मा के पुराने कामों का जायज़ा लेने और नए कामों के लिए एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग करेंगे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की मीटिंग की सदारत की और कई प्रोजेक्टों बशमूल एक्सप्रेसवे, सनती इंफ्रास्ट्रक्चर, देही रोजी रोटी, तवानाई और EV चार्जिंग की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर और मेयारी तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। वज़ीर-आला ने तमाम सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, तिब्बी इदारों, ज़िलाई सतह के मर्दाना और ख़वातीन अस्पतालों और होटलों के फायर NOC स्टेटस की फौरी तस्दीक की हिदायत दी। वज़ीर-आला ने एक्सप्रेसवे समेत दीगर मंसूबों के लिए ज़मीन के हुसूल के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के साथ सनती इलाकों की तरक्की के लिए मुनासिब ज़मीन की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने पर खसूसी ज़ोर दिया। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस ज़िले में 548 करोड़ रुपए के 143 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुस्तहिकीन में घर की चाबियां, स्मार्टफोन और चेक तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि हाथरस में जल्द ही एक प्रोसेसिंग सेंटर मुकम्मल हो जाएगा, जिससे वहाँ के आलू काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचेगा।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद वज़ीर-आला ने आगरा में अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों के साथ तरक्याती कामों और अमन व अमान की पेशरफ्त के सिलसिले में जायज़ा मीटिंग की। वज़ीर-आला ने ओहदेदारों को तमाम ज़ेर-उल-तवा प्रोजेक्टों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया केस के तमाम 8 मुलजमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस तमाम 8 की रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में मुबैना गबन और माली बेजाबदगियों से मुतालिक दायर दरख्वास्त की आज समाअत हुई। अर्जी में CBI की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया था। कल से रियासत भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ। पहले दिन बूथ डे पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। आज से 3 जुलाई तक महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगी। मुहिम के पहले रोज़ मुख्तलिफ अज़ला में अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने बच्चों को पोलियो

घर आंगन कार्यक्रम है तैयार और सब श्रोता बहनन का ममता के नमस्कार। श्रोता बहनी अब तो लागत है भाई बरखा बढ़िया हो ही जाए चाहिए, बड़ा गर्म है, तनिक तुनिक टपका बस बंद होगा और ऊपर से लड़कन बच्चन के घर में हुड़दंग। लड़का बच्चा अगर कहे मन ना होए तो और जुआ कुला जाता है कि नहीं, और जब ये बढ़वार हो लागत है तो इनके भविष्य के चिंता तो देखो हर महतारी बाप का होता है और वही गिधारण के भविष्य खातिर भरसक प्रयास भी करत हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। कहे कि जहाँ चाह हुआ रा, और देखो सब महतारी बाप चाहत हैं कि हमरे लड़का बच्चा का कौनो कमी ना होए। मुला ई सब माँ सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छे संस्कार जौन हमका सबका जरूर दे का चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी है जौन इनका आगे चल के जिम्मेदार बनावत हैं, मने हर मेर के जिम्मेदारी के एहसास करावत हैं, अनुशासन सिखावत हैं, उनका मजबूत बनावत हैं कि वही हर परिस्थिति के टट के सामना करें और अच्छे आचरण और व्यवहार के साथ अपने भविष्य के ओर या आगे बढ़ें। यह सच्ची और बढ़िया परवरिश होत है और ये सब शुरुआत तो बहनी घर ही से होत है। कबो कबो का होत है कि दादी नानी हो रही जो है इनके गलती पर डांटो मारो तो इतना मोह माँ कहा कहीं है, अरे लड़का है जाए दो डांटो ना मारो ना। कबो कदार तो भाई देखो ही नीक लागत है कि हाँ भाई चलो बड़ी हैं कह रही हैं तो मान जाई। मुला यह इनके आदत अगर बन गया लड़का बच्चन के चलो दादी नानी तो बचा ही ले हैं, फिर ये ना ही सुनत हैं तो कहत हैं ना जैसन संगत वैसन पंगत। लड़का बच्चा जैसन देखत है वह सीखत है ये परिवार और समाज से, तो भाई अच्छा बुरा सब यही परिवार और समाज तो सीखी है और वह इनके चरित्र में झलकत भी है। तो यह लिए हमका सबका अपने किदारण का खाली स्कूली शिक्षा नहीं देखा है बलुक उनका अच्छे संस्कार जीवन जिए के मूल सिखावे का है। राजा बेटा बनावे से ज़्यादा जरूरी है समाज में आपन जिम्मेदारी और दूसरन के सम्मान करब सीखें, बड़न के सम्मान करें, छोटन का सम्मान और प्रेम स्नेह दें। सबसे बड़ी बात अपने घर परिवार और समाज में मेहरुवन के सम्मान करब बहुत जरूरी है, उनके साथ परंपरा के सम्मान करें। और बहनी हमरे देश और समाज में देखो ब्याह गौन यह लिए जिम्मेदारी सिखावे के सबसे महत्वपूर्ण परंपरा और संस्कार सिखावे के तरीका है, रिश्तन के प्रति भी जिम्मेदारी होत है कि नहीं, और ये हम सब के उत्तरदायित्व भी है और अनिवार्य भी कि हम अपने लड़कन बच्चन का संस्कार दें। तो चलो जैसा भाई जैसा कि आजकल भी हा गौन के भाई बिरिया भी चलत है तो आप सब सुनो इस सुंदर विवाह गीत, स्वर है रूपाली श्रीवास्तव बहनी के।

0: श्रोता बहनी, हमरे ग्रामीण बहनी होरी देखो घर और खेतन के टहल मा अतना व्यस्त रहा थी कि अपने स्वास्थ्य के ध्यान नहीं दे पावत थी। चाहे उम्र के कौनो भी पड़ाव पर हो, बस काम काम काम। जबकि हम मेहरुवन माँ एक उम्र के बाद देही माँ कैल्शियम की कमी हो लागत है। तो कहत नहीं है कि अरे पछा दर्द होत है, हाथ गोड़ पिरात है। तो भाई चलो, यह के अंतर्गत आप सब सुनो ये भेंटवार्ता जीमा अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सागर मीणा भैया से नीना सोनकर बहनी बातचीत करें है। और विषय है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, कारण, लक्षण एवं बचाव। तो बहनी बहुत ध्यान से सुने हो आप सभी भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर सागर मीणा जी को। और आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस शब्द को सुना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की एक बीमारी है और इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नाजुक हो जाती हैं, जोड़ों में सूजन और दर्द भी होता है जिस भी महिला को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब का करते हैं स्वागत। डॉक्टर सागर मीणा जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक आम महिला, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, वो कैसे जाने सरल शब्दों में कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है?
2: अगर हम सिंपल आम भाषा में बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, तो इसका सिंपली मतलब है कि हड्डियों की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसका कम हो जाना। और ये आमतौर पर सभी उम्र के लोगों में, मतलब मेल्स और फीमेल्स दोनों में, जो बोन की जो स्ट्रेंथ होती है एक सर्टेन एज के बाद कम होती जाती है। बट महिलाओं में खासकर जो मीनोपोज होता है, जो कि 45 या 50 के अराउंड होता है फीमेल्स में, उसके बाद उनमें जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, उनके ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसकी कमी की वजह से उनमें ज़्यादा तेजी से जो बोन की क्षमता है, बोन की स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा तेजी से कम होती है। इसलिए वो ज़्यादा प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर।
1: जी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि जब कोई भी महिला ऐसी जो माहवारी के दौर से गुजर रही होती है, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका भी आपने जिक्र किया, वो बनना बंद हो जाता है, तब इस तरह की समस्याएं जो हड्डी से संबंधित होती हैं, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, आर्थराइटिस हो, वो जन्म लेती हैं। और समय रहते इनका निदान होना भी जरूरी है, नहीं तो अगर समय ज्यादा बीता जाएगा और समय से अगर डॉक्टर के पास नहीं कोई भी महिला जाएगी, तो उसे हड्डियों की एक ऐसी बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कहा जाता है हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियों का क्षरण होता है, हड्डियां इतनी नाजुक हो जाती हैं कि ऐसा भी सुनने में आया है कि कोई भी महिला, मान लीजिए उठ रही है, बैठ रही है, तो हड्डी चटक भी सकती है। अब ये बताइए कि ये महिलाओं में ही अधिक क्यों होता है?
2: अगर हम महिलाओं की बात करें, और स्पेशली हम ऐसी उम्र की महिलाओं की बात करें जो 50 से ज़्यादा है, एल्डरली वुमन, तो उनमें ज़्यादा कॉमन क्यों होता है? वन ऑफ द रीजन, एक कारण मैंने आपको ये भी बताया, मीनोपोज जो है।
1: जी जी।
2: क्योंकि महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है
1: जी,
2: उसका खास रोल होता है हड्डियों के बनने और उनके कमजोर होने में
1: जी।
2: तो उस उम्र के बाद सबसे बड़ा कारण तो यही हो गया कि जो 45 की उम्र है उसके बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन कम हो रहा है
1: जी।
2: दूसरी चीज, जो इंडियन फीमेल्स है, हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, उनके अंदर वैसे ही मेल न्यूट्रिशन बहुत आम है, जो मेल न्यूट्रिशन से प्रोन होती है
1: जी।
2: और इसके अलावा जैसे कि महिलाओं में कुछ बीमारियों के चलते एक सर्टेन उम्र के बाद कुछ दवाइयां भी ले रही होती है साथ में, वो भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोन बनाती है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि 45 की उम्र एक ऐसी उम्र का पड़ाव होता है जब किसी भी महिला को रजोनिवृत्ति के दौर से गुजरना पड़ता है, और जैसे ही किसी भी महिला को रजोनिवृत्ति होती है, उसी समय उसको हड्डियों की समस्या, शरीर में हार्मोनल चेंजेस और शरीर में अनेक तरह के बदलाव, परिवर्तन नजर आने लग जाते हैं, और समय से इनका उपचार करना बेहद जरूरी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ये बताइए। हम जब बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, तो कैसे कोई भी महिला, एक सामान्य महिला पहचाने कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि एकदम से 45 की उम्र आई, कोई भी महिला ये तो कह नहीं सकती कि मुझे आज ही एकदम दर्द हो गया। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती होगी कि हड्डियों के जोड़ों में हल्की सी चिलकन होती होगी, दर्द महसूस होता होगा, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि चलने

0: करने में लड़खड़ाहट सी महसूस होती है, क्या उसके लक्षण होंगे?
1: हम डिटेल में जाएं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो इसको एक साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है
0: जी।
1: इसके लक्षण कॉमनतया आम लोगों में नहीं देखे जाते, भले ही हड्डियां दिन ब दिन कमजोर होती जा रही होती है, लेकिन उस महिला में हो सकता है आपको कोई लक्षण देखने को ना मिले और सीधे वो आपके पास आती है कि फ्रैक्चर्स लेके आती है।
0: जी जी
1: बट फिर भी हम अगर एक कॉमन आम लक्षणों की बात करें तो जैसे कि कमर दर्द, बदन दर्द, ऐसी चीजें, ये थकावट होना, ये सब आम लक्षण है। बट कॉमन तो जो मरीज होते हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस वाले या सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस वाले जो मरीज होते हैं, वो हमारे पास आमतौर पर फ्रैक्चर लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी हड्डियां इतनी कमजोर है या उनको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी है। तो इसके लिए हमने क्या सुझाव देते हैं कि 50 या जैसे 50 से ऊपर वाली महिलाएं हैं, वो आमतौर पर रेगुलरली आके हमारे पास चेक करवाएं कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, आपके कहने का ये मतलब है कि अचानक किसी भी महिला को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं कि ऐसा हो गया है, उसे कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, कूल्हे में हो सकता है, कलाई में हो सकता है, मतलब जहां जहां जो भी ज्वाइंट्स मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें उसे दिक्कत आ सकती है। अब ये बताइए कि ये किन कारणों से होता है? हमने ऐसा सुना है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपकी हड्डियों का घनत्व वो कम हो गया है, बोन डेंसिटी टेस्ट की भी हमने बात सुनी है, तो किस तरह से आप जांचें करते हैं जब कोई महिला आपके पास आती है, वो भी उस उम्र की जब वो रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर रही होती है?
1: अगर आमतौर पर कोई महिला हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की शंका के साथ हमारे पास आती है, तो हम उनकी कुछ खून की जांचें करवाते हैं और कुछ जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एक्सरे जैसी चीजें करवाते हैं। खून की जांचों में हम उनका जो ब्लड में कैल्शियम, विटामिन डी, एल्कलाइन फॉस्फेट, क्रिएटिन, थायराइड की भी जांच कराई जाती है, और जो अगर हम दूसरे पार्ट जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो हड्डियों की जांच होती है पर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, उसके लिए हम कुछ एक्सरेज कराते हैं। कुछ एक जांच होती है जो स्टैंडर्ड शायद बहुत कॉमनली सुना होगा, डेक्सा स्कैन जिसको बोलते हैं
0: जी।
1: वो कॉमनली महिलाओं में कराया जाता है। वो जो डेक्सा स्कैन है वही गोल्ड स्टैंडर्ड है इसकी जाँच के लिए
0: जी।
1: उससे जो हड्डियाँ कितनी मजबूत है वो देखा जाता है। उसमें कुछ स्कोरिंग दी गई है, वो जो आम एक यंग मेल या फीमेल उसकी हड्डियाँ होती है उससे कंपेयर करके स्कोर दिया जाता है
0: जी।
1: उससे हम पता लगाते हैं कि किसी महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है।
0: जी, आपने बताया कि आप जांच इन इन तरीकों से करते हैं। अब ये बताइए कि मान लीजिए आपने जांच की, तो जाहिर सी बात है कि आप इलाज के तौर पर कुछ दवाइयां लिखेंगे, वो कोई भी महिला खाएगी, उसके आहार विहार के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: अगर मैं आहार व्यवहार की बात करूं तो जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम बात करें तो मुझे लगता है, या हम जैसे ऑर्थोपेडिशियंस को लगता है कि किसी भी महिला को अपनी 20 से 30 उम्र मतलब अर्ली एज में ही इसका प्रिवेंशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक हड्डियों की ताकत या सबसे मजबूत हड्डी होती है वो 20 से 30 की उम्र में होती है, उसके बाद दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। तो उसी उम्र में हमें खान पान का ध्यान रखना है, ऐसी चीजों का सेवन करना है जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, जैसे कि दूध में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है
0: जी।
1: जो दही होता है उसमें अच्छी मात्रा में होता है, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और जो सोया प्रोडक्ट होते हैं जैसे सोयाबीन हो गया, इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्लस कैल्शियम दोनों होते हैं। सन एक्सपोजर मतलब कि जो धूप में सिकाई करनी चाहिए एटलीस्ट जैसे आधे घंटे के लिए हर दिन आप बाहर जाएं, तो ताकि आपका जो विटामिन डी लेवल्स है वो बने रहे शरीर के अंदर। और उसके अलावा जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम योगा नियमित रूप से करना चाहिए। जो सिडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है मतलब कि घर पर बैठे रहने वाली जो लाइफ स्टाइल होती है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमको एक एक्टिव लाइफ मेंटेन करनी चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने एक ऐसी लाइफस्टाइल की बात की कि हमें आराम परस्ती का जीवन नहीं जीना है। वो महिलाएं जो बहुत आराम परस्त होती हैं, उनमें इस तरह की दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं। तो क्या टहलना, घूमना और योग के द्वारा हम इन सारी क्रियाओं को करके अपनी हड्डियों को सही मजबूत रख सकते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल, हम अगर नियमित रूप से व्यायाम करें जिसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं कि जो पार्क में बाहर जाके तेजी से चलना, सीढ़ियां चढ़ना या योगा करना, और भी जो सारी एक्सरसाइज होती है अगर उनको हम नियमित रूप से करें, हमने खान पान का ध्यान रखें, जो न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं उनका ध्यान रखें, नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाके इसकी स्क्रीनिंग करवाएं कि हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, तो इससे बचा जा सकता है और पूरी तरह हड्डियों की जो क्षमता है उसको नॉर्मल रखा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि धूम्रपान और शराब किसी भी बीमारी में सही नहीं है, तो क्या हड्डियों की क्षमता को भी कमजोर करता है धूम्रपान, शराब या फिर इस तरह के कोई जो तत्व हैं जो लोगों के द्वारा खाए जाते हैं?
1: धूम्रपान और शराब दोनों ऐसी चीजें हैं जो लगभग

0: शरीर के सारे सिस्टम्स को खराब करती है। तो ये जायज है कि ये हड्डियों पे भी असर डालती होगी। जो जो टोबेको है, टोबेको च्यूइंग या फिर जो स्मोकिंग है, वो आपको हड्डियां जो बनने वाली कोशिकाएं होती है शरीर में
1: जी
0: उनको अफेक्ट
1: जी
0: करती है, तो हड्डियां बनने नहीं देती, मतलब हड्डी जो मजबूती जो करने वाली कोशिकाएं होती है उनको अफेक्ट करती है, इसलिए वो हड्डियों को कमजोर करती है। और जो अपना अगर कोई अल्कोहल लेता है नियमित रूप से, तो उसके शरीर में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, अपनी गट से एब्जॉर्प्शन होता है, वो कम हो जाता है, तो इस वजह से भी वो हड्डियां कमजोर होती है। तो डेफिनेटली ये रिस्क फैक्टर्स है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के, ना सिर्फ महिलाओं में, पुरुषों में भी अगर कोई इनका सेवन करता है तो उनको भी ये ऑस्टियोपोरोसिस कोज कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई। अब ये बताइए, क्योंकि जब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की, और भारत के ग्रामीण अंचल की बात करते हैं, उन इलाकों की बात करते हैं जहां महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा नहीं सोचती हैं, जागरूक नहीं हैं, तो बतौर एक विशेषज्ञ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे कि शुरू से ही जब कोई भी लड़की युवा होती है उससे पहले से ही हमें अपने भोजन पे ध्यान देना होगा। कैल्शियम, विटामिन डी की आपने बात की, आपने सूर्य किरण चिकित्सा की भी बात की कि हमें सनलाइट में रहना है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बिताना है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हों। आपने एक ऐसी लाइफस्टाइल की भी बात की कि जो बहुत आराम परस्त वाला जीवन होता है। ये प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, तो उनको आप क्या संदेश क्या बताना चाहेंगे कि उनको अपनी लाइफस्टाइल, किस तरह की जीवन शैली शुरू से रखनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरे घर के लिए जो भोजन या खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्वों से जो भरपूर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हैं और हम जो बचा खुचा होगा वो हम खा लेंगे। एक महिला जो घर की धुरी होती है उसको किस तरह से शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा?
0: जो अपने स्पेशली अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ना कि शहरी एरिया की, तो वहाँ की महिलाओं को खासकर, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुपोषित शिकार होती है बचपन से ही,
1: जी
0: ना सिर्फ
1: जी
0: फीमेल्स मतलब मेल्स भी, इन जनरल मेल
1: जी
0: न्यूट्रिशन है रूरल एरिया में। तो हमें जो महिलाओं को अगर सशक्त करना है तो वहाँ पे, तो हमें शुरू से ही, जो स्कूल टाइम से ही, जैसे हमने अपने मिड डे मील का प्रोग्राम होता है, तो उसी टाइम से एटलीस्ट उनके डाइट में सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे मिल्क ऐड करना चाहिए अपने को।
1: जी
0: और उसके अलावा रेगुलर, जैसे शुरुआत की जो उम्र है उसी से नियमित रूप से व्यायाम, किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, किसी खेल कूद में भाग लें नियमित रूप से, ना कि सिर्फ प्रतियोगिता में पार्ट लेने के लिए, बल्कि जैसे घर पे भी एक हॉबी की तरह खेलने के लिए कोई स्पोर्ट्स, कोई डेली एक्सरसाइज, ऐसा रूटीनली मतलब फॉलो करें, तो इस चीज से बचा जा सकता है। प्लस न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि सबसे की जो कंपोनेंट है किसी की हड्डी को मजबूत रखने के लिए, वो कैल्शियम और विटामिन डी सबसे
1: जी
0: अहम योगदान है इनका। तो कैल्शियम अपने को सबसे ज्यादा कॉमनली, जो सबसे कॉमन आदमी को कहीं भी मिल सकता है, वो है दूध। दूध में कैल्शियम अवेलेबल होता है,
1: जी
0: तो वो नियमित रूप से सेवन करें उसका। और विटामिन डी सिंपली अपनी बॉडी में बनता है, अपने को सिर्फ सूर्य की किरणों के नीचे जाके बैठना है कुछ देर के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के लिए। सूर्य की किरणें भी आवश्यक हैं, और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का भी आपने जिक्र किया। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। आपने दूध के बारे में कहा, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ जिनको हम पनीर, दही, ये सब प्रोबायोटिक और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, तो इन सब का सेवन किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी है अगर वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचना चाहती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, तो क्या ये भी ऐसी कोई जेनेटिक बीमारी है कि माँ को हुआ ऑस्टियोपोरोसिस या नानी को था तो बेटी में भी आएगा ही आएगा?
0: नहीं, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है,
1: जी
0: ये एक एक्वायर्ड बीमारी जिसको हम बोलते हैं कि जन्मजात नहीं है, ये सिर्फ जन्म के बाद जो हमारी हैबिट्स होती है, या जो हमें शुरुआती दिनों में कैसे हमने खान पान किया है, कैसे हमारी सेहत रही है, या कोई बीमारी तो नहीं हुई, उसकी दवाई तो नहीं ली, तो उनकी वजह से ये होता है। तो ये जन्मजात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं फैलता ये बेसिकली हमारी जो आदतें रहेगी, या हमारी कोई बीमारी, हमारे किस चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, जैसे कि धूम्रपान हो गया, शराब हो गई, इनके सेवन से ये होता है, या कोई किसी बीमारी का दवाई ले रहे हैं, जैसे
1: जी
0: स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स वन एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर किसी बीमारी की हम दवाई में हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। मीनोपोज हो गया, तो
1: जी
0: ये सब इसके फैक्ट कोजेज है, ऐसा ये जन्मजात नहीं होता ये बीमारी।
1: जी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि जो चुपचाप खामोशी से शरीर में प्रवेश करती है बीमारी जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, वो अगर कहीं भी महसूस भी होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाना होगा और उनको दिखाना होगा। क्या ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है? मान लीजिए आपके पास कोई महिला आती

0: है और रजोनिवृत्ति का दौर उसका खत्म हो चुका है, हो चुकी है रजोनिवृत्ति यानी कि मासिक धर्म समाप्त हो चुका है, तो पूरी तरह से दवाओं के द्वारा ये ठीक हो जाती है या फिर वही वाली बात जो आपने शुरुआत में की कि जब बच्ची युवा है और पहले से बहुत पहले से कि जब वो पैदा होती है धीरे धीरे उसके खाद्य पदार्थों में जो पोषण है उसको भरपूर मिलना बहुत जरूरी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी जरूर हो, क्या कहना चाहेंगे?
1: डेफिनेटली सही हो सकता है, इसको मैं सही होने से ज्यादा बेहतर शब्द यूज करूंगा कि इसको बचाया जा सकता है
0: जी,
1: कि हड्डियों को बचाया जा सकता है सही, अगर उम्र के हिसाब से हमने सही एक्शन लिया तो। अगर मान लो किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो भी गया, मान लीजिए कि कोई मरीज आता है उसको डायग्नोसिस हो गया कि भाई हाँ इनकी हड्डियां एक लेवल से ज्यादा कमजोर है और फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसको हम नॉर्मल नहीं कर सकते, लेकिन उस हड्डी को इतना मजबूत तक हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं कि उसको फ्रैक्चर ना हो या वो अपनी आम जीवन बिता सके उस उम्र के हिसाब से। शायद नॉर्मल करना मुश्किल नहीं होगी, जैसे हड्डी किसी की 30-40 उम्र की है वैसी हम 70 साल की उम्र में नहीं कर पाए, लेकिन कुछ दवाइयों के कुछ सप्लीमेंट से हम उनको उन रिस्क फैक्टर से बचा सकते हैं जैसे फ्रैक्चर है या पेन हो रहा है उनसे उनको बचाया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉइड्स का जिक्र किया कि जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं उनकी इस तरह से समस्या ऑस्टियोपोरोसिस की आ सकती है, आपने बहुत सारी बातें बताई कि बचपन से ही बच्चियों के बारे में सोचना होगा कि उनको किस तरह का खाद्य पदार्थ दें, आपने बहुत सारी बातें ये भी बताई कि ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, ऐसा कोई ना सोचे कि मेरी माता जी को था तो मुझे भी होगा, ये समय रहते इसका इलाज यही है कि हम एक्टिव रहें और अपने कार्य को अच्छी तरह से निर्वहन करें, अपने शरीर पर महिलाएं ध्यान दें और ये मानकर चलें कि जो प्राकृतिक एक प्रक्रिया है रजोनिवृत्ति वो होगी ही और उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं पैदा होंगी। डॉक्टर सागर मीणा जी आप प्रोग्राम में आए, आपने महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक हमारी बहनों को बताया, आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कारण लक्षण एवं बचाव ई विषय पर अब ही आप सब सुनियो ई भेंटवार्ता जिमा डॉक्टर सागर मीणा भैया से नीना सोनकर बहनी बातचीत करिन रहा तो और प्रस्तुति रही ज्योति चंद्रा बहनी के। तो हम सब मेहरवन के लिए भाई इतनी बढ़िया जानकारी खातिर हम हूँ अपने और श्रोता बहनन के ओरिया से डॉक्टर साहब का धन्यवाद दे दी जाए। और देखो हमरी बहनी होरी भाई ये बढ़िया जानकारी के बाद भाई कुछ गीत गौनई भी सुना चाहत हुई है कि नहीं, और टहल से तनी थकी हो गई हुई हैं तो भाई थकान जरूर उतारो और आराम भी करो, लेकिन इन नकटा जरूर सुनो रंजना मिश्रा बहनी के स्वर में।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हाँ श्रोता बहनी देखो गर्मी माँ तो भाई मेर मेर के फल बाजारे में आवत हैं और गर्मी भी देखो कितना है कि नहीं और सब फायदेमंद सेहतमंद होते हैं और सब पानी वाले भी फल होते हैं। मुला आज हम जामुन के उपयोगिता पर चर्चा करब है कि नहीं कहा थे ना आम के आम और गुठलियन के दाम मने लाभकारी जामुन भी खावा जाए और ओके गुठलियन के भी लाभ उठावा जाए है ना बढ़िया फल जौन गर्मी माँ स्वास्थ्य खातिर बढ़िया वरदान है देही का ठंडक भी देते है इमा विटामिन सी लौह तत्व और कई पोषक तत्व शामिल हैं। बहनी जामुन पेट खातिर बहुत लाभकारी होते है इसे कब्ज के समस्या दूर हो जाते है और देखो जब ज़्यादा गर्मी दस्त जैसी समस्या होए पेट फूले लागे तो भाई उमा भी लाभकारी होते है और खून के शुद्धिकरण करत है जिसे फोड़ा फुंसी के समस्या भी भाई दूर आते घामे माँ हो वाले त्वचा जैसे नुकसान करत है घाम मा निकलो तो उसे भी आराम मिलत है और त्वचा स्वस्थ रहत है और चमकदार राखत है खून बढ़ावत है और देही माँ पानी के कमी के पूर्ति भी करत है मने पानी और इलेक्ट्रोलाइट जैसे खनिज लवण के संतुलन बनाए रखते हैं। और अब भाई जैसा कि हम कहें आम के आम गुठलियन के दाम तो चलो गुठली के उपयोगिता भी जाना जाए मने फल खाए के बाद इके गुठली धोए के बढ़िया और सुखवाए के पीस ले है कि नहीं और धैले फिर पानी या शहद के साथ है इके सेवन एक चम्मच भिनसारे निहार मुँह करे जिसे मधुमेह की समस्या से भी निजात मिली और पेटो नीक रही। बस इतना ध्यान रखें कि जामुन या इके गुठली के जो सेवन करें वो 2 घंटा बाद या 2 घंटा पहले दूध दही के सेवन बिल्कुल ना करें। तो बहनी गर्मी माँ जामुन के सेवन जरूर करो और स्वस्थ रहो। और बहनी स्वास्थ्य के बात हो रही है तो तनी ननुहारन के स्वास्थ्य की भी बात कह ली जाए तो आजकल देखो पल्स पोलियो अभियान भी चलत है। बहनी लड़कन बच्चन का चाहे सगरू टीका अस्पताल में लाग जाए मुला ई पल्स पोलियो के खुराक 0 से लेके 5 साल तक ननुहारन का जरूर पियाओ। 28 जून मने काल करीबी बूथ पर पियावा गवा अब आज और काल 29-30 का घर घर जाए के कार्यकर्ता छूटे भये ननुहारन का दवाई पियाई हैं। तो बहनी ई टीका मुफ्त और सुरक्षित है और बहुत लाभदायक है इलिए 2 बूंद जिंदगी के जरूर लड़कन बच्चन का पियाओ।

ओ आप सब स्वस्थ रहो, आपके लड़का बच्चा स्वस्थ रहा है, यह कामना के साथ है आज के कार्यक्रम से ममता सक्सेना का देव आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मणिकर्णिका फिल्म का ये गीत। सुनना चाहते थे कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदरा मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में कुछ ईमेल्स आते हैं जो हमें बहुत ही खूबसूरत विचार बताते हैं। ऐसे ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, आप सब लिखते हैं, जब हमें एक छोटी सी खरोंच भी लगती है तो हमें बहुत दर्द होता है। उस दर्द को महसूस करके हम व्याकुल हो जाते हैं, एक मरहम की तलाश करते हैं और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर बस अपने उस छोटे से घाव के बारे में सोचते हैं। लेकिन ज़रा उन वीर सैनिकों के बारे में सोचिए जो देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। जब हम अपनी एक छोटी सी खरोंच पर कराहते हैं, तब वे सैनिक सीमा पर गोलियों और बमों के धमाकों के बीच खड़े होते हैं। वे न केवल अपने शरीर पर लगे घावों की परवाह नहीं करते, बल्कि हंसते हंसते अपनी जान की बाजी लगा देते हैं ताकि हम और हमारा देश सुरक्षित रह सके। वे सैनिक जब शहीद होते हैं तो वे केवल अपना जीवन ही नहीं न्योछावर करते, बल्कि वे अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा, पत्नी का सुहाग, बच्चों का सिर से साया और अपने अनगिनत सपनों को भी देश के नाम कर देते हैं। वे शहीद होते हैं ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां चैन की सांस ले सकें। उनकी वीरता और त्याग को शब्दों में पिरोना असंभव है, तब भी हमें छोटी मोटी तकलीफ जब भी हो तो एक पल के लिए रुककर उन सैनिकों को ज़रूर याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे बेहतर कल के लिए अपना आज तक कुर्बान कर दिया। वाकई बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है और आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत।

में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारे पास एक और ईमेल आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से। विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया, राजेश कुमार, विजय पांडे और बबलू यादव, आप सबका एक संदेश है। जैसे विचार हम अपने मन में धारण करते हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व आकार लेता है। स्वयं को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोरी बढ़ेगी, और यदि खुद पर विश्वास रखेंगे तो शक्ति और सफलता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आपने बहुत सही बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। आप सब सुनना चाहते हैं हीरो फिल्म का गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर और मनहर उदास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा आप सब अपनी पसंद पर सुनिए अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाज़ में खलनायक फिल्म का ये गीत

संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप सब सुनना चाहते हैं रफू चक्कर फिल्म का गीत, जिसे गाया है शैलेंद्र और आशा भोसले ने।

इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:05

0: 15 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
4: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से

0: भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र

0: पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सफलता की कहानी क्रम में खरीफ उत्पादन के बारे में अंगनू दास से भेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज सफलता की कहानी के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद लखनऊ के काकोरी ब्लॉक के गौरी गांव के अंगनू दास भैया, एक सफल किसान हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के जुबानी। स्वागत है हमारे कार्यक्रम में अंगनू दास जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास इस समय कितनी खेती है।
2: हमारे पास करीब 15 बीघा खेती है।
1: अच्छा, तो आप इस खेती के व्यवसाय से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं?
2: हम बचपन से जुड़े हैं, हमारे माता पिता करते थे, विरासत में दे गए और तब से आज तक कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो खेती में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें लेते हैं आप?
2: खेती में हम कई धान गेहूं के लिए उपयुक्त है तो वही ज़्यादा करते हैं। कुछ ज़मीनें अच्छी हैं जिसमें बाग बगीचा और आलू सब्जियों की भी खेती कर लेते हैं।
1: अच्छा,
2: गन्ना वगैरह।
1: तो इस समय जैसे अब खरीफ की फसलें लेनी हैं आपको, तो क्या धान की नर्सरी वगैरह बैठा दी आपने?
2: धान की नर्सरी हमारी तैयार है।
1: अच्छा,
2: हम ऊपर वाले इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा
1: बरसात हो जाए।
2: हाँ, तो थोड़ा काम करने में, क्योंकि अभी धान की रोपाई में लेबर के द्वारा ही कराना पड़ता है। मशीनें बहुत कम आई हैं किसानों के बाजार में जिससे हम लोग उनका मदद ले सकें।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए धान की रोपाई लेबर से ही कराई जाती है। तो थोड़ा सा जो इस समय गर्म हो रहा है इसमें लेबर काम करने के लिए बहुत कम तैयार होते हैं, तो जब थोड़ा मौसम ठीक होगा तो उसमें काम अधिक होता है। और हमारी नर्सरी 1 महीने की हो गई 30 दिन की।
1: अच्छा,
2: और 30 दिन की नर्सरी कम कि अगर हम रोपाई करते हैं तो सरेली भूमि में पौध नष्ट हो जाते हैं।
1: अच्छा, इसलिए जो है ज़्यादा समय तक रखनी पड़ती है नर्सरी को।
2: जी,
1: तो खेत की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे?
2: अब हम पानी भरेंगे खेत में और पानी भर के पाटा लगा दिया जाएगा और बस उसमें जो है DIP का वो कर देते। पहले सूखे में जैसे बेसल ड्रेसिंग जिसको कहते हैं उसमें भी DIP डालते हैं।
1: अच्छा,
2: और बाद में भी कुछ डाल देते हैं और जो है तब फिर रोपाई करते हैं।
1: अच्छा, तो ये तो हो गई रोपाई की बात।
2: जी,
1: धान की फसल में ज़्यादातर देखा जाता है कि जिंक की कमी दिखाई पड़ती है बाद में, या फेरस की कमी आती है उससे रोग दिखाई पड़ता है, तो क्या आप इसके लिए जो है पहले से तैयारी कर रखे हैं?
2: हाँ हाँ, जिंक की कमी से हम लोगों को पता चल जाता है जिंक की कमी, क्योंकि पौधे पे दिखाई पड़ता है। तो कृषि वैज्ञानिकों को पौध उखाड़ के ले जाते हैं।
1: अच्छा,
2: स्टोर पे तो वहाँ दवाइयाँ भी मिलती हैं और वो बेहतर जानते हैं।
1: अच्छा,
2: तो वही दवा दे देते हैं जिससे कामयाब हो।
1: अच्छा, तो इस तरीके से आप लगातार जो है कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनके सलाह का पूरा पालन करते हैं?
2: हम पूरा संपर्क में ही रहते हैं क्योंकि बगैर उनके हम ऐसे कोई चीज कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करते।
1: अच्छा,
2: उन्हीं के हिसाब से खाद, उन्हीं के हिसाब से मिट्टी शोधन, उसी के हिसाब से जो रिपोर्टें आती हैं उस हिसाब से खाद और ये चीजें देते हैं।
1: अच्छा, आजकल जो है विशेषज्ञों का या वैज्ञानिकों का कहना है कि अपनी फसलों में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग ना किया जाए, जैविक खादों पर निर्भरता रखी जाए, तो आप अपने खेतों में क्या जैविक खादों का उपयोग करते हैं?
2: हम ज्यादातर जैविक खादों का ही उपयोग करते हैं, जैसे गोबर की खाद हुई, धान की पैरा बोलते हैं गांव में, तो उसको उसमें सड़ा देते हैं।
1: अच्छा,
2: और यूरिया डाला, पैरा वो पैर जो है, और चाहे गेहूं की हो बड़ी जल्दी गला देता, नहर का पानी मिला तो नहर का लगा देते, नहीं तो हम हर खेत पे हमारे पंपिंग सेट बोरिंग है उसकी मदद से सड़ा देते, बढ़िया जमीन हो जाती।
1: अच्छा, तो यानी आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि फसल के जो अवशेष हैं उनको खेत में ही मिला देते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो मजबूत रहती
2: जी
1: है। साथ साथ इसके जो और भी फसलें हैं सब्जी वाली फसलों की?
2: हाँ, इसके साथ देखिए क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत चीज़ों की जरूरत, सरसों है, सरसों लेते हैं अलग से, मतलब पहले तो लोग किसान बोते थे एक ही में मिक्सचर।
1: हाँ,
2: लेकिन अब हम अलग से सरसों बोते हैं, अच्छी सरसों ला के वैरायटी बोते हैं। तो और फिर उसके साथ साथ मटर है, आलू है।

0: ये सब्जियों और पालक है, धनिया है, मेथी है, कलौंजी है,
1: अच्छा
0: ये मसाले के भी कर लेते हैं, प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें क्योंकि मैं खेत में ही रहता हूँ,
1: अच्छा
0: तो हमारा खेत में जो फसल इस तरह खाने वाली केला है, नींबू है, तो चोरी भी नहीं होती जब हम वहाँ रहते हैं 24 घंटे, तो सारी फसलें, हल्दी है, ये सब लगा रखा है अपने
1: अच्छा,
0: जी।
1: यानी जो सब्जी वाली फसलें हैं उनका भी आप खेती करते हैं, साथ साथ कुछ औषधीय, वो उसके साथ साथ आपने जो मसाले वाली फसलें हैं इनका भी आप उत्पादन लेते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: जैसे आपने हल्दी की बात कही,
0: जी
1: तो हल्दी की कुछ विशेष प्रजाति है जो
0: हल्दी,
1: लगाते हैं?
0: हल्दी की विशेष प्रजाति है, और पहले हम देसी लगाते थे, उसकी कम उपज होती थी। हम गए प्रशिक्षण लेने पंतनगर, कृषि विभाग वाले ले गए, तो वहाँ बात हुई जो उसके एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया उसके बारे में, तो हमने कहा बीज दे दीजिए, तो उन्होंने ही बीज दिया और वो ला के यहाँ हमने रोपाई की। बढ़िया होती, उनसे जानकारी भी ली, पहले हमको पता नहीं था, पीलापन नहीं आता था, अब उन्होंने बताया कि नहीं, इसको पहले खोद करके हल्दी सुखाओ और सुखा के तब उबालो, तब
1: अच्छा
0: उसमें पीलापन आने लगा। नहीं पहले हम लोग सोचते थे तो हम किसानों को लेना ही नहीं चाहिए, जब पीलापन नहीं आता है तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती, तो अब उसको जिस तरह उन्होंने बताया उसी तरह बुवाई करते, वहीं से लाए थे, अब वो बन जाती।
1: अच्छा, आपने कहा कि हम खेत में ही रहते हैं, तो कुछ बगीचा भी लगा रखा है आपने?
0: हाँ, आम का बाग भी लगा रखा, कटहल भी लगा रखा, केला लगा रखा, बताया ना, नींबू वगैरह।
1: अच्छा, तो आम की कौन कौन सी प्रजातियां हैं आपके?
0: आम की हमारे पास दशहरी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा फल पट्टी क्षेत्र है, मलिहाबाद काकोरी फल पट्टी क्षेत्र है, तो उसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ गांव में भी बगीचा होता है, तो लखनऊआ है, दशहरी है, कटहल है, इस चीज़ें हमने लगा रखा।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: ये आम की जो फलत है, फल
0: जी
1: पट्टी के क्षेत्र में हैं, पौधे ज़्यादा हैं आपके पास,
0: जी
1: तो आम का बिक्री कहाँ होती है आपके?
0: आम की छोटे छोटे मतलब,
1: काश्तकार
0: हाँ,
1: हैं?
0: काश्तकार हैं, तो मंडी भी ले जाते हैं,
1: अच्छा,
0: कि मंडी है हमारे दुबग्गा में, तो बहुत
1: बिक जाती है आराम
0: बहुत
1: से।
0: बहुत मंडी बड़ी
1: तो
0: है।
1: अब इस समय जहाँ पे आम की टूट हो रही है, फलत तोड़ी जा रही है, तो इसके बाद पौधों के लिए कुछ पोषण की व्यवस्था करेंगे
0: हाँ,
1: आप?
0: ये जब फसल ख़त्म हो जाएगी तो अब हम उसमें फिर पानी भरेंगे, उसकी गुड़ाई कराएंगे,
1: अच्छा
0: उसमें गोबर खाद देंगे, तो जब गोबर खाद अधिक मात्रा में दे देते हैं
1: तो
0: तो
1: सारे पोषण मिल जाते हैं।
0: सारे पोषण, और पानी जब बरसता है तो सड़ जाते हैं, तो उनको पूरा भरपूर वो जो
1: तत्व
0: हम,
1: हैं सब मिल जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: सब मिल जाते।
1: जो आज की खेती है वर्तमान, और आज से 10-20 साल पहले की जो खेती थी, उसमें कुछ आप बदलाव समझते हैं?
0: बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पहले खेती जब हम करते थे तो कुएं से पानी लेते थे, जिसको पुराही बोलते थे, बैलों से पानी निकाल के। आज के युग में जब वो पहले कुआं था 4 फीट का, अब तो 4 इंच के बोरिंग से पानी लेते हैं, अपना इंजन है, अपनी बोरिंग है, और खेत पे सिंचाई करते हैं। तमाम फसलों में सुधार हुआ, पहले
1: उत्पादन ज्यादा बढ़ गया
0: ज़्यादा
1: है।
0: बढ़ गया, पहले मुड़िया समना गेहूं थे तो उनकी रोटियां तो बहुत अच्छी होती थी, परंतु पैदावार बहुत कम थी। अब तो तमाम वैरायटी आई हैं जिनका ब्यास खूब होता है, कल्ले खूब निकलते हैं,
1: उत्पादन ज्यादा है।
0: उत्पादन ज़्यादा है, तो अब बड़ा फर्क आ गया है,
1: तो कुल मिला के आप अपनी खेती से संतुष्ट हैं?
0: बहुत पूरे संतुष्ट हैं
1: अच्छा।
0: खेती से, क्योंकि किसान जब विधिवत खेती करता है तो अच्छा लाभ होता है।
1: अच्छा, तो चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे और सुनने वाले श्रोताओं को?
0: हम तो अपने किसान साथियों से कहेंगे कि खेती की देख रेख बहुत अनिवार्य है, सुबह उठ करके एक राउंड खेती में जाना चाहिए, फसल,
1: निगरानी जरूर चाहिए।
0: जी, फसल बताती है कि हमें क्या ज़रूरत है, तो हर किसान को एक बार 24 घंटे में अपनी खेती का निरीक्षण करना चाहिए, और वैज्ञानिक खेती करनी चाहिए, और जो भी है मिट्टी का प्रशिक्षण कराना चाहिए,
1: जांच जरूर कराएं।
0: जहाँ जरूरी उसके मुताबिक खाद देनी चाहिए, इससे आपकी खेती हमेशा फलेगी। घाघ की भी कहावत है, तमाम है, गोबर मैला नीम खली, ताते खेती दूनी फली।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी आपने

0: ये बहुत बढ़िया अपना अनुभव हमारे साथ और हमारे सुनने वाले श्रोताओं के साथ साझा किया। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सफलता की कहानी क्रम में आज अंगनू दास बता रहे थे खरीफ उत्पादन के बारे में और उनसे भेंट कर रहे थे ओम प्रकाश शर्मा। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
3: कुछ करिए, बस बस बड़ा पौधे, अब कुछ करिए।
2: सुनिए नई उड़ान, जहाँ गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली।

0: तैयारी हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे उपमा पांडे के गाए भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं ये लोक भजन।

आप सुन रहे थे उपमा पांडे के गाए भोजपुरी लोकगीत। संगत करता थे नाल पर अवध बिहारी वर्मा, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर विमलकांत और साइड रिदम पर अरुण मिश्रा। अब आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी समाप्त होता है। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ हो रही हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी है, अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
3: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the year's defense investiture ceremony in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
2: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहां पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम

0: खबरों पर श्री मिश्र ने कहा कि इस तरह की बातचीत न तो नहीं है और न ही भारत सरकार नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं आठवीं और नौवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, हमें खेद है कि आज आप हिंदी में समाचार सुचारू रूप से नहीं सुन सके। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर, जिसमें आज सुनिएगा गृह विज्ञान में करियर विषय पर डॉक्टर रश्मि की वार्ता। नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें नेशन नेक्स्ट के अंतर्गत सुनिएगा भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत, कल की अर्थशक्ति भारत, अभिषेक की ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम। मौसमी बुखार कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव से नीना सोनकर की भेंटवार्ता प्रसारित होगी लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। खरीफ में हरा चारा उत्पादन पर प्रकाश चंद्र सिंह जानकारी देंगे खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:31 पर, जिसमें आज गुर्दे का ट्यूमर विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव से आशीष चतुर्वेदी की भेंटवार्ता आप सुनेंगे। इसके अलावा सुनिएगा डॉक्टर विकास कुशवाहा की वार्ता।

फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। प्रदक्षिणा मिश्रा का काव्य पाठ प्रसारित होगा हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे। हरिहरन की गाई गजलों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात 8:10 पर। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में रात 9:30 पर, और ऋषिकेश गांगुर्डे का गायन हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 30 जून 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से 7:18 तक, शाम 7:31 से 8:45 तक, और रात्रि 9:30 से मैच की समाप्ति तक, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। कल समात फरमाइएगा शेरी नशिस्त। शुरका होंगे डॉक्टर जाहिद अली दानिश, जनाब अहद उल्ला खान अजर नोमानी, जनाब मोहम्मद इरफान सागर और डॉक्टर जावेद उल्ला खान जावेद नसीमी। पेशकश आकाशवाणी रामपुर की होगी। खरीफ में सह फसली खेती के बारे में सुनिएगा कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर। भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में नीना सोनकर बताएंगी कल की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे। आज सुबह कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 7:31 पर। रविशंकर देहाती व साथी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक रंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर, और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। अपराजिता कार्यक्रम में कल दिन में 1:15 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो अपराजिता। खरीफ मक्का की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर प्रभाकर सिंह जानकारी देंगे विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम होगा कल शाम 5:45 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फैलता संजाल, विश्वसनीय समाचारों के समक्ष एक चुनौती, इस विषय पर एक परिचर्चा। इस परिचर्चा में भाग लेंगे शरद मिश्रा पत्रकार, अनुराग शर्मा और वीरेंद्र सक्सेना पूर्व सूचना आयुक्त। परिचर्चा का संचालन करेंगे शरद मिश्रा। समय याद रखिएगा कल शाम 5:45 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपने दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में। स्टूडियो से लाइव हूं मैं कशिश सरन हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं कुछ दिलचस्प विषयों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रह में कैसे वाटिका लगाना जरूरी है और साथ ही सुनेंगे एक सूचनात्मक वार्ता जो कि होगी ग्रह विज्ञान में करियर पर, जो कि डॉक्टर रश्मि द्वारा आप तक प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, आज का विषय सुनते ही शायद आपके मन में एक सुंदर सी तस्वीर बन जाएगी। घर का छोटा सा आंगन, मिट्टी की सोंधी खुशबू, तुलसी का पौधा, गमले में लगी हरी मिर्च, कोने में मुस्कुराता गेंदा और सुबह सुबह पत्तियों की ठहरी हुई ओस की बूंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गृह वाटिका लगाए पर। अगर आप सोच रहे हैं कि गृह वाटिका यानी इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में पौधे लगाना। लेकिन दोस्तों, गृह वाटिका केवल पौधे लगाने का नाम नहीं है, ये अपने घर में हरियाली, स्वास्थ्य, सुकून और आत्मनिर्भरता का छोटा सा संसार बसाने का नाम है। आज शहरों में घर में छोटे छोटे बहुत सारे पौधे लोग लगा रहे हैं, अपने अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में। फ्लैट में जहाँ जगह कम होती है वहाँ आंगन कम होता है, खुली हवा भी कम होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति को घर बुलाने के लिए कोई बहुत बड़ी ज़मीन हमें नहीं चाहिए होती है। कभी कभी एक छोटा सा गमला भी घर का माहौल बदल देता है। ज़रा सोचिए, सुबह आप चाय बनाने रसोई में जाएं, अदरक डालें, इलायची डालें और फिर अपनी ही बालकनी से दो ताज़ी तुलसियों की पत्ती तोड़कर चाय में डाल दें, आहा, उस चाय का तो स्वाद ही अलग हो जाएगा। उसमें केवल स्वाद भी नहीं होगा, उसमें आपके हाथों से उगाई हुई चीज़ का संतोष भी होगा और इसीलिए उसका स्वाद डबल हो जाएगा। या फिर आप शाम को पकौड़े बना रहे हो और चटनी के लिए आपको पुदीना चाहिए होगा, तो बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके घर में ही पुदीने का पौधा लगा होगा। वहाँ से आपने डायरेक्ट पुदीना तोड़ा और उसको चटनी में डाल दिया। दोस्तों, गृह वाटिका हमें यह एहसास कराती है कि खाना केवल बाजार से नहीं आता, वो मिट्टी से आता है। और जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं तो हम जीवन से भी जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गृह वाटिका क्यों लगानी चाहिए। सबसे पहला कारण जो सबसे आवश्यक है वो है स्वास्थ्य। आज हम सब ताज़ा और शुद्ध भोजन चाहते हैं। ऑर्गेनिक फूड आजकल एक नया कीवर्ड बन गया है बाजार में। लेकिन जो बाजार में सब्जियां मिलती हैं उसमें कई बार ये पता नहीं होता कि वो कैसे उगाई गई हैं, उनमें कितना केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुआ है, वो कितने दिन पुरानी है, ये सब हमें नहीं मालूम होता है। तो गृह वाटिका से चाहे आपके पूरे घर के सब्जी फल ना आ पाएं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अभी बात हुई पुदीने की या धनिया, तुलसी, मेथी, पालक, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर में ज़रूर उगा सकते हैं। और सच कहूँ तो अपने हाथ से जो उगाई हुई वो छोटी सी हरी मिर्च भी होती है ना, वो बाज़ार से लाई हुई पूरी थैली से भी ज़्यादा खुशी देती है। साथ ही साथ दूसरा कारण वो है मानसिक शांति का। पौधे हमारे साइलेंट कंपेनियंस होते हैं, वो बोलते नहीं हैं लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जब हम पौधे में पानी डालते हैं, सूखी पत्तियां हटाते हैं, नई कली देखते हैं, तो हमारे मन में एक शांति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे कभी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करते, उन्हें पता होता है कि कितना समय उनको चाहिए बढ़ने के लिए। एक बीज पहले मिट्टी में छिपता है, फिर धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा, फिर फूल या फल। पौधे हमें धैर्य सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें रोज़ थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए, जीवन अपने आप आपका खेल उठेगा। दोस्तों, तीसरा कारण है कि बच्चों को हमें प्रकृति से जोड़ के रखना ज़रूरी है। आजकल के बच्चे मोबाइल और स्क्रीन से बहुत परिचित हैं लेकिन मिट्टी से बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो अगर घर में गृह वाटिका होगी तो बच्चे अपने आप आँखों से वो देख सकते हैं कि बीज कैसे अंकुरित हो रहा है, पौधा कैसे बढ़ रहा है, पत्तियाँ कैसे निकल रही हैं, फूल कैसे खिल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक गार्डनिंग नहीं है, ये जीवन की एजुकेशन है। बच्चा सीखता है कि कैसे चीज़ें मेहनत से और समय से बनती हैं। वो केयर करना सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, कंसिस्टेंटली उन पौधों में पानी डालना सीखता है। और साथ ही साथ चौथा कारण है घर की सुंदरता। दोस्तों, पौधे घर को केवल सजाते नहीं हैं, उसे जीवंत बनाते हैं। जिस बालकनी में पहले केवल खाली डिब्बे या फिर कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हों या पुरानी चीज़ें रखी हुई हों, उसी बालकनी में अगर आप पौधे लगा दें,

पौधों से उसे भर दे तो वो घर का सबसे प्यारा कोना बन जाएगा। एक मनी प्लांट दीवार पर चढ़ जाए, एक तुलसी का पौधा प्रवेश द्वार पर हो, दो गमले, एक में गेंदा हो, एक में गुलाब हो, तो घर में प्रवेश करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, हम आगे और बात करेंगे ग्रह वाटिका पर, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं कार्यक्रम में एक ब्रेक इस गीत के साथ।

0: आने का अर्थ है कि आप अपने घर में आशा लगा रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं और विश्वास रख रहे हैं कि कल यहाँ हरियाली होगी। ये छोटा सा कार्य हमें प्रकृति से भी जोड़ता है और अपने आप से भी। आज जब प्रदूषण, तनाव और भाग दौड़ बढ़ रही है, तब हर घर में एक छोटा सा हरित कोना होना जरूरी है। वो बालकनी हो सकती है, छत हो सकती है, खिड़की हो सकती है, या रसोई का एक छोटा सा हिस्सा। जगह छोटी हो सकती है, लेकिन भावना बड़ी होनी चाहिए। तो आज ही शुरुआत कीजिए, कोई बड़ा इंतज़ार मत कीजिए। एक गमला लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालिए, एक तुलसी, धनिया, मेथी या मिर्च का पौधा लगाइए, उसे पानी दीजिए, उससे रिश्ता बनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका घर ही नहीं, आपका मन भी हरा भरा होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारा विषय ग्रह वाटिका पर, और आइए अब सुनते हैं एक वार्ता ग्रह विज्ञान में करियर पर डॉक्टर रश्मि द्वारा।
1: मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि दीक्षित, मैं इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अध्यापिका हूँ। आज का जो विषय है ग्रह विज्ञान में रोजगार की संभावनाएं, इसके बारे में मेरा ये मानना है कि ग्रह विज्ञान को पहले घर के कामकाज तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन आज के समय में इसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। यदि हम ग्रह विज्ञान की बात करें, जिसे लोग घर का विज्ञान या आम भाषा में खाना बनाना, कपड़े सिलने से लेकर सीमित कर देते थे, इसे अगर हम सही परिदृश्य में देखें तो यह एक कला और विज्ञान दोनों का एक अनोखा समन्वय है। इस ग्रह विज्ञान के द्वारा आप विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं देख सकते हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के अवसर भी आपको मिलते हैं। सबसे पहले हम रोजगार की बात करने के पहले यह देखेंगे कि ग्रह विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय क्षेत्र आते हैं। इसको मुख्यतः 5 विषय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आहार एवं पोषण। इसके अंतर्गत जितने भी शिक्षक या शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं, वो सभी बच्चों को आहार के विषय में विशेष जानकारी देते हैं, जैसे संतुलित आहार क्या होता है, किस अवस्था में कितने प्रोटीन, कितनी विटामिन, कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, उसके लिए कौन कौन से भोज्य पदार्थ लिए जाने चाहिए आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किन किन भोज्य पदार्थों को नहीं लेना है या किन भोज्य पदार्थों को लेना है, इनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यदि जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस क्षेत्र में अपना विशेषता ग्रहण करते हैं तो स्वास्थ्य परामर्शदाता बन सकते हैं, आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं, हॉस्पिटल, हेल्थ क्लब, जिम आदि में डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट आदि बन करके डाइट प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के समय में खाद्य उद्योग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुकी है, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग कंपनियों और होटलों में भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फूड एनालिस्ट, फूड इंस्पेक्टर जो आपके सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग, बेकरी और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने से संबंधित चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके अपना स्वरोजगार चला सकते हैं। इसी ग्रह विज्ञान में जो दूसरा क्षेत्र है वो है ग्रह प्रबंधन। इस ग्रह प्रबंधन में प्रबंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं, जिसके द्वारा कोई भी विद्यार्थी अपने घर को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से उसका प्रबंधन करना है, उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करता है। यदि कोई शिक्षार्थी केवल रोजगार न करके घर में भी रहना चाहता है, तो भी इसके द्वारा वो अपने घर का धन प्रबंधन, समय प्रबंधन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। घर का बजट कैसे बनाना है, कैसे घर को सजाना है, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम रोजगार की बात करें तो इंटीरियर डेकोरेटर, इवेंट मैनेजर, कैटरिंग, टिफिन सर्विस, ऐसी बहुत सी

छोटी छोटी जो कार्य हैं जिनको करके वो अपने घर का रोजगार भी बना सकता है। इसी में गृह विज्ञान का जो तीसरा विषय क्षेत्र है वो है मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार बच्चों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास होता है, साथ ही साथ उन्हें किस प्रकार की परवरिश की आवश्यकता होती है। जैसे किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उसे तूफान की अवस्था कहा जाता है, वो एक संक्रामक अवस्था कही जाती है, जिस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा देखरेख की ज़रूरत होती है, अपने माता पिता के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होती है। तो उस दौरान किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाना है, या बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बच्चों को किस प्रकार की परवरिश देनी है, उनके विकास को और अधिक अच्छा किस प्रकार बनाना है, इसके बारे में भी गृह विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जब विद्यार्थी अपनी विशेषज्ञता हासिल कर लेता है तो NGO में काम करना हो, या प्ले स्कूल खोलना हो, डे केयर सेंटर खोलना हो, तो उसमें भी उन्हें बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस जो शाखा है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में किस प्रकार से विकास को उचित बनाया जाना है उसका मार्गदर्शन किया जाता है, तो विद्यार्थी आगे चल के काउंसलर बन सकते हैं। ये काउंसलर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फैमिली काउंसलर और एक बच्चों से संबंधित काउंसलिंग का कार्य भी कर सकते हैं। फैमिली काउंसलिंग में आजकल के समय में जैसा कि देखा जाता है कि जो दंपत्ति हैं उनके बीच में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसकी वजह से आजकल लड़ाई झगड़े और तलाक जैसी संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए फैमिली काउंसलिंग के जरिए उनके बीच की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना, उन्हें संभावनाएं दिखाना कि किस प्रकार आपस में वो सामंजस्य बिठा सकते हैं, उससे संबंधित काम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार चाइल्ड काउंसलिंग के अंतर्गत बच्चों को उनके जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है, किस प्रकार के रोजगार के अवसर ढूंढने हैं, या फिर बच्चों के जीवन में जो आ रही समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से उनका निराकरण करना है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चाइल्ड काउंसलिंग के लिए स्कूलों में आजकल चाइल्ड काउंसलर रखे जाते हैं, तो वो रोजगार भी इनके लिए उपलब्ध होता है। अब गृह विज्ञान के क्षेत्र में जो चौथी शाखा है उसे हम वस्त्र विज्ञान के बारे में बताया जाता है। वस्त्र विज्ञान के बारे में न केवल वस्त्रों को काटना, सिलना, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो धागे हैं उनके बारे में, विभिन्न प्रकार के जो फैब्रिक हैं, कपड़े हैं, उनके बारे में, रंगाई किस प्रकार से की जाती है, छपाई किस प्रकार से की जाती है, साथ ही साथ आजकल जो एक बहुत रोचक रोजगार जुड़ा है वो है डिज़ाइनिंग का, तो किस प्रकार से कपड़ों को डिज़ाइनर रूप में सामने लाना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई विद्यार्थी विशेषज्ञता हासिल करता है तो वो एक अच्छा फैशन डिज़ाइनर बन सकता है। साथ ही साथ अगर छोटे रूप में देखें तो सिलाई कटाई के द्वारा भी अपना घर में बुटीक चलाने का कार्य भी महिलाएं कर सकती हैं और उससे अच्छा पैसा कमा सकती हैं। जो इसकी पांचवी शाखा है वो है विस्तार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो अपने खान पान, रहन सहन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके, अपने जीवन स्तर को किस प्रकार ऊंचे स्तर पर ले जा सके, इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यदि कोई शिक्षार्थी इस में विशेषज्ञता हासिल करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सरकारी भी नौकरियां निकलती हैं, में भरकर वो रोजगार प्राप्त कर सकता है, जैसे बाल पुष्टाहार है, आंगनवाड़ी है, इसके अलावा नर्सिंग संबंधी कार्यों में भी विशेषज्ञता हासिल करके हॉस्पिटल वगैरह में भी कार्य किया जा सकता है। इन सभी क्षेत्रों के अलावा अगर कोई भी शिक्षार्थी टीचिंग में या शिक्षक बनने में रुचि रखता है तो उसके लिए

0: पीजी लेवल पर होम साइंस पढ़ने के बाद नेट का एग्जाम क्लियर करके और पीएचडी करके शिक्षक बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसको भी क्वालिफाई करके एक टीचर के रूप में आगे जा सकता है, और लघु उद्योगों की शुरुआत भी की जा सकती है जैसे गांव वगैरह में। होम साइंस की एजुकेशन लेने के बाद अचार, पापड़, मुरब्बा, जैम, जैली, बुनाई, कढ़ाई आदि के द्वारा वो अपने रोजगार के संसाधन स्वयं उपलब्ध कर सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो गृह विज्ञान घर तक सीमित विज्ञान ना होकर के बहुत विस्तृत दायरा रखता है, जिसकी पढ़ाई करके कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और इसको आगे। इसके अलावा एक बात और कहनी है कि पहले तो यह शिक्षा केवल लड़कियों तक सीमित थी, परंतु आज के समय में लड़की हो चाहे लड़का सभी इसमें अपना शिक्षण ग्रहण करके रोजगार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी वार्ता डॉक्टर रश्मि की गृह विज्ञान में करियर के ऊपर, और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज 29 जून है और आज के दिन भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया कि देश का विकास केवल अच्छे इरादों से नहीं बल्कि सही आंकड़ों, सही विश्लेषण और सही योग

पूछना से होता है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की, जिन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। दोस्तों प्रोफेसर पी सी महालनोबिस का जन्म 29 जून सन 1893 को कोलकाता में हुआ था। वे मूल रूप से फिजिक्स के विद्यार्थी थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने स्टेटिस्टिक्स को भारत के विकास से जोड़ दिया। उन्होंने ये साबित किया कि आंकड़े केवल किताबें, टेबल्स या कैलकुलेशंस तक सीमित नहीं होते, सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो आंकड़े समाज की वास्तविक तस्वीर दिखा सकते हैं। आज जब हम डेटा, एआई, एनालिटिक्स, सर्वे, पॉलिसी मेकिंग और डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भारत में डेटाबेस थिंकिंग की मजबूत नींव रखने वालों में प्रोफेसर महालनोबिस का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका सबसे बड़ा योगदान था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईएसआई की स्थापना। उन्होंने सन 1930 में कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। उस समय स्टैटिस्टिक्स भारत में कोई बहुत लोकप्रिय विषय नहीं था, लेकिन महालनोबिस जी ने इसे केवल सब्जेक्ट नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का टूल माना। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार था कि स्टैटिस्टिक्स का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उसका एक उद्देश्य साइंटिफिक एडवांसमेंट और दूसरा ह्यूमन वेलफेयर और नेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी आंकड़ों का इस्तेमाल केवल गणना के लिए नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। दोस्तों प्रोफेसर महालनोबिस केवल स्टैटिस्टिशियन नहीं थे, वो प्लानर भी थे। स्वतंत्र भारत में प्लानिंग कमीशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत की सेकेंड फाइव ईयर प्लान में भी उनका प्रभाव माना जाता है। वो मानते थे कि अगर देश में आगे बढ़ना है तो योजनाएं भावनाओं पर नहीं बल्कि प्रमाण पर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम की मैं लेती हूँ समाप्ति। मैं हूँ कशिश सुरेन हुसैन और कल आपसे फिर होगी मुलाकात, जिसमें हम चर्चा करेंगे, विषय होगा हमारी परंपरा पर, साथ ही हमारा खास सेगमेंट धरोहर होगा लोक गाथा और हम बातचीत करेंगे ई साक्ष्य पर डॉक्टर अनुराग कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार के साथ। तो तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा कार्यक्रम नई उड़ान।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आपके प्रिय कार्यक्रम नई उड़ान में, और मैं हूं आपका अपना साथी कपिल। दोस्तों, आज 29 जून है और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मना रही है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि प्रकृति के उस अनमोल खजाने को याद करने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने का अवसर है, जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना अधूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ताज़ी हवा में हम सांस लेते हैं, जिन फलों और मसालों का स्वाद हमारी थाली को महकाता है, जिन घने जंगलों और रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर मन आनंदित हो जाता है, उनका एक बड़ा हिस्सा दुनिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों को पृथ्वी की जैव विविधता का सबसे समृद्ध खजाना कहा जाता है। श्रोताओं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वो भूभाग है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष अपेक्षाकृत गर्म जलवायु रहती है और पर्याप्त वर्षा होती है। यही वजह है कि यहाँ घने वन, असंख्य वनस्पतियाँ, दुर्लभ जीव जंतु और प्राकृतिक संसाधनों की

भरमार देखने को मिलती है। दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता का बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी सीधे तौर पर इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। भारत स्वयं एक उष्णकटिबंधीय देश है। हमारे पश्चिमी घाट, सुंदरबन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्व के वर्षावन और मध्य भारत के विशाल जंगल न केवल हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन जंगलों में बाघ, हाथी, गैंडा, शेर, अनेक

और मध्य भारत के विशाल जंगल न केवल हमारी प्राकृतिक धरोहर है बल्कि पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन जंगलों में बाघ, हाथी, गैंडा, शेर, अनेक दुर्लभ पक्षी, औषधीय पौधे और अनगिनत जीव जंतु निवास करते हैं। यही वन वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और जल स्रोतों को जीवित बनाए रखते हैं। लेकिन श्रोताओं, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है। बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध शहरीकरण, वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल समाप्त हो रहे हैं। इसका असर केवल वन्य जीवों तक सीमित नहीं रहता बल्कि खेती, जल स्रोत, मौसम और हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हमने महसूस किया है कि पिछले कुछ वर्षों में गर्मी पहले से अधिक तीखी लगने लगी है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सूखे की स्थिति बन जाती है। बाढ़, चक्रवात और जंगलों में आग जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति के साथ लगातार हो रहे असंतुलन का ये सीधा परिणाम है। हालांकि चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है। भारत में बड़े स्तर पर वन संरक्षण, जल संरक्षण, मैंग्रोव वनों के संरक्षण, बांस और औषधीय पौधों के संवर्धन तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कई गांवों में स्थानीय समुदाय स्वयं जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, युवा पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक बना रहे हैं। ये बताता है कि यदि समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें तो सकारात्मक बदलाव संभव है। लेकिन केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमारे अपने घर से होती है। यदि हम पानी की बर्बादी रोकें, बिजली का सोच समझकर उपयोग करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बचें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अपने आसपास की हरियाली को बचाने का प्रयास करें तो हम भी इस वैश्विक अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। यदि हर व्यक्ति हर वर्ष केवल एक पौधा लगाए और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी निभाए तो आने वाले वर्षों में लाखों नए वृक्ष हमारी धरती को हरा भरा बना सकते हैं। और फिलहाल अब जो वक्त है, वो जो हमने बताया उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, जंगलों के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, तो आइए ऐसा ही कुछ गीत सुनते हैं।

0: जी हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत था। फिल्म थी रिफ्यूजी, और जो स्वर कलाकार थे वो थे सोनू निगम और अलका याग्निक। और बहुत खूबसूरत लगता है ये गीत मुझको भी, और आपको भी लगता ही होगा। फिलहाल अब वक्त है नेशन नेक्स्ट का, और नेशन नेक्स्ट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत। और इसके लिए अभिषेक शर्मा जो हमारे एंकर हैं वो फील्ड में गए और उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और आपके लिए ये कार्यक्रम बनाया है। तो चलिए सुनते हैं भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत।
1: कभी खेतों के मेड़ों पर मेहनत करता किसान, कभी छोटे से शहर में अपना कारोबार बढ़ाने का सपना देखता युवा, तो कभी मोबाइल फोन के जरिए दुनिया से जुड़ता एक आम नागरिक। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों सपनों, संघर्षों और उम्मीदों की कहानी है।
2: सबसे पहले तो हम जो फॉरेन प्रोडक्ट पे हम डिपेंडेंट हैं, हमें अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए। पिछले एक डिकेड में जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो हुई है एज कंपैरिजन टू लास्ट डिकेड। तो इकोनॉमी ऑल ओवर जो होता है, एक्सचेंज, डिमांड, सप्लाई, इन सबको कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमारी इकोनॉमी डिफाइन होती है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोना कम खरीदने की बात की है और विदेशों की यात्रा को यथासंभव रोकने की बात की है, तो क्या ये आने वाले भविष्य की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का एक प्रयास है?
4: इसका मेन मोटिव ही यही है कि हमारा जो पैसा है वो बाहर ना जाए।
2: हम सबसे पहले जो एजुकेशन है हमारा प्राइमरी, अगर हम वहीं से एक स्किल क्लास लेना शुरू करें बच्चों की,
4: जैसे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं मास्टर तो कर लूंगा बट थ्योरेटिकल बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बाद जो भी बच्चा है वो थ्योरेटिकल ज्यादा प्रैक्टिकल के काम करे।
1: नमस्कार, नई उड़ान की विशेष श्रृंखला नेशन नेक्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? क्या तकनीक, नवाचार और युवाओं की ऊर्जा भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी? और इस सफर में आम नागरिक की क्या भूमिका होगी? दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम चलते हैं उन युवाओं के बीच जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक मजबूत राय रखते हैं।
3: इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ के कुछ युवा छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके नजरिए से भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और भविष्य में इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और मौजूदा स्थिति में जो अगर हम वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें भारत की क्या स्थिति है। इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे और उनसे उनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सौम्या गुप्ता है, मैं यहाँ से डिफेंस और स्टडीज में मास्टर कर रही हूँ।
3: ओके, अगर हम थोड़ा सा आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में आपके नजरिए से कुछ जानना चाहें तो हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे?
2: पिछले एक डिकेड में जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो हुई है एज कंपैरिजन टू लास्ट डिकेड, बट जो ये क्राइसिस चल रहे हैं ईरान और यूएस इसराइल वॉरफेयर के, तो जो अभी इकोनॉमी है जो

0: हमारा इंडेक्स होता है वो डिक्लाइन हो रहा है कहीं ना कहीं, जो इम्पोर्ट्स हैं एक्सपोर्ट्स हैं उनको लेके डिक्लाइन हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो इकोनॉमी ऑल ओवर जो होता है एक्सचेंज डिमांड सप्लाई इन सबको कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमारी इकोनॉमी डिफाइन होती है।
1: अच्छा, चूंकि आप एक छात्रा हैं तो आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर उन्हें हम सरल शब्दों में ये बताना चाहें कि एक आम नागरिक जो किसी गांव के क्षेत्र में एक कोने से घर में बैठा हुआ है वो भी इकोनॉमी का पार्ट है, तो क्या आप उसको सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम कैसे इस इकोनॉमी को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
0: सबसे पहले तो हम जो फॉरेन प्रोडक्ट पे हम डिपेंडेंट हैं उन्हें जितना हो सके हम कर सकते हैं। हाँ, हमारी चीज़ें महंगी होंगी लेकिन अगर हम उनका जितना यूटिलाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके लिए हम आदि हो जाएंगे और उसका रेट भी कम होगा। हमें अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए और जो सरकार की पॉलिसी उनको समझना चाहिए और उस पर सोचना विचार करना चाहिए।
1: कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: काव्य गुप्ता।
1: आप क्या करते हैं?
2: मैं मास्टर्स इन डिफेंस स्टडीज स्ट्रेटेजिक स्टडीज फोर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से।
1: अच्छा, सौम्या जी ने अभी कहा जैसे कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है तो लोकल फॉर वोकल, जो प्रधानमंत्री जी की अपील भी है और आत्मनिर्भर भारत की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, इसकी क्या भूमिका हो सकती है आपके नजरिए से?
2: इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कि मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल देता हूँ। यूपी में एक इनकम मिशन चल रहा है, सीएम का मिशन चल रहा है $1 trillion इकोनॉमी, तो उसको लेकर अगर आप अगर बेसिकली बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ डिफेंस एक्सपो बनाए गए हैं, आत्मनिर्भर भारत के सबसे उस चीज की सबसे बड़ी पहल आत्मनिर्भर है। जब हम दूसरे पर डिपेंडेंट कम होंगे तो हमारा पैसा बाहर कम जाएगा और हम अपने आप अपनी जीडीपी को सुधार पाएंगे। जो हमारा आज देखते हैं कि यूएस ईरान और इज़राइल के जो क्राइसिस हुई है उससे हम ऊर्जा क्षेत्र में कितना ज़्यादा हमें क्षति हुई है, उतनी नहीं हुई जितनी विश्व में हुई, बट हमें बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम अपना 80% इम्पोर्ट करते हैं ऑयल का बाहर से। तो एक वो सेक्टर हो गया, अगर इसी तरह हम हर सेक्टर में अपना डिपेंडेंस दूसरे देशों में कम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीडीपी को फ़ायदा करेगा और हमारे आने वाले भविष्य को सुधारेगा।
1: एक चीज सौम्या जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत युवाओं का देश कहा जाता है और हमारी शक्ति ही यही है कि हमारे देश में जो ज्यादा आबादी है वो युवा आबादी है, 35 साल की एज की आबादी है, तो हम युवा शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर आपका कुछ सजेशन हो तो वो बताएं आप।
0: सबसे पहले तो जो मैं बोलूंगी, जो एग्जाम हो रहे हैं उन्हें अगर प्रॉपर कंडक्ट करा के, जो रूल्स हैं रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करा के उनकी स्किल्स पे काम करें। हम सबसे पहले जो एजुकेशन है हमारा प्राइमरी, अगर हम वहीं से एक स्किल क्लास लेना शुरू करें बच्चों की, तो जो आगे चढ़ के सच में हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है, तो जो लेबर कैपिटलाइजेशन है वो उसको बढ़ाना चाहिए, उनका यूज करना चाहिए अच्छे तरीके से, जहां जहां वो वर्कफोर्स मैनफोर्स का काम हो वहां वहां उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो भी स्किल चाहिए उनको सिखानी चाहिए। एक रूल्स और रेगुलेशन आने चाहिए कि युवाओं को स्किल्स अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए।
1: आप क्या कहेंगे?
2: मैं इस चीज़ पे कहना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सबको पता है कि इसराइल सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर है, तो कहीं ना कहीं इसराइल की अगर हम उन्नति की बात करें तो उसका मेन सोर्स कहीं ना कहीं उनके छात्र हैं, उनका यूथ है, जो इतना रिसर्च इतनी टेक्नोलॉजी में आगे, आज यूएस और इसराइल इतनी टेक्नोलॉजी में आगे क्योंकि उन्होंने अपने जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो प्रैक्टिकल पे रखा है। हमारे यहाँ जो है जो थ्योरेटिकल बेसिस पे कि हम नॉलेज तो हम जैसे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं मास्टर तो कर लूँगा बट थ्योरेटिकल बेसिस पे मुझे उसका इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमारे इस हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे जो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद जो भी बच्चा है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा प्रैक्टिकल के काम करे, उसका आउटकम होना चाहिए, जो वो पढ़ रहा है उसका एक आउटकम निकल गया, वो टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हो तो आउटकम निकल गया, वो अगर रिसर्च कर रहा है तो आउटकम निकल गया है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे वो थेसिस बन के ना रह जाए,
1: स्किल पे काम किया जाए। और शायद भारत में स्किल इंडिया का जो विजन है वो भी यही है। आपका नाम जानना चाहेंगे?
3: मेरा नाम आवेश कुशवाहा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी लिटरेचर का छात्र हूँ। तो स्किल, जैसा कि आपने अभी बात हुई कि इंडिया में 65% आबादी युवाओं की है, मतलब 35 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है यहाँ के स्किल की, कम्युनिकेशन की। तो ये इस सब प्रॉब्लम पे काम करने का सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका है कि इन सब प्रॉब्लम्स पे काम करके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि जिससे कि युवाओं को अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वे इस पर काम करके मतलब देश को आगे बढ़ा सकें। पर कैपिटा इनकम को भी उन लोग को अन्य जैसे कंट्री के मुकाबले, अभी हम लोग कई सारे ऐसे कंट्री हैं जिससे पीछे चल रहे हैं, पर अगर ये सही वे में अगर तैयारी किया जाए तो हम लोग उसके बराबर आ सकते हैं। तो इस पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है।

0: जैसे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज भारत का जो, मैं डिफेंस सेक्टर, पहले तो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता हूँ, अगर भारत का आज का विजन देखें तो आज भारत का जो विजन है ना, वो डिफेंस सेक्टर में वो मतलब कि इम्यूनेशन का जो हब होता है ना, जैसे अमेरिका टेक्नोलॉजी का हब है, फ्रांस अच्छे फाइटर जेट्स का हब है, रशिया सबमरीन का हब है, उसी तरह भारत आज उसकी जो मेन विजन है वो है इम्यूनेशन का हब। जैसे डिफेंस सेक्टर इम्यूनेशन का हब है, उसी तरह अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारे यहाँ समिट हुआ था अभी लास्ट कुछ मंथ्स पहले, तो कहीं ना कहीं दुनिया एआई को डेवलप करने की तरफ काम कर रही है और इंडिया एआई से बने हुए थ्रेट को काउंटर करने के लिए काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि एक जब थ्रेट जनरेट होगा तो थ्रेट को मारने के लिए इंडिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो वो इस चीज में इंडिया स्किलफुल स्किल पे काम करे, एक एआई फॉर गुड इसके लिए काम करे।
1: एक मैं इस पे ऐड करना चाहूंगी कि स्किल के साथ साथ जो डिजिटल हब है वोकेशनल ट्रेनिंग का, उस पे काम होना चाहिए। स्टार्टअप जो एमएसएमईज जो हमारे रूल्स है रेगुलेशन है उनको बढ़ावा दिया है, एमएसएमईज को उसको और बढ़ावा देना चाहिए। और जो एग्रीकल्चर में भी हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐड करके हमारा उत्पादन और बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी जो डिपेंडेंसी बाहर खत्म हो जाए बल्कि हम उसको बाहर एक्सपोर्ट कर सके, ये सारी चीजें भी और करनी चाहिए थी हमें।
0: तो मैं अभी जैसे प्रधानमंत्री की जो विजिट हुई है नॉर्वे में, जहाँ पे उन्होंने कुछ एक अल्तविस करके डैम है उसका विजिट किया, तो उससे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ली है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो वो जो वेव्स होती हैं और समुद्र की, उसके थ्रू टेक्नोलॉजी हाइड्रो पावर बनाना। तो हमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के टैकल करने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है और वो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा खाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अभी उस पर काम करें, अच्छे अच्छे ग्रीन इनोवेशंस करें।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने बहुत बेहतर अंदाज में हमारे श्रोताओं को बताया कि भविष्य इकोनॉमी और भारत की क्या स्थिति होने वाली है उस परिप्रेक्ष्य में।
3: नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हूं। आज का एक महत्वपूर्ण विषय भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत के विषय में अगर हम बात करें तो ये विषय केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका एवं भावी पीढ़ियों के लिए उभरते अवसरों से जुड़ा हुआ है। अगर हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो हम ये पाते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था अनेक चुनौतियों और अवसरों के दौर से गुजर रही है। अभी हाल ही में 4-5 वर्ष पूर्व कोविड-19 की महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष, अमेरिका इसराइल के साथ ईरान का युद्ध हो, या ऊर्जा संकट हो, अथवा सप्लाई चेन व्यवस्था जो है उसमें आने वाले व्यवधान, इन सब के परिणाम स्वरूप बढ़ती महंगाई ने विश्व के अनेक देशों की आर्थिक प्रगति पर प्रभाव डाला है। विकसित देशों की आर्थिक प्रगति धीमी हुई है तथा विकासशील देशों के सामने रोजगार, निवेश एवं सतत विकास की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको हम AI बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति, हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार इत्यादि वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए ड्राइवर्स बनकर उभर रहे हैं। इन सभी परिदृश्यों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज भारत नॉमिनल GDP के संदर्भ में 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तो ये विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली, जिसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं, और यह लगभग 6-7% की दर से प्रतिवर्ष इसकी प्रगति हो रही है। जबकि जो विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाइना और अमेरिका, तो अमेरिका की वार्षिक वृद्धि दर 1.8%, जबकि चाइना की वार्षिक वृद्धि दर केवल 4% है। तो इनके सापेक्ष भारत एक तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। IMF, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहते हैं, उसके प्रोजेक्शन के अनुसार भारत की आर्थिक श्रेष्ठता वैश्विक प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रही है। विश्व में होने वाले विभिन्न उथल पुथल की परिस्थितियां एवं अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक प्रवृद्धि में नेतृत्व करता रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके जो प्रमुख घटक हैं, जिनको हम कारण कह सकते हैं, वो है भारत के पास एक विशाल युवा जनसमूह जो प्रोडक्शन में या नए उभरते वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में, बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही डिजिटल क्रांति, मजबूत सेवा क्षेत्र, बढ़ती हुई उद्यमशीलता, ये अत्यंत अनेक घटक ऐसे हैं जो भारत को

0: विश्व पटल पर नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने में सहायक हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि ऐसे कैंपेन चल रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत G20, ब्रिक्स तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा रहा है। यदि हम भावी संभावनाओं पर विचार करें तो व्यापारिक वृद्धि, डिजिटल क्षेत्र, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में भारत के लिए अपार अवसर उपलब्ध हैं। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र, हरित ऊर्जा में निवेश आदि भारत की आर्थिक प्रगति का आधार बनेंगे। यदि हम आने वाले समय में अपनी युवा शक्ति को स्किल फुल एजुकेशन प्रदान करें, वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करें, साथ में समावेशी एवं सतत विकास की भावना को विकसित करें, तकनीकी नवाचार आदि प्रयासों को आगे बढ़ाएं, तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कैंपेन है, जो उन्होंने एक कल्पना की है 2037 तक विकसित भारत बनने की, तो उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे और भारत पूरे विश्व में एक नेतृत्व करेगा, आर्थिक नेतृत्व करेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद
1: दोस्तों। भविष्य की अर्थव्यवस्था कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आज लिए जा रहे फैसले का परिणाम है। जब एक युवा नया कौशल सीखता है, जब एक किसान नई तकनीक अपनाता है, जब एक महिला अपना छोटा व्यवसाय शुरू करती है और जब एक नागरिक ईमानदारी से देश के विकास में योगदान देता है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आने वाला भारत सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध भारत नहीं होगा, बल्कि ऐसा भारत होगा जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। करोड़ों सपनों और अनगिनत संभावनाओं के साथ भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा है और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं हम और आप। तो नेशन नेक्स्ट की इस विशेष श्रृंखला से दीजिए आज के लिए मुझे यानी कि अभिषेक को इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नेशन नेक्स्ट, भविष्य की अर्थव्यवस्था और भारत, और ये जो ओबी करके लाए थे अभिषेक शर्मा। अब आइए कुछ समाचार, विकास समाचार के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक यानी आज तक सेशेल्स के दौरे पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए दिया गया है। ये अवार्ड प्रधानमंत्री के लंबे समय से जारी प्रयासों और उनकी पर्यावरण अनुकूल सोच यानी ग्रीन विजन को मान्यता देता है। पीएम ने कहा कि ये सम्मान मिलना मेरे और भारत के लोगों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सम्मान को मैं उन सभी देशों को समर्पित करता हूँ जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के लिए अपना दायित्व मानते हैं। दोस्तों, भारत में अब विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार अब तक 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुकी है। इसमें ज़्यादातर कैंपस अगस्त से पहले अपना बैच शुरू करेंगे। शुरुआती चरण में हर कैंपस में 200 से 250 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। अगले 5 सालों में इसे बढ़ाकर 1000 से 1200 छात्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ब्रिस्टल, यॉर्क, इलिनॉय स्टेक, लिवरपूल और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अपने कैंपस खोल रहे हैं। अब आइए रोजगार समाचार। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय बोर्ड नई दिल्ली रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उसका विवरण इस प्रकार है। उपनिदेशक चिकित्सा रिक्तियों की संख्या 2, आयु सीमा 35 वर्ष से कम, शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता। दूसरा पद है कनिष्ठ प्रोग्रामर का पद है, आयु सीमा है 27 वर्ष से कम, अनिवार्य योग्यता है बीटेक, बीई, बीसीए या डीओई एसीसी, कंप्यूटर में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री। तीसरा पद है कनिष्ठ लेखाकार का, जिसमें 4 पद हैं, आयु सीमा है 27 वर्ष से कम, अनिवार्य योग्यता है गणित या सांख्यिकी में स्नातक डिग्री।

या वाणिज्य में डिग्री एवं NBMS द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना। आशु लिपिक के 7 पद हैं, आयु है 27 वर्ष से कम, अनिवार्य योग्यता है 12th व आशुलिपि या टंकड़ में 80/30 शब्द प्रति मिनट। कनिष्ठ सहायक के 39 पद हैं, जिसमें जो आयु सीमा है वो है 27 वर्ष से कम, योग्यता है सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप www.natbold.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, वेबसाइट आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जिससे आप इन रिक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। वेबसाइट है www.natbold.edu.in पर विजिट कर सकते हैं और आप रिक्तियां भर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कार्यक्रम है नई उड़ान, उसमें हम जुलाई से कई सारे सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं नए, जिसमें जो OB होंगे उसके डिफरेंट विषय होंगे, हर क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आप भी अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो जो हमारा पता है वो है नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, पिन कोड 226001। और जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है nayudan.airlko@gmail.com। और यहीं पर जो हमारा वक्त है वो समाप्त हो रहा है, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।

अभी आप हमारा कार्यक्रम नई उड़ान सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
4: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
3: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 24 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
5: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
4: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
7: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने शौर्य पुरस्कारान् प्रायच्छत्। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला आदयः च पुरस्कृताः। हरियाणा राजस्थानयोर्मध्ये दशकत्रयेभ्यः विलंबितायाः यमुना जलविभाजन विवादस्य अद्य समाधानं जातम्। सर्वोच्च न्यायालयेन राम मंदिर दान प्रकरणस्य कथित वित्तीय अनियमिततायाः न्यायालय निरीक्षण अन्वेषणस्य त्वरा याचिका निराकृता। सीबीएसई इत्यनेन सांप्रतिकाय दशम वर्गाय त्रिभाषा नीतिः नानिवार्येति घोषिता। सर्वकारः व्यापारस्य सुगमतां प्रावर्धयितुं परिष्कार सूचना तंत्रं प्रवर्तयति। SIR इति स्वस्तनात् देहल्यां समारप्स्यते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकांतः US ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षणेयः, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा,

0: इति सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20/26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90/2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचना व्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति दिल्लीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे SIR इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय BLO इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कात् सितम्बरमासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तम् अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अन्तिमा निर्वाचकसूचिः अक्टूबरमासस्य 7 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः US ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: हिमांशु भैया।
0: हाँ रत्ना बहन।
1: देखो आजकल जो है घरन घरन पर सबके छतन पर बहुत सारे जो है नए पैनल दिखाई देते हैं जिनका हम पंच कहते हैं सोलर पैनल, है ना।
0: बिल्कुल बहनी, वो देखो इनका लोगों के यहाँ कितना ज्यादा फायदा मिलते हैं, चाहे बिजली के बिल में यहाँ जो है राहत मिल जाते हैं,
1: हाँ
0: और दूसरी चीज में यहाँ अगर कई बार होते हैं कि ज्यादा यूनिट बना देते हैं तो उनका जो है और फायदा मिल जाते हैं।
1: सही बात कहा। तो वो सबसे बड़ी फायदा वाली बात यह है कि सरकार जो हम पंचन की है वो अपनी तरफ से हम पंचन का लाभ देते हैं पैसा से, ताकि हम पंच आसानी से लगवा सकी और आराम से या बिजली बना सकी, और जिसे हमका और हमारी सरकार का देश का सबका लाभ हो, उन्नति का साधन बने।
0: बिल्कुल बहनी, सही बात कहे हो। बस यही माँ कुछ चीज़ें हैं, यूँ तो लगभग सबका पता ही है कि जो है कैसे लगवाना है, आधार कार्ड हो, बिजली के बिल हो, छत छत हो लगवाओ खातिन, ये सब जरूरी चीज़ें हों। लेकिन एक के साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनका थोड़ा सावधानी बरतक चाहिए कि सोलर पैनल लगवाओ समय जो है केवल जो अधिकृत विक्रेता है वह स्नेह पैनल लगवाओ में, तो जो है जो उन वह की गुणवत्ता रहते हैं वह बढ़िया रहते हैं, और बिना जानकारी के लिए कोई बिचौलिए कहीं पैसा ना दो कि पहले कहा लो भैया 80 रुपया ले लो तुम्हारे, जो करवा दिया वो करवा दिया, तो इस ई चीजन से ने बचे, उस सभी दस्तावेज बढ़िया सुरक्षित रखे, और थोड़ा जानकारी के लिए जौनी कंपनी या जौनी गुणवत्ता वाले सोलर बढ़िया होते हों वही का जो है चयन करें और वह लगवा लो, समय समय पर पैनल की सफाई कर रहा है बस, कोनो दिक्कतें नहीं है।
1: सही बात कहा। तो देखो यू जो कहा तो ना कि समय समय पर हम काम करी तो निक रहते, तो समय पर ये सही। तो बुखार का बोले थे, गर्मी बहुत हो रही,
0: हाँ
1: लेकिन ये गर्मियों में यह जो है मनई का बुखार आ जाते हैं, तो
0: हाँ
1: ये मौसमी बुखार का होते हैं, तो ई के बारे में यह एक भेंट वार्ता है अपने कार्यक्रम में, मौसमी बुखार कारण और निवारण
0: बिल्कुल बहन।
1: जी का बता

0: रहे हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव भैया, और जिनसे बात कही कि इन्हें नीना सोनकर बहनी, तो पंच भाई बहनियों जाने हम वो पंच जानी कि कैसे का बचा जाए का होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: श्रोता पंचे, आज आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में हम आमंत्रित किया है डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी का, जो हैं वरिष्ठ परामर्शदाता आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के, और आज ये जो जानकारी दे जा रहे हैं उनके विषय है मौसमी बुखार कारण और निवारण। वो डॉक्टर साहब आप सब पंचे का बताइए और ध्यान पूर्वक आप ही कार्यक्रम सुने। डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आपके कार्यक्रम में बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, ये बताओ कि मौसमी बुखार होत का है और इसके कारण का है, तो कैसे मनाई पहचाने कि मौसमी बुखार है या कुछ और है?
3: मौसमी बुखार ये मौसम पर ज़्यादा प्रभाव करता है आदमी को। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, आदमी गर्मी में बाहर गया और लौट के आया तो उसका शरीर बहुत थका थका है, एकदम काम करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सा उसका तकलीफ हो रही है, उसको महसूस हो रही है, ऐसे समय में मौसमी बुखार होता है। या मौसम चेंज होता है, परिवर्तन आता है मौसम में, तापमान में परिवर्तन आता है, जाड़े से गर्मी आती है या गर्मी से बरसात होती है, तो उस समय जो इस तरह की बुखार होता है वो मौसमी बुखार की श्रेणी में आता है।
2: अच्छा, मतलब कहे कि ई है कि जौन ई समय बुखार चल रहा उका आप कहियो मौसमी बुखार। अब निवारण और बचाव के बारे में बताओ।
3: मुख्य रूप से निवारण के लिए जो है वो जो कारण है उससे बचाव करना ही निवारण का मुख्य सूत्र वहाँ से शुरू होता है, कि अगर बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, लू चल रहा है, तो यदि बहुत आवश्यक न हो तो धूप में 11 बजे से 4 बजे तक ना निकलें घर से बाहर, और निकलें तो खूब पानी पी करके निकलें और सर पे गमछा टोपी इस तरह का छाता सनग्लास लगा लें, जिससे कि मतलब कम से कम आँखों की सुरक्षा हो, सर की सुरक्षा हो, तेज धूप न लगे उनको, और बाहर जब जाएं तो सूती कपड़ा, ढीला कपड़ा पहने और हल्के रंग के कपड़े पहने, जिससे कि उनको उतनी गर्मी का एहसास न हो। और उसमें जब बाहर निकलते हैं, जैसे अगर लू लग गया किसी समय आदमी को बाहर जाने पर हीट स्ट्रोक, तो उसमें बहुत तेज बुखार आता है, कभी चक्कर आ सकता है, मछली आती है, उल्टी भी आ सकती है, और बहुत तेज जो है त्वचा उनकी जो है सूखी हो जाती है, कभी कभी उससे हार्ट बीट बढ़ जाता है और बेहोशी भी आ जाता है।
2: डॉक्टर साहब बताए देव श्रोता पंचन का कि डेंगू और मलेरिया के बाकायदा टेस्ट होते हैं, तब मनई समझत है कि उनका डेंगू भा है या मलेरिया भा है?
3: नहीं, इसकी खून की जांच कराना तो अति आवश्यक है। बिना खून की जांच कराए वो बीमारी कंफर्म नहीं होती है, तो जब बीमारी खून के जांच से निश्चित हो जाए कि यही बीमारी है, तभी उस बीमारी का इलाज किया जाता है आगे। जैसे बुखार है, अगर बुखार हो गया तो आप उसमें काढ़ा पी सकते हैं, उसमें भी आराम मिलता है। जैसे वो जो है सोठ, मरीच, पिपली और लौंग, उसके साथ तुलसी का पत्त मिला दें और उसका काढ़ा बना करके पिए
2: जी,
3: बुखार में आराम मिलेगा। और मौसमी बुखार में अतीस का चूर्ण ले लें एक भाग और मिश्री 20 भाग मिला करके उसको दें, तो उससे भी आराम मिलेगा। उसको बड़े को इसको जो है 1 ग्राम करके मिला के दें, छोटे बच्चों को 500 मिलीग्राम करके दें।
2: जी जी डॉक्टर साहब, जब बुखार होते तो मनई की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती,
3: बाहर जो है बर्फ आइसक्रीम मिलता है, बर्फ के बेचते हैं वो सब, जो बाहर का पता नहीं कि शुद्ध है पानी कैसा है, और बच्चे जो है अंदर बहुत गर्मी पड़ रही है और बर्फ खा लिए, तो उससे भी उनको जो है दिक्कत हो जाती है, वातावरण चेंज हो जाता है शरीर में, वो शरीर का तापमान कुछ अलग हो जाता है, वहाँ का तापमान कुछ अलग होता है, और बाहर की जो है वातावरण कोशिश करें घरेलू चीज़ें खाएं, बाहर की जो इस तरह बिकने वाली चीज़ें उसके न खाएं, कटा हुआ फल जो बेच रहे हैं बाजार बाहर और चाट पकौड़ी को सेवन न करें।
2: जी डॉक्टर साहब, कहे कि मतलब ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जिकी हम बातचीत कर रहे हैं हम आपसे, वो भारत की हजारों साल पुरानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इतनी का कहते हैं ताकत है, इतनी क्षमता है कि हर मनई का स्वस्थ रख सकत है वो, बस आपके अंदर धैर्य धीरज होए का चाहिए कि आप कोई आयुर्वेदाचार्य के पास जाओ, तो जैसा डॉक्टर साहब बताई नहीं कि पहले तो घरेलू नुस्खा की ही बात करी है, तो कि पाचन क्षमता आपकी दुरुस्त आपका रखे का है, गर्मी के मौसम है, और अगर बदलत है मौसम यानी अगर पानी वानी बरसी तो बात की बात है, हाल फिलहाल में बहुत गर्मी है, जीव जान मनई के हलकान है, और मौसमी बीमारियां

0: उन्हें अपने समय से आती हैं, जैसे प्रकृति अपन चोला बदला थी वैसे बीमारियां भी अपन चोला बदला थी। और डॉक्टर साहब और कुछ चला चला बताना चाहिए?
1: हाँ, ये जरूर बताना चाहेंगे कि आजकल लू लगने पर लगने की संभावना ज़्यादा है तो उसमें आंवले का मुरब्बा लें, ये फायदा करेगा आदमी को। और गोमूत्र में सेंधा नमक लगा करके अगर पैर के तलवे की मालिश करें तो उसमें आराम मिलेगा। और लगातार जो व्रत लगातार रहने वाले बुखार में गिलोय सत्व 2 ग्राम शहद से लें तो इसमें आराम मिलेगा। और धनिया, जैसे धनिया है 3 ग्राम ले लें और कद्दू के बीज 3 ग्राम ले लें, इसको 50 ml पानी में पीस कर छान लें और उसमें 50 ग्राम अर्क गुलाल और 20 ग्राम शरबत चंदन मिलाकर दें तो लू में बहुत आराम मिलेगा। इससे छोटी इलायची है, धनिया, खस और पोस्ता का दाना, गुलाब के फूल, ये सब मिला के 15 ग्राम ले लें और इनको 300 ml जल में औटाएं, उबालें और उसमें जब आधा रह जाए तो उसको मिश्री के साथ दें तो उससे बहुत आराम मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, ये जो बातें बताए हो आप, ये सब शरीर का ठंडा करती हैं, ये सब वही तत्व आप बताए हो, चाहे आप मिश्री बताए हो बहुत ठंडा करती शरीर का, आप इलायची की बात करे हो और जो जो चीज़ें आप बताए हो सब शरीर का, गुलाब की पंखुड़ी, ये सब शरीर का ठंडक पहुंचाती हैं और यही सब आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में होता है। जो उन प्रकृति में उपलब्ध जड़ी बूटी है, जो प्रकृति हमरे आपके लिए उपलब्ध करी से, वही के हिसाब से चले कहा, यही लिए कहा जाता है कि प्रकृति के साथ चलो, कभाव आप बीमार ना पड़ी हो। डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आप आयो और आप बहुत बहुमूल्य जानकारी आप श्रोता पंचे का दियो, अपन कीमती समय आकाशवाणी लखनऊ का दियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो हिमांशु भैया कते नेकी तना से बताएं, डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव भैया की मौसमी बुखार का होते हैं के कारण और निवारण कैसे की जाए, तो इके खातिन इनका और जानकारी देवाए खातिन नीना सोनकर बहनी का, दोनों जनन का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो हम पंच धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देशो तरक्की कर रहा है, गाँव तरक्की कर रहे हैं,
3: बिल्कुल,
2: तो गांव तरक्की करत रहे वह पर एक वार्ता है ग्रामीण स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत,
3: तो सुनवा दो। हाँ,
2: और जो बताए रहे हैं डॉक्टर सुयश मिश्रा जी, तो पंच भाई बहनों जाने हम पंच जाने,
3: बिल्कुल बहने।
4: स्वावलंबन का अर्थ केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है, इसका अर्थ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता, अपने संसाधनों और अपने श्रम पर भरोसा करना। ऐसा गांव जहां भोजन, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास की अधिकांश आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर पूरी हो सके, वास्तव में वही आत्मनिर्भर गांव कहलाते हैं। एक समय था जब भारतीय गांव अपने आप में संपूर्ण इकाई हुआ करते थे। समय के साथ परिस्थितियां बदलीं, आधुनिकता और शहरीकरण के प्रभाव में गांवों की पारंपरिक अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई, स्थानीय उत्पादन घटने लगा और बाहरी बाजारों पर आत्मनिर्भरता बढ़ती गई, जिससे रोजगार के अवसर कम हुए और गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा। लेकिन आज एक बार फिर आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा नई ऊर्जा के साथ सामने आ रही है। इसका कारण भी स्पष्ट है, यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो गांव को मजबूत करना ही होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक ऐसी विकास दृष्टि है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रामीण स्वावलंबन का अर्थ क्या है। स्वावलंबन का मतलब केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता, अपने संसाधनों और अपने श्रम पर भरोसा करना। एक बार फिर आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि यह समझ आ चुका है कि भारत का विकास गांवों को मजबूत किए बिना संभव नहीं है। ग्रामीण स्वावलंबन की सबसे पहली शर्त है स्थानीय संसाधनों की पहचान और उनका सही उपयोग। हर गांव की अपनी कोई न कोई विशेषता होती है, कहीं उपजाऊ भूमि है, कहीं जल संसाधन है, कहीं वन संपदा है, कहीं हस्तशिल्प की

परंपरा है और कहीं पर्यटन की संभावनाएं हैं। जरूरत केवल इतनी है कि गांव अपनी ताकत को पहचाने और उसे अवसर में बदले। कृषि आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज का किसान केवल परंपरागत खेती तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह नई तकनीक अपना रहा है, नई फसलें उगा रहा है और खेती को व्यवसाय के रूप में देखने लगा है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक हिस्सों में किसान अब फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर भी रुझान बढ़ा है। इससे उत्पादन लागत कम होती है और बाजार में बेहतर मूल्य मिलता है। कई किसान अब सीधे उपभोक्ताओं तक अपने उत्पाद पहुंचा रहे हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई है और आय में वृद्धि हुई है। यही बदलाव ग्रामीण स्वावलंबन की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसमें सहकारी समितियों की भी अहम भूमिका दिखाई देती है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास योजनाओं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न पहलों ने किसानों की आय बढ़ाने के नए रास्ते खोले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी पशुपालकों और किसानों को ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण तथा विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। आज एक दुधारू पशु केवल दूध उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि परिवार के नियमित आय का मजबूत आधार बन गया है। इसी प्रकार मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे सहायक व्यवसाय किसानों को वर्ष भर रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे गांव आत्मनिर्भर और आर्थिक समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। ग्रामीण स्वावलंबन का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है कुटीर एवं लघु उद्योग। खेती पर निर्भर रहकर किसानों में सभी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों का विकास बेहद आवश्यक है। हमारे गांव में प्रतिभा और हुनर की कोई कमी नहीं है। कहीं चिकनकारी है, कहीं खादी है, कहीं टेराकोटा कला है, कहीं बांस की लकड़ी का काम है। यदि इन उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ा जाए तो ये हजारों लाखों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकते हैं। आज स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आचार, पापड़, मसाले, अगरबत्ती, हस्तशिल्प और अनेक घरेलू उत्पाद तैयार कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफार्म और ऑनलाइन बाजारों के माध्यम से उनके उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुँच रहे हैं। देश भर में स्वयं सहायता समूहों ने लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है। महिलाएं आज उद्यमी बन रही हैं, बैंकिंग और वित्तीय निर्णयों में भागीदारी कर रही हैं और गांव के विकास की साझेदार भी बन रही हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को धुएं से भरी रसोई से राहत दिलाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया गया है। ग्रामीण विकास की चर्चा आज डिजिटल तकनीक के बिना अधूरी है। कुछ वर्ष पहले तक गांव और शहर के बीच जानकारी का बड़ा अंतर था, लेकिन आज मोबाइल फोन और इंटरनेट ने इस दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है। किसान घर बैठे मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है, बाजार भाव जान सकता है, नई कृषि तकनीकों के बारे में सीख सकता है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग ने लेन देन को आसान बना दिया है। आज गांव का युवा सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी कर रहा है। यही डिजिटल क्रांति ग्रामीण स्वावलंबन को नई दिशा दे रही है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाई है। इससे लोगों को अनेक सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध होने लगी हैं। आत्मनिर्भर गांव की बात ऊर्जा

स्वावलंबन के बिना पूरी नहीं हो सकती। आज सौर ऊर्जा, बायोगैस, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत गांवों के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। कई गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। किसान और ऊर्जा से चलने वाले पंपों का उपयोग कर रहे हैं। कुसुम योजना जैसी पहले किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। ग्रामीण स्वावलंबन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण संरक्षण। यदि जल स्रोत सूख जाएंगे, मिट्टी की उर्वरता

0: सूखे जल स्रोतों को फिर से जीवन मिला है। इन प्रयासों ने खेती और पशुपालन दोनों को नई शक्ति प्रदान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाने का प्रयास किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ने गांवों को स्वच्छ और स्वास्थ्य के प्रति नई जागरूकता पैदा करने की सोच प्रदान की है। लेकिन केवल योजनाएं ही किसी गांव को आत्मनिर्भर नहीं बनाती। योजनाएं अवसर देती हैं, संसाधन देती हैं, दिशा देती हैं। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब गांव के लोग स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, जब युवा गांव के लिए सोचता है, जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं और पूरा समाज मिलकर काम करता है, तब विकास स्थायी बनता है। आत्मनिर्भर गांव का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी ताकत को पहचानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना, जहां गांव केवल विकास का विषय ना होकर विकास का नेतृत्व करे।
1: भाई कितनी निकी तरह से जानकारी दी इनकी, ग्रामीण स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत का है।
2: हाँ।
1: तो यह जानकारी खातिर डॉक्टर सुयश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम पंचे जब खेती पाती के सब काम करीत रही थे,
2: हाँ,
1: तो वही के साथ साथ हम पंचन का यह ध्यान रखे पड़ते है कि हम जो उत्पादन कह रहे हैं,
2: हाँ,
1: वो कैसे का जाए और वैसे कैसे हमका लाभ मिले, है ना।
2: बिल्कुल बहनी सही बात कहो। और अब देखो अपन किसान भाई जो है अपन उत्पादक संगठन बनाए के यहाँ बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब वही का जैसे किसान उत्पादक संगठन यानी वही का FPO भी बतावते हैं, कहते हैं यू किसानन के रही समूह होते हैं, जहाँ बहुत सारे किसान मिलकर खेती पाते से जुड़े काम धंधा और व्यवसाय करते हैं और उनका मूल्य अच्छा मिल जाता है और लागत उनकी कम आ जाते हैं।
1: अब देखो लागत कम की बात कह रहे हो तो ये शायद बहुत गर्म पड़ रही, और
2: हाँ
1: गर्मी में यह अगर अपने जानवर का हरा चारा मिल जाए तो बहुत निक रहा था। तो
2: बिल्कुल
1: काहे न पंच भाई बहन इनका एक भेंट वार्ता सुनवाई दे। खरीफ में हरा चारा उत्पादन जी के वार्ताकार हैं प्रकाश चंद्र सिंह भैया, और जिनसे बात कही कि इन्हें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो पंच भाई बहनों जाने और मो पंच जानी समझी।
2: बिल्कुल बहनी
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं वहां पशुओं के लिए खरीफ में हरा चारा उत्पादन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से उप निदेशक प्रक्षेत्र डॉक्टर PC सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि खरीफ में जहां हरा चारा उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी।
4: पहले सभी किसान भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। जो किसान भाई एवं बहन कृषि के साथ साथ पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन में हरे चारे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उसके उत्पादन और स्वास्थ्य के दृष्टिगत। खरीफ मौसम में हम हरा चारा एक वर्षी, बहुवर्षी एवं कुछ चारा वृक्ष को लगाकर हम अपने जो पशु पाले जा रहे हैं उनको हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं।
3: एक वर्षीय फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनकी खेती कर सकते हैं पशुपालक भाई बहन।
4: एक वर्षीय फसलों में दो टाइप के फसल हैं, एक तो घास वर्गीय होता है, दूसरा लेग्यूम। घास वर्गीय फसल होते हैं उसमें क्रूड फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो लेग्यूम होता है वो प्रोटीन का। तो दोनों ही पशुपालकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। घास वर्गीय में हम ज्वार, बाजरा, मक्का का बुआई करके पशुओं के लिए हरा चारा ले सकते हैं। दलहनी वर्ग में लोबिया है, ग्वार है, इसकी फसल की हम बुआई करके हरा चारा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस वर्ष का जो मौसम है बताया जा रहा है कि मानसून थोड़ा लेट आएगा, तो अगर मानसून लेट आता है ऐसी स्थिति में हम लोग जो उर्द और मूंग है उसको भी हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे पशु का स्वास्थ्य और उत्पादन पर कुप्रभाव न पड़े।
3: यानी फलियों के तुड़ाई के बाद जो डंठल बचे उसका हरे चारे में उपयोग हो सकता है।
4: जी
3: डॉक्टर साहब ये तो रहा एक वर्षीय जो हरा चारा उत्पादन, जहाँ किसान भाई बहन चाहते हैं कि लगा दें एक बार और हमेशा चारा मिलता रहे पूरे साल, तो कुछ बहुवर्षीय चारे भी होंगे।
4: हाँ, इसके लिए बहुवर्षीय चारे हैं। एक बार आप इसकी रोपाई कर दीजिए, 5 से 6 साल तक आप केवल उसमें खाद और समय समय पर पानी देते रहिए और उससे हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नेपियर है, गिनी ग्रास है।
3: जो एक वर्षीय हरा चारा उत्पादन खरीफ का करना है तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी कैसे करें किसान भाई बहन।
4: खेत

0: का चुनाव हम वहाँ करें जहाँ पर हमारी जल निकासी की सुविधा, क्योंकि बरसात में अगर आपने बीज की बुआई की, अगर उस पर पानी जमा रह गया तो जो भी बीज की बुआई और खाद डाले हैं तो वो आपका लॉस होगा। तो ऐसी स्थिति में उस खेत का चुनाव करें जहाँ जल निकासी अच्छी हो और मिट्टी बलुई दोमट उपयुक्त तो होती है।
1: और दोमट भी?
0: दोमट भी। इसकी खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक गहरी जोताई कर देते हैं, फिर 2 से 3 जोताई हैरो या कल्टीवेटर से करके उस पर पाटा लगा देते हैं ताकि नमी संरक्षित रहे, फिर बीज की बुआई करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियों का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उन्नत प्रजातियां होंगी तभी हरे चारे का अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया और ग्वार की?
0: ज्वार में 2 टाइप की प्रजाति आती है, एक आती है एकल कटाई,
1: एक कटाई होती
0: एक
1: है,
0: कटाई होती है, और दूसरी प्रजाति आती है बहु कटाई। तो जो एकल कटाई वाली प्रजाति है उसमें PC6 है, PC9 है, PC23 है, HC171 है, UP-Cherry 1 है, 2 है, Raj-Cherry 1-2 है। इसी प्रकार से आप देखते हैं बहु कटाई की, एक बार बुआई कर दी उसे 2 से 3 या 4 कटाई हम लोग लेते हैं।
1: बहु कटान वाली ज्वार,
0: बहु कटान वाली ज्वार जिसको SSG 998 है, 885 है, SSG 69 है, Co-27 है, Panth-Cherry 5 है, Sudan-Cherry 1 है।
1: और बाजरा में?
0: बाजरा में भी एक कटाई वाली जो प्रजाति है Raj-Bajra-Cherry 1 है, Narendra-Bajra 2 है। उसी प्रकार बहुत कटाई वाली में जायंट बाजरा Pro-Agro No. 1 ये प्रजाति है जो एकल और बहु कटाई की है।
1: और मक्के में जहाँ हरा चारा के लिए लेना है?
0: हरे चारे में हम इसको डे न्यूट्रल प्लांट होता है, इसलिए हम इसको हमेशा थ्रू आउट द ईयर बुआई कर सकते हैं,
1: यानी पूरे साल,
0: पूरे साल इससे हम हरा चारा की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए अफ्रीकन टाल है, विजय कंपोजिट है, मोती कंपोजिट है, जौहर कंपोजिट है, BL-54 भी है,
1: प्रताप मक्का चरी
0: आदि वरायटियाँ हैं जो हम चारे के रूप में उपयोग करते हैं।
1: और दलहनी हरे चारे की बात करें तो लोबिया और ग्वार की कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: लोबिया की प्रजाति है कोहनूर है, श्वेता है, बुंदेल लोबिया 1 है, 2 है, उसी प्रकार से GFC 1 है, 2 है, 3 है, UPCC 618 है, 622 है, EC 4216 आदि प्रजाति हैं।
1: और रशियन जाइंट भी?
0: रशियन जाइंट भी इसकी एक प्रजाति है।
1: और ग्वार हरे चारे में अगर उगाना है तो?
0: तो ग्वार जो है बुंदेल ज्वार 1 है, 2 है, 3 है, SF 277 है, HFG 119 है, Guar 80 है, HG 75 है, 182 है, और मरु प्रजाति ग्वार की है जो चारे के रूप में उगाई जाती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने शुरू में कहा कि बहुवर्षीय चारे भी हैं, जैसे नेपियर और गिनी घास है, जिसको लगा करके एक बार किसान भाई बहन कई सालों तक हरा चारा पूरे साल ले सकते हैं, तो इनकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां?
0: इनकी उन्नत प्रजातियां जो हाइब्रिड नेपियर है, वो बाजरा का क्रॉस है, ये जो हमारा झांसी में भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान है, वो संस्थान चारे पर ही काम करती है, उनके द्वारा ये विकसित प्रजातियां है। IGFRI 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, और CO जिसको को बोलते हैं, Co-1-2-3-4-5 प्रजाति है,
1: ये हाइब्रिड नेपियर,
0: हाइब्रिड नेपियर की। इसी प्रकार से BNH 10 है, BNB 21 है, 27 है, अभी जो नया प्रचलन में है गन्ना मक्का
1: जी
0: भी क्रॉस आया है, और ताइवान गोल्ड,
1: हाँ,
0: इसकी भी उत्पादन अन्य प्रजातियों से अच्छी है
1: और इसमें स्वादिष्ट भी है।
0: स्वादिष्ट है, इसमें रेशे कम होते हैं तो पशु इसको चाव से खाते भी,
1: और मिठास भी होगी,
0: मिठास भी। गन्ना और मक्का का क्रॉस है तो अपने आप यह है कि स्टार्च की मात्रा ज्यादा होगी तो पशुओं का मिठास होगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।
1: और गिनी घास की उन्नत प्रजातियों में?
0: बुंदेल गिनी 1 है, 2 है, मैकोनी है, हालिम है, Co-1-2 है, गिनी गटन 1 है, 9 है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ भी खरीफ में हरा चारा उत्पादन करना है तो बुआई का उपयुक्त समय क्या है?
0: बुआई का उपयुक्त समय जो हमारी एक वर्षीय चारा है वो मानसून सत्र, मानसून की पहली बरसात होने के बाद आप बुआई
1: शुरू कर सकते हैं, यानी जुलाई का पहला पखवाड़ा।
0: यूपी में जो है, अगर मानसून समय से आ जाता है तो हम लोगों का यूपी का जो कवरेज है लगभग 15 से 25 जून के बीच में पूर्वी यूपी से लेके पश्चिमी यूपी तक बरसात शुरू हो जाती है।
1: यानी मानसून आने के साथ ही बुआई शुरू, हाँ, कर दें किसान भाई बहन, और जितना जल्दी कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
0: हाँ, उनको उतना ही

0: अच्छा चारा मिलेगा।
1: ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार और लोबिया जो हरे चारे के रूप में उगाना है खरीफ में, उसमें बीज की मात्रा प्रति एकड़ कितना लगेगी और खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना है हरे चारे की फसल की भूख मिटाने के लिए?
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बीज कितना डालें, उसके साथ हम फर्टिलाइजर, क्योंकि अगर उसमें पोषक तत्व तो नहीं होगा तो उसका बढ़वार नहीं होगा, तो उससे आपको अपेक्षित हरा चारा जो उत्पादन मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तो आपके पशु पर या आपने जो भूमि उसमें एंगेज की है उससे उतना अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि बहुत ही ध्यान दें बुआई के समय। जैसे ज्वार है, ज्वार 12 से 15 केजी
1: प्रति एकड़।
0: प्रति एकड़ हम बीज की बुआई करें। बीज बुआई से पहले जो हम खेत तैयारी करते हैं उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद आपके पास है तो उसको हम लगभग 5 से 6 टन प्रति एकड़ मिक्स कर दें,
1: यानी 50 से 60 कुंतल।
0: 50 से 60 कुंटल।
1: और रासायनिक खाद?
0: रासायनिक खाद में जैसे नाइट्रोजन 25 केजी, 12 केजी फास्फोरस और 12 केजी पोटास, ये तो हम बुआई के समय
1: बेसल डोज में
0: बेसल डोज में दे देंगे
1: प्रति एकड़।
0: प्रति एकड़। और जब 1 माह हो जाएगा, अगर बरसात हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा अगर नहीं होती है, कोई ड्राई स्पेल आ गया, मतलब वर्षा हुई और बीच में आपका 20 दिन 25 दिन वर्षा नहीं हुई, तो लगभग 1 माह बाद आप सिंचाई करके उसमें फिर से नत्रजन की मात्रा 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे देंगे ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा।
1: और बुआई का अंतरण क्या होगा ज्वार का?
0: ज्वार का बुआई का अंतरण है जैसे पौध से पौध की दूरी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर हो और पंक्ति से पंक्ति जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाए।
1: और बाजरा में बीज की मात्रा कितना लगेगी और अंतरण क्या होगा?
0: बाजरा में बीज की मात्रा लगेगी 5 से 6 केजी प्रति एकड़, और इसका अंतरण, चूंकि बाजरा जो है ज्वार से थोड़ा सा पतला होता है
1: जी।
0: इसलिए 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी पौध से पौध की दूरी रखिए,
1: और लाइन से
0: लाइन से
1: लाइन
0: दूरी
1: 25 सेंटीमीटर।
0: 25 सेंटीमीटर।
1: और मक्के में?
0: मक्का का बीज थोड़ा आप देखेंगे तो ज्वार और बाजरा से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसकी बीज की मात्रा भी प्रति एकड़ ज्यादा है। इसका बीज का मात्रा है 18 से 20 केजी प्रति एकड़, और इसमें पौध से पौध की दूरी जो है वो भी, चूंकि पौधे आप देखेंगे कि इसका पौधा मोटा होता है तो इसमें 12 से 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी होती है और 30 से 35 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी
1: यानी
0: रखी।
1: 1 फीट के लगभग में।
0: हाँ,
1: और ग्वार और लोबिया में?
0: ग्वार की जो बीज दर है वो 12 से 15 केजी है, और चूंकि ये ग्वार तो थोड़ा छोटी सी होती है और झाड़ी टाइप बनती है
1: जी।
0: तो ऐसी स्थिति में इसकी भी हम जो पौध से पौध की दूरी है 12 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। इसी प्रकार से लोबिया में भी यही दूरी रखते हैं, बस बीज की मात्रा लोबिया की, ग्वार का बीज थोड़ा छोटा होता है, लोबिया का उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसमें जो बीज का दर रेट है वो 16 से 18 केजी एकड़ पड़ता है।
1: प्रति एकड़। डॉक्टर साहब, जहाँ बहुवर्षीय हरा चारा में हाइब्रिड नेपियर और गिनी घास लगाना है, तो प्रति एकड़ में कितनी रोपण सामग्री की आवश्यकता होगी और रोपाई का अंतरण लाइन से लाइन की दूरी कितना होगी, पौध से पौध की दूरी यानी स्लिप से स्लिप्स की दूरी कितना होगी?
0: नेपियर का जो रूट स्लीप या स्टेम कटिंग लगता है प्रति एकड़ 12,000 से 15,000 आपको स्टेम कटिंग या रूट की आवश्यकता पड़ेगी
1: यानी स्लिप्स।
0: स्लिप्स की। इसमें पौध से पौध की दूरी, अगर आपका खेत जो है उर्वरा शक्ति अच्छी है, खेत की मिट्टी अच्छी है, तो इसमें हम दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखते हैं,
1: 2 फीट।
0: 2 फीट।
1: और लाइन से लाइन?
0: लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर,
1: 1 से लेकर के 1.25 मीटर
0: हाँ।
1: जैसे।
0: पर अगर आपकी जैसे भूमि की थोड़ी उर्वरा शक्ति डाउन है तो हम इसमें जो है दूरी नजदीक कर देते हैं, 40 से 50 सेंटीमीटर पर लगाते हैं।
1: और गिनी घास?
0: गिनी घास का इसमें दो है, ये रूट स्लिप से भी इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, दूसरा इसमें सीड से भी,
1: यानी बीज से भी बुआई कर
0: बीज
1: सकते।
0: से भी। तो बीज इसमें 1 से 1.25 केजी प्रति एकड़ के दर से लगेगा,
1: और
0: और
1: अगर स्लिप्स?
0: स्लिप्स करें तो ये 12,000 से लेके 20,000 प्रति एकड़ की दर से लगेगा।
1: और अंतरण नेपियर जैसा ही होगा?
0: हाँ, अंतरण नेपियर जैसा होगा। अगर मिट्टी अच्छी है तो आप 60 सेंटीमीटर पर लगाइए, क्योंकि अच्छी मिट्टी होगी तो उसकी बढ़वार अच्छा होगा, चारों तरफ से उसके कल्ले निकलेंगे तो उत्पादन अच्छा। अगर मिट्टी थोड़ी कमजोर है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति थोड़ा डाउन है तो आप उसमें दूरी को कम कर दीजिए ताकि आपके उत्पादन पर कोई कुप्रभाव न पड़े।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन विभाग आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: आप पशुपालन विभाग आ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 9451

0: 1272 9451671272 94-51-67-12-72।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में हरा चारा उत्पादन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: खरीफ में हम हरा चारा तो बुआई कर दिए, पर उसमें खरीफ में अगर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर कोई ड्राई स्पेल आ गया, तो आपको ध्यान देना है कि हमारे फसल की बढ़वार रुके ना, उसके लिए हमको सिंचाई करनी है,
1: यानी जीवन रक्षक सिंचाई
0: करते रहनी है। अगर बरसात नहीं होती तो 20 दिन में कम से कम एक सिंचाई आप कर दें। उसके साथ ही चूंकि फसल की जब हम बुआई करते हैं तो उसमें काफी खरपतवार आ जाते हैं, तो जब खरपतवार आ जाएंगे तो जो हमारा चारा वाला पौधा है उसको बढ़वार को रोकेंगे। ऐसी शुरुआत में एक दो निकाई गुड़ाई कर दें, खरपतवार निकल जाए, जिससे हमारा चारा की जो फसल है वो थोड़ा जमीन से ऊपर आ जाए, तो जब उसके बाद जो घास होगा अपने आप जो है डाउन हो जाएगा, और हमारी फसल जब ऊपर निकल आएगी तो उसको फिर निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसका विशेष आप लोग ध्यान दें। दूसरी है कि जब हम फसल बो देंगे तो उसकी हम कटाई कब करें?
1: हाँ,
0: कोई भी फसल है, सबसे ज्यादा उसमें पोषक तत्व कब मिलता है? जब उसकी पुष्पावस्था होती है। तो इसका ध्यान दें कि जब हमारी पुष्पावस्था हो तब हम हरा चारा की कटाई करें, ताकि हमारे पशु को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिल सके।
1: डॉक्टर प्रकाश चंद्र सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में हरा चारा उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई, जानकारी बहुत नेक रहा कि कैसे हम हरा चारा का उत्पादन करके अपने पशुओं का स्वस्थ रख सके थे। तो खरीफ में हरा चारा उत्पादन के बारे में जानकारी दे खातिन प्रकाश चंद्र सिंह भैया का डॉक्टर और डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल बहनी, और साथ में है आज हम बहुत बढ़िया एक भेंटवार्ता लेकर आए हैं जौन है सफलता के कहानी खरीफ उत्पादन पर। तो एक वार्ताकार हैं प्रहलाद कुमार कुशवाहा भैया, और इनसे बहुत बढ़िया बात कही करनी है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो आओ सुना जाए।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आज हमारे साथ हैं उन्नाव जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के गनीपुर बेहटा गांव के प्रहलाद कुशवाहा भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप एक युवा किसान हैं और आधुनिक खेती कर रहे हैं, कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
4: डॉक्टर साहब, हमारे पास खेती की कुल जमीन 2 एकड़ है, और 2 एकड़ में हम पूरे साल में जो है इधर खरीफ में मक्का, तिल्ली, मूंगफली, बाजरा, और शीतकालीन में हम गेहूं, सरसों, आलू की फसल लेते हैं। और
1: जायद में
4: डॉक्टर साहब मेंथा की फसल ले लेते हैं, लेकिन इस वर्ष हमने जो है मेंथा नहीं लिया हुआ था, क्योंकि हमने अपने खेत को जो है फसल चक्र अपनाया है, जिसके कारण मेंथा की फसल इस वर्ष नहीं ली है।
1: तो इस बार खरीफ की योजना में कौन कौन सी फसल शामिल कर रहे हैं?
4: डॉक्टर साहब, इस वर्ष हम अपने खरीफ में मक्का की फसल लेंगे, और बाजरे की फसल, तिल्ली की फसल और मूंगफली की फसल लेंगे।
1: तो ये क्या सब फर्दा रहेगा या सब फसल के रूप में भी?
4: नहीं, सब फर्दा रहेगा डॉक्टर साहब।
1: तो मक्का में कौन सी वैरायटी की तैयारी है?
4: डॉक्टर साहब, मक्का में 81-81 एक वैरायटी है, दूसरी 33-307 वैरायटी ले रखी हुई है, और तीसरी 33-266। ये सभी ब्रांडेड कंपनी के बीज हैं और बहुत अच्छी जो है पैदावार इनकी है।
1: क्या हाइब्रिड है क्या?
4: जी हाँ डॉक्टर साहब।
1: क्या खासियत इसकी महसूस कर रहे हैं
4: डॉक्टर साहब? अन्य मक्का की तुलना में इन मक्कों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। इनके पंजे जो होते हैं तने के नीचे के, वो काफी मजबूत होते हैं, तो आंधी और पानी में मतलब तो गिरते नहीं है इसके पौधे।
1: तो मक्का की खेती हर साल आप करते हैं?
4: जी डॉक्टर साहब।
1: ये इस बार आपने बदलाव किया है, नई प्रजाति?
4: हाँ, बदलाव किया है डॉक्टर साहब, और इस वर्ष 2 एकड़ खेत जो है बटाई ले रखा है, जिसमें हम मक्के की फसल लेंगे, और अपने खेत में तो अब की 2 साल से मक्के की खेती कर रहे थे, तो अपने खेत में इस वर्ष तिल्ली, मूंगफली और बाजरा लेने की तैयारी है।
1: यानी कुल 4 एकड़ में खरीफ की तैयारी?
4: हाँ जी डॉक्टर साहब।
1: तो खेत की तैयारी हो गई?
4: जी हाँ, खेत की तैयारी डॉक्टर साहब हो गई है। हमने अपने खेतों की कम से कम 4-5 जुताई की हुई है, गहरी जुताई। और गहरी जुताई का इस समय डॉक्टर साहब फायदा ये है, मिट्टी उलट पलट जाती है, तो खरीफ में जो कीट लगते हैं फसलों में, तो उनके अंडे बच्चे जो होते हैं ना, वो सीधी धूप पड़ने से उसके अंडे बच्चे जल जाते हैं, मर जाते हैं, तो इससे जो है

0: खरीफ की फसलों में लगने वाले कीट पतंगों की मात्रा आधी रह जाती है। साथ ही साथ इस समय की जुताई होने से जमीन उपजाऊ हो जाती है, पानी अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है भूमि की।
1: देसी खाद आपने मिला दिया कि नहीं?
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देसी खाद में हमने जो है पशुओं की सड़ी हुई पांस को जो है खेत में फैला के और जुताई करके मिला दिया है। ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेशियाना भी हमने जो है मिला करके रख दिया है। बस हमको इंतजार है इस वक्त कि जिस समय बारिश हो उस समय हम अपनी बुआई का कार्य चालू कर दें।
1: यानी मानसून के आने के साथ ही बुआई आपकी चालू हो जाएगी, खरीफ की पहले मक्का, फिर तिल, बाजरा और मूंगफली।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए मूंगफली और मक्का ये दोनों साथ साथ में मतलब बोएंगे, जैसे एक दिन हमने मक्का बोया तो दूसरे दिन मूंगफली बो देंगे और उसके बाद में हमारा फिर तिल्ली हो जाएगा। जुलाई महीने में जो है लगभग 15 जुलाई से बाजरे की बुआई चालू हो जाएगी।
1: तो मक्के में कौन कौन सी बारीकी करते हैं कि आपकी फसल अच्छी हो?
0: डॉक्टर साहब, मक्के की बहुत जरूरी बात ये है कि मक्के के पौध से पौध की उचित दूरी बहुत आवश्यक होती है। तो हम दूरी की बात करें तो हम एक फुट पर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी हम जो है एक हाथ की रखते हैं, और
1: यानी लगभग 1.5 फीट।
0: जी हाँ, और खरपतवार न होने पावे उसके लिए हम पहले से जो है उसमें एट्राजीन
1: छिड़काव करते हैं।
0: जी हाँ, 24 घंटे के अंदर इसका छिड़काव कर देते हैं ताकि जो है खरपतवार ना उगे। लगभग 30 दिनों उगता ही नहीं है और फिर उसके बीच में अगर जैसे उगने भी लगता है तो अपना जो है एक गुड़ाई कर देते हैं ताकि मैं दोबारा कोई दवा डालनी ही ना पड़े।
1: तो एक गुड़ाई में काम चल जाता है?
0: हाँ डॉक्टर साहब, एक गुड़ाई में काम चल जाता है। बाद में अगर खरपतवार उगता भी है तो हम देसी हंसिया लेकर के काट काट के अपना पशुओं को जो है खिलाते रहते हैं, तो इससे हमारा जो है एक पंथ दो काज हो जाता है।
1: संकर मक्का की बुआई की तैयारी में है तो फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी देते हैं, कब देते हैं, कैसे देते हैं?
0: डॉक्टर साहब देखिए, हम उर्वरक की बात करें तो दानेदार डीएपी हम बुआई एकड़ में 2 बोरियां डालते थे, लेकिन अब हमने एकड़ में मात्र 1 बोरी कर दी है और अब बीज का जो है हम शोधन कर लेते हैं नैनो डीएपी से।
1: अच्छा
0: जी हाँ, नैनो डीएपी से बीज शोधन कर लेते हैं, साथ में ट्राइकोडर्मा भी लगा देते हैं। इससे खाद की मात्रा कम हो जाती है और जब ट्राइकोडर्मा लगा देते हैं तो हमारे पौधों में कोई रोग नहीं लगता है।
1: और नैनो डीएपी से जब बीज का शोधन करते हैं
0: जी,
1: तो उसका क्या फायदा मिलता है?
0: डॉक्टर साहब, उसका फायदा ये मिलता है कि वो जो पौध निकलता है ना तो वो बहुत अच्छा निकलता है और कलरफुल निकलता है और काफी मजबूत होता है, वो जमाव बहुत अच्छा होता है डॉक्टर साहब,
1: और स्वस्थ पौधे होते हैं।
0: स्वस्थ पौधे होते हैं जब हम अपने बीज को उपचारित कर लेते हैं नैनो डीएपी से, तो हमारा पौधा जो होता है एकदम स्वस्थ उगता है।
1: फिर खड़ी फसल में मक्का की भूख कैसे मिटाते हैं?
0: खड़ी फसल में मक्का की भूख मिटाने के लिए डॉक्टर साहब लगभग 15 दिन पर नाइट्रोजन का छिड़काव आधी मात्रा में करते हैं,
1: यूरिया का।
0: जी हाँ, यूरिया
1: दानेदार
0: का, दानेदार। फिर उसके बाद में जब हमारी फसल लगभग हो जाती है 28-30 दिन की, तब हम नैनो यूरिया जो आती है प्लस उसका छिड़काव कर देते हैं।
1: और क्या नैनो डीएपी का दोबारा छिड़काव?
0: जी हाँ, जब नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं साथ ही में नैनो डीएपी, नैनो यूरिया जो बची हुई होती है हमारी शेष मात्रा बीज उपचारित के बाद में, तो नैनो डीएपी नैनो यूरिया एक ही में मिक्स करके दोनों को स्प्रे कर देते हैं, इससे हमारी फसल बहुत अच्छी चलती है डॉक्टर साहब।
1: तो फिर खड़ी फसल में और कोई काम?
0: फिर खड़ी फसल में डॉक्टर साहब, आवारा छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए तो खेत में हमारे पिताजी मचान बना करके 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाते हैं और
1: यानी रखवाली करते हैं।
0: जी हाँ डॉक्टर साहब,
1: आपने कहा कि तिल, बाजरा और मूंगफली
0: जी
1: भी लगाने की तैयारी में है।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: तो इसकी कोई खास वैरायटी तिल, मूंगफली की और बाजरा की?
0: जी डॉक्टर साहब, बाजरे में 86M90 तो ये ब्रांडेड कंपनी की मतलब वैरायटी है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है बाजरे का,
1: यानी हाइब्रिड बाजरा है।
0: जी हाँ, और रही बात तिल्ली की डॉक्टर साहब, वैरायटी देसी है, ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है, देसी जो वैरायटी है, और मूंगफली भी हमारी देसी वैरायटी है, तो ये हमारे गांव घर में ही जो है मिल जाती है वैरायटी,
1: उसी का लगा रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: तो क्या सावधानियां रखते हैं तिल, मूंगफली और बाजरा लगाने में?
0: देखिए डॉक्टर साहब, भूमि शोधन और बीज शोधन बहुत जरूरी है,
1: सब में करते हैं।
0: जी हाँ, तो इसका फायदा हमको ये मिलता है कि
1: ट्राइकोडर्मा से।
0: जी हाँ, ट्राइकोडर्मा से बीज का उपचार करते हैं और खेत का भी करते हैं, साथ में बिवेरिया बेशियाना से भी जो है उपचार करते हैं भूमि का, ताकि जो है भूमिगत कीट न लगने पावे, भूमिगत कोई रोग न लगने पावे हमारी फसल में, इन बातों का हम बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं।
1: चूंकि कई सालों से लगातार आप संकर मक्का उत्पादन से जुड़े हैं
0: जी,
1: तो क्या आंकड़ा होता है कि एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं, बचत होती कितनी है?
0: जी डॉक्टर साहब, अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमारी लागत आती थी 15,000 रुपये
1: पर एकड़,
0: फिर वो घट करके हमारी लागत जो है जब से ये स्मार्ट उर्वरक आ गए तब से हमारी घट कर

0: लागत 10,000 आ गई। और अगर हम इस वर्ष की बात करें डॉक्टर साहब, तो इस वर्ष हमको कंपनियों ने मुफ्त में बीज दे दिया है। अब केवल जो कुछ हमारी लागत लगनी है, केवल खाद की लगनी है और रखवाली की, जो कुछ उसमें पानी यानी अगर अगर बारिश नहीं हुई तो पानी की जो कुछ लागत आएगी। बहरहाल कुल मिलाकर के इस वर्ष तो लागत बहुत ही नाम मात्र आ रही, क्योंकि बीज हमको कंपनियों ने निःशुल्क दे दिया है।
1: और एकड़ में उत्पादन,
0: उत्पादन की अगर बात करें डॉक्टर साहब, हम एकड़ में खरीफ में 20 से 25 क्विंटल तक जो है मक्के का उत्पादन कर लेते हैं।
1: और जो आप तिल, बाजरा और मूंगफली पैदा करेंगे
0: जी,
1: उसमें
0: जी बाजरे की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो बाजरा भी हम एकड़ में लगभग 15 क्विंटल तक जो है उत्पादन पा लेते हैं।
1: और मूंगफली,
0: और मूंगफली की बात करें तो डॉक्टर साहब एकड़ पीछे लगभग 10 से 12 क्विंटल पा लेते हैं। और तिल्ली की अगर बात करें तो एकड़ में 2 क्विंटल तक पैदा कर लेते हैं।
1: कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम खेती से बहुत खुशहाल हैं और बहुत ही खुशहाल हैं।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, हम तमाम सुनने वाले अपने किसान श्रोता भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि जो कुछ भी आपको अगले आने वाले समय में फसलें लेनी हैं, उसका आप अभी से जो है नियम बना लीजिए कि हमको इस समय कौन सी फसल लें, तो आगे जो है समय में हमको आगे की फसल लेने में कोई दिक्कत ना हो।
1: यानी
0: तो,
1: खरीफ रबी जायद
0: जी
1: की
0: हाँ,
1: फसल योजना बना लें।
0: बिल्कुल, फसल योजना इसी समय से बना लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना होने पाए। डॉक्टर साहब,
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारा मोबाइल नंबर है 6692-17-96-40 6392-17-96-40 6392-17-96-40
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: डॉक्टर साहब, हम अपने युवा साथियों से कहना चाहेंगे जो आजकल गांवों में न रह करके बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप लोग बाहर मत जाइए, अपने गांव में रहिए, अपनी मिट्टी से जुड़िए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, पशुपालन करिए, गांव में रहिए, खुशहाल रहिए।
1: प्रहलाद कुशवाहा भैया आज आप कार्यक्रम में आए, और जो आपकी सफलता की कहानी थी कि आपकी पुश्तैनी 2 एकड़ जमीन है और 2 एकड़ आपने लीज पर लेकर के रखा है, 4 एकड़ में संकर मक्का, संकर बाजरा, तिल और मूंगफली की खेती की तैयारी में है, मानसून के साथ ही आप बुआई करेंगे
0: जी,
1: और कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिमांशु भैया,
3: हाँ रत्ना भैया,
2: देखो कितनी नीके तरह से बताइन कि कैसे सफल बना जा सकत है, और इनसे हम पंच अपने आगे जीवन में उतार के आगे सफल बन सके थे। तो इके खातिन की खरीफ उत्पादन कैसे बढ़िया से करें, इके खातिन जानकारी दीन है प्रहलाद कुमार कुशवाहा भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और जानकारी देवाए खातिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो ये सहित गर्मी बहुत पड़ रही,
3: हाँ।
2: हम पंच जैसे हल्कान हो जाते घर से बाहर निकले थे तो तुरंत लगा था कि कहूँ पानी मिल जाए, जुड़ जुड़ तो पी ले, छाँह मिल जाए, वह तना जो अपने जानवर है जिनका हम पाले हैं उनका ध्यान रखे, क्योंकि उनका पानी ताज़ा पियाई, साथ में ये जो चारा सानी लगाई, यूं है कि सवेरे का सांझ का खवा दे, सानी लगी भाई वह नांद मैया, और या सांझ की है तो सवेरे खवा दे।
3: बिल्कुल बहनी, सही बात कहो, कोशिश करें कि जो है हमेशा रात में यहाँ देखभाल जितनी ज़्यादा करी हो, अगर तनको कोई समय दिक्कत हुई देखभाल करे से नहीं पता चल जाता है कि हमारा रह गुरु प्यास पियासे हैं या फिर भूखे हैं कि धूप में यहाँ हैं। अब आइस नहीं कि बिल्कुल अंदर बांध दो, बहुत ज़्यादा अंदरों बांध हम तो गर्मी रहे,
2: हाँ
3: तो ये सब चीज़ें देखभाल से नहीं है। और दूसरी चीज़ यूँ है कि जैसे जो अपन घर पर बड़े बुजुर्ग लड़का बच्चा है उनको विशेष ध्यान गर्मी में रखे है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो उनका समय समय पर पानी है या जो भी है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और धूप में यहाँ कोशिश करें कि कम निकले।
2: सही बात कहा, तो अपने जानवरों को यहाँ बाहर धूप माना बांधे रखो कि वे बंधे पड़े हैं और ध्यान नहीं गवा, तो ये सब ध्यान रखत भाई। एक ध्यान और है कि भैया सामने बैठे कहा था घर ना जाए है, तो पंच भाइन से लीन जाए आज्ञा।
3: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार, युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
9: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
8: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
10: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इस करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
8: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की

0: विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारम्भ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देश भर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं

0: राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहाँ अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें दो लोग जाते हैं। वहाँ एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहाँ से रोहित यादव, दो लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ कुछ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गाँव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी दो दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेरा फेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
2: और ये मेरी गुड़िया के ना।
4: पर दादी,
3: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज इस कार्यक्रम में पहले सुनिए गुर्दे के ट्यूमर, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता।
8: गुर्दा यानी किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में लाखों प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उनका जो बाई प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीटा के रूप में किडनी उसको फिल्टर करती है और उसके बाद बाहर शरीर के निकलता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव साहब, और आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गुर्दे में सिस्ट के बारे में, गुर्दे के ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम।
9: नमस्कार श्रोता।
8: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कि गुर्दा कितना महत्वपूर्ण अंग है?
9: देखिए, भगवान ने हमको दो किडनी दी गई है जिसको हम हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं। ये बेसिकली अपने शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने में काम करता है, साथ के साथ शरीर में मेटाबॉलिक जो चेंजेस हैं जैसे एसिड वेस बैलेंस उसके काम आता है, इवन आपकी RBC जिसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के भी काम आता है। तो बहुत ही जरूरी है, इसका मतलब पूरे शरीर में समन्वय। सपोज करिए पानी शरीर में ज्यादा है तो उसको निकालने में भी ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है, और कभी कभी हम डिहाइड्रेटेड हैं तो शरीर में पानी को कंजर्व भी करता है। तो मेन हमारा ऐसा तंत्र है जो कि शरीर की होम्योस्टेसिस एवं शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने में काम करता
8: है। डॉक्टर साहब, गुर्दे में जो ट्यूमर है वो क्या होती है?
9: अमूमन लोग गुर्दे में पत्थर या गुर्दे फेल होना, इसके बारे में, ट्यूमर के बारे में, या जिसको हम कैंसर कहते हैं। अब हर गांठ कैंसर नहीं होती है, ये ट्यूमर के बारे में जैसे भी हम जानते हैं कि अनरेगुलेटेड कोई सेल्स की ग्रोथ होने लगे तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो लोगों को लगता होगा कि भाई गुर्दे में तो पथरी होती, ट्यूमर? हाँ जी, ट्यूमर हो सकता है। और इसका हमने जो एविडेंस देखे हैं, जितने भी एडल्ट्स में ट्यूमर होते हैं उसके 2-3% लोगों में ये ट्यूमर पाया जाता है।
8: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिस्ट और ट्यूमर भी सेम है?
9: कई बार कुछ

0: ट्यूमर को बिल्कुल लेके परेशान नहीं होते, लेकिन कुछ लोग सिस्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्या होता है कि 10% तक अपने नेफ्रॉन खाली काम नहीं करते, वो बाद में रिजर्व के रूप में यूज होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो वो छोटी छोटी झिल्ली बना लेते हैं जिसको हम रीनल सिस्ट कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें सिस्ट मिल गई तो लोग उसी में परेशान हो जाते हैं ट्यूमर है कि नहीं है। तो अगर सिस्ट आ रही है, चूंकि अब अल्ट्रासाउंड हर जगह अवेलेबल है, वो तो टाइप लिख देते हैं। अगर उन्होंने सिंपल रीनल सिस्ट टाइप 1 टाइप 2 तक लिख दिया तो आप परेशान ना हो। टाइप 3 या 2F और 4 के लिए वो आगे सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं तो उसका कंफर्मेशन, ये नहीं कि सिस्ट देखते ही हम परेशान हो गए। अमूमन ओपीडी में अल्ट्रासाउंड कराया आपने, किसी लिए सिस्ट आ गई, अरे साहब सिस्ट से हमें ट्यूमर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता अंटिल अनलेस कुछ उसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग ना हो। और ये कैसी कंडीशन है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट किडनी डिजीज कहलाती है, उसमें हेपेटिक सिस्ट, स्प्लेनिक पैनक्रियाटिक सिस्ट, वो मल्टीपल फॉर्म, वो जेनेटिक रूप होता है, वो एक अलग तरह की बीमारी होती है, वो फैमिली में चलती है।
1: अगर किसी को गुर्दे में ये जो गांठ है किसी को है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं?
0: देखिए पहले के जमाने में हमें 10% लोग ही मिलते थे जिनमें कि एक बड़ी सी गांठ आपको नहाते वक्त या किसी वक्त आपने छू ली, उसके बाद या पेशाब में खून आना या एक जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, ये पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, ये गांठ आ जाना गले के बगल में सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में, एवं एक बार अनएक्सप्लेन्ड फीवर। आजकल क्या हो रहा है कि हम अल्ट्रासाउंड ऑफन कराते रहते हैं, प्लस अवेलेबिलिटी हो गई, तो हमें अर्ली स्टेज में भी एक गांठ टाइप की मिल जाती है। सिस्ट में क्या होता है, एक बुल्ला टाइप का होता है पानी का, जैसे बुलबुला कह लीजिए, लेकिन जो ट्यूमर होता है उसमें सॉलिड कंपोनेंट कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलेगा, या अमूमन अल्ट्रासाउंड वाले लिख देते हैं इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी। तो मेन लक्षण होते हैं गांठ, पेशाब में खून आना और अनएक्सप्लेन्ड फीवर या दर्द होना।
1: डॉक्टर साहब ये जो सिस्ट है ये किडनी के किस भाग में, कहां पर?
0: देखिए किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरा होता है पेल्वी कैलिसियल सिस्टम जिसको कैलिक्स, पेल्विस या यूरेटर, इसकी लाइनिंग अलग होती है और इनकी अलग होती है। और रीनल ट्यूमर्स या जिसको हम हाइपर नेफ्रोमा कहते थे पुराने जमाने में, वो रीनल कॉर्टेक्स से आते हैं। और एक ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है जो कि कलेक्टिंग सिस्टम, जैसे यूरिन उन्होंने फिल्टर कर दी, उसके बाद कलेक्ट होती है कैलिक्सिस के थ्रू पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लड। तो ये दो जो आरसीसी कहेंगे, जिसको मतलब किडनी ट्यूमर कहेंगे, वो कॉर्टेक्स से आया तो हाइपर नेफ्रोमा, अगर वो कलेक्टिंग सिस्टम जहां पे अमूमन पथरी बनती है उसमें आया तो उसको हम अपर ट्रैक टीसीसी कहते हैं।
1: तो जिन लोगों को ये टेंडेंसी है कि स्टोन काफी बन रहे हैं, तो क्या इस तरह की संभावना, इस तरह के ट्यूमर या सिस्ट की संभावना ज्यादा रहती है?
0: देखिए कोई भी चीज या कोई भी लाइनिंग बार बार अगर इरिटेट होगी, उसको बार बार कोई तंग करेगा, तो अमूमन वो अपने आप रिएक्ट करेगी, जिसमें आपका टीसीसी का इंसिडेंस बढ़ जाता है जो कि पेल्विक एलिसियल सिस्टम में होता है।
1: कितना सामान्य है
0: ये? उतना सामान्य नहीं है, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें 2-5% तक लोगों में पाया जाता है एडल्ट पॉपुलेशन में, और आदमियों में ज्यादा है, 2:1 का रेशियो।
1: अच्छा, अगर दो आदमी में है तो एक महिला में होगा। बच्चों की बात करें,
0: ये बेसिकली आपका 15 साल से कम बच्चों में देखा जाता है, जिसको हम विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। वो भी क्या होता है, जब हमारी किडनी बन रही होती है तो किडनी का कुछ डेवलपमेंट वाले पार्ट रह जाते हैं, उनसे डेवलप होता है, वो ट्यूमर कहते हैं। अब 15 साल तक के बच्चों को जब हम स्क्रीन करते हैं तो मोस्ट कॉमन 3.5 साल से 5 साल के बीच में बच्चों में पाया जाता है। पता कैसे चलता है, माँ नहला रही है, चूंकि बच्चों में उतना मस्कुलेचर नहीं होता, तो एक गांठ वाल पेट हो गई, या बहुत बड़ी सी गांठ है, या पेशाब में खून आ गया, या खाना पीना उसने बंद कर दिया, या उसका फीवर नहीं जा रहा है।
1: अच्छा,
0: तो पता चलता है।
1: डॉक्टर साहब जांचें
0: देखिए, मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड, कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा। बस जाके डॉक्टर के पास जाना है,
1: होल बॉडी,
0: होल एब्डोमेन वो लोग कर लेते हैं। अमूमन आप भी चाहते हैं कि हमारी एक बार जांच हो जाए, तो जांच हो, अगर निकलती है गांठ तो उसको आगे हम उसको वो करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, या उसको हम 100% बनाने के लिए कहते हैं, तो हम एक सीटी स्कैन होता है जिसमें हम कंट्रास्ट देते हैं। और गुर्दे के बारे में बताऊं, ये अगर गांठ है तो इसमें बायोप्सी कम होती है, हमें रेडियोलॉजी के लिए मतलब सीटी स्कैन है, एमआरआई से हमें 100% तक पता चल जाता है।
1: इस समस्या के लिए उपचार क्या उपलब्ध है?
0: देखिए अगर यही है कि आप जल्दी आए तो जल्दी, आजकल बहुत सारी विधियां आ गई हैं। पहले हम पूरा गुर्दा निकाल देते थे, फिर हम इस ट्यूमर को स्टेज वाइज करते हैं, मोटा मोटा है 7 सेंटीमीटर से नीचे, 7 सेंटीमीटर के ऊपर और आगे फैला हुआ, तो T1 T2 T3 T4 इस तरह से स्टेज, जैसे आप लोग भी स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 कहते हैं। अब इसमें भी अगर लेस देन 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है आपका और वो पोलर है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किडनी बचा सकते हैं, जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं, तो किडनी बचाते हुए ट्यूमर निकाल सकते हैं। भगवान ने हमें 2 किडनी दी है, अगर किडनी इन्वॉल्व भी हो रही है तो उस किडनी को अर्ली अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे अपना तो अच्छी रिकवरी है, 90% तक लोग सर्वाइव करते हैं, फिर फॉलोअप में चलते रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते बचाव के लिए क्या करें और हम

0: श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: देखिए, संदेश सब लोगों को पता है, स्मोकिंग से आप या टोबैको को किसी भी फॉर्म में आप लेना बंद करें, अपना वजन सही नियंत्रित रखें, एक्सरसाइज करें, और अपना ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको रेगुलरली अपना ट्रीट कराते रहें। प्लस अगर कोई भी ऐसा लक्षण आवे तो अपने आप को एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब हर जगह डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो आपको सही दिशा या सही रेफर करेंगे आपको। देखिए, हमारी ओपीडी मंगल और शुक्रवार को होती है, वैसे केजीएमयू में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपीडी होती है। आप कभी भी आके अपने लक्षणों को दिखा सकते हैं
0: और सारी जांचें हैं,
1: सारी जांचें इन हाउस होती हैं, सब कुछ अंदर एक छत के नीचे हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं के समक्ष है, और अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने स्किल से हमारे श्रोताओं को आपने लाभान्वित किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप गुर्दे के ट्यूमर, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वार्ता, फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। वार्ताकार हैं डॉक्टर विकास कुशवाहा।
3: सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है जिंदगी को आसान बनाती फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों में से एक है, जो कि लोगों को उनके शारीरिक कार्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने या उन्हें बहाल करने या सुधारने में मदद करती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां गतिहीन जीवन शैली, तकनीकी निर्भरता, बढ़ती उम्र की आबादी और पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं, फिजियोथेरेपी व्यक्तियों को स्वस्थ, अधिक सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी एक स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय है जो कि शारीरिक अक्षमताओं और गति विकारों के आकलन, निदान, उपचार और रोकथाम पर केंद्रित है। फिजियोथेरेपी के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट वैज्ञानिक सिद्धांतों और साक्ष्य आधारित तकनीकों, जैसे कि चिकित्सीय व्यायाम, हाइड्रोथेरेपी, हीट थेरेपी, मुद्रा सुधार, इलेक्ट्रोथेरेपी, रोगी शिक्षा और जीवन शैली में बदलाव आदि के द्वारा शारीरिक कार्यक्षमता में सुधार लाते हैं। फिजियोथेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को उनकी अधिकतम कार्यात्मक क्षमता प्रदान करने और दैनिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। फिजियोथेरेपी से कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि दर्द कम करना, उसका प्रबंधन, गतिशीलता या मूवमेंट और लचीलेपन में सुधार, चोट और सर्जरी से स्वस्थ होना, दिव्यांगता की रोकथाम करना, बेहतर शारीरिक मुद्रा और शारीरिक फिटनेस में वृद्धि। आजकल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं अस्पतालों, पुनर्वास केंद्रों, स्कूलों, खेल सुविधाओं, कार्यस्थलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, यहाँ तक की आवश्यकता पड़ने पर घरों में भी उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में कुछ आम शारीरिक समस्याओं की, जिनसे फिजियोथेरेपी में बहुत हद तक हम जिनको सुधार सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दन के दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। आजकल जैसा कि तकनीकी के विकास के कारण स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का उपयोग और गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से गर्दन दर्द बहुत तेजी से आम होता जा रहा है। इसका सामान्य कारण लंबे समय तक डेस्क पे काम करना, मोबाइल फोन का अत्यधिक यूज करना तथा उम्र के साथ साथ होने वाले शरीर में बहुत सारे डिजेनरेटिव चेंजेस भी हैं। लक्षणों में देखा जाए तो गर्दन में अकड़न, सिरदर्द हो सकता है, कंधे में दर्द, बाहों में झुंझुनी या सुन्नपन हो सकता है, या रेंगता हुआ पेन हो सकता है, या हाथों में कमजोरी भी हो सकती है। फिजियोथेरेपी उपचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पोस्चरल करेक्शन या मुद्रा सुधार करते हैं, गर्दन को मजबूत करने वाले व्यायाम, स्ट्रेचिंग व्यायाम या और भी दर्द निवारक उपचार फिजियोथेरेपी उपचार के अंतर्गत उपलब्ध है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक की जा सकती है वो है पीठ दर्द या कमर दर्द। कमर दर्द विश्व स्तर पर दिव्यांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। लगभग हर कोई जीवन में कभी न कभी पीठ दर्द का अनुभव करता है। इसके सामान्य कारणों में गलत तरीके से बैठना, गतिहीन जीवन शैली, मोटापा, भार या वजन उठाने की गलत तकनीक या मांसपेशीय कमजोरी हो सकती है। इसके लक्षणों में से सम्मिलित है कमर में दर्द होना, खड़े होने या चलने में कठिनाई, दर्द का पैरों के पीछे की तरफ रेंगना, मांसपेशियों में अकड़न, पैरों में दर्द का फैलना और मांसपेशी कमजोरी। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में हम पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, मुद्रा प्रशिक्षण, लचीलेपन के व्यायाम, पीठ की देखभाल संबंधी शिक्षा और जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं उनमें बदलाव करके, अपने जीवनचर्या में बदलाव करके हम पीठ दर्द को दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है घुटने का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने का दर्द आम होता जा रहा है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। चलने फिरने में, पालथी मारकर बैठने में दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, जोड़ों में अकड़न, गतिशीलता में कमी, ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षण हैं। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करना,

0: गति सीमा बढ़ाने वाले व्यायाम, संतुलन का प्रशिक्षण, चूंकि दर्द की वजह से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है इस वजह से, और इसके साथ ही साथ वजन का प्रबंधन करना, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और चलने के तरीके में सुधार, इन सारी विधियों से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम कर सकते हैं और जिस स्थिति में है वहां रोक सकते हैं। चौथा सबसे बड़ी कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर की, जिसमें मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग व्यक्तियों में फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, और जो डायबिटिक पर्सन है, मधुमेह से रोगी है, उनमें विशेष कर से यह प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में सम्मिलित है कंधे में दर्द, बांह उठाने में कठिनाई, कंधे की गति का सीमित होना, साथ ही साथ रात में सोते समय कंधे में बहुत तेज दर्द होना। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखना, जोड़ों को मजबूत करने वाले व्यायाम और विधियां सम्मिलित हैं। इसी के साथ साथ तमाम बच्चों से संबंधित समस्याएं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या सेरेब्रल पाल्सी में भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तंत्रिका संबंधी समस्याओं में भी फिजियोथेरेपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की शारीरिक जो बीमारियां हैं उनमें भी, जीवन शैली संबंधी जो बीमारियां हैं उनमें भी फिजियोथेरेपी, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जो दिनचर्या है उसमें मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग बहुत सामान्य है। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी केवल व्यायाम और पुनर्वास से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी विधा है जो कि गतिशीलता को बहाल करने, दर्द को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी बच्चे से लेकर वृद्ध जनों, सारे उम्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है, और जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जारी है वैसे वैसे फिजियोथेरेपी में भी तकनीकों का विकास बढ़ता जा रहा है। अंततः फिजियोथेरेपी वास्तव में व्यक्तियों की शारीरिक क्षमताओं को प्राप्त करने, आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने, आत्मनिर्भरता बनाने तथा कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र बनाने और सक्रिय जीवन शैली का आनंद लेने में मदद करके जीवन को आसान बनाती है। आवश्यकता पड़ने पर एक योग्य और कुशल फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि जहाँ पर योग्य फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर आप घर पर भी कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जिनसे आप अपने जीवनचर्या को सक्रिय बना सकते हैं और सक्रिय जीवन शैली का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
1: फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। अभी आप डॉक्टर विकास कुशवाहा की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल को सुना सड़क फिल्म में। समीर ने इस गीत को लिखा था, नदीम श्रवण का संगीत था। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आंदोलन फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन एक बार फिर बनाई है नदीम श्रवण ने। इस गीत में कुमार सानू का साथ दिया है सपना मुखर्जी ने।

कुमार सानू और सपना मुखर्जी की आवाज़ में अभी आपने समीर का लिखा गीत सुना। आंदोलन फिल्म के इस गाने की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल लंदन में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे कल शाम 6:30 से 7:18 तक, शाम 7:31 से 8:45 तक और रात्रि 9:30 से मैच की समाप्ति तक, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदक्षिणा मिश्रा का काव्य पाठ।

निचित्त मोहता, श्वेत वस्त्र धारिती सदैव शांति बांटती, शांत का प्रतीक माँ अवाम शांति चाहती, आपके सुपाद

मातृभारती सदैव आपको प्रणाम है। नारी सृष्टि का आधार, नारी से है संसार, नारी से ही परिवार, घर की ये पतवार। नारी सृष्टि का आधार, नारी से है संसार, नारी से ही परिवार, घर की ये पतवार। नारी बिन घर बार सब लगे है बेकार, चाहे भरे हो भंडार, खुशियाँ ना आए द्वार। जिस घर रहे नार वर से है खूब प्यार, हर दिन है त्योहार, करती सदा श्रृंगार। दिल से करो आभार नारी का तो बारंबार, दिल से करो आभार नारी का तो बारंबार। खुशियाँ रहे अपार, प्रेम प्यार मनुहार। नारी का करे सम्मान, रखे हम सब ध्यान, नारी का करे सम्मान, रखे हम सब ध्यान। परिवार का ये मान, देती है ये बलिदान, छोड़ स्वयं पहचान, घर को संभाले ठान। करती ना अभिमान, कितनी है ये महान, पढ़ी लिखी खूब जान, छोड़ आई सब शान, पढ़ी लिखी खूब जान, छोड़ आई सब शान। नारी घर की है भान, बच्चे की है सोपान, देती है ये जीवन दान, करे हम।

जहाँ बचपन बिताया है, समय के साथ चलना ही हमें सब ने सिखाया है। पुराना दौर बीता, अब नया फिर दौर आया है। समय के साथ चलना ही हमें सब ने

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
3: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
2: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए हरिहरन की गाई चंद गजलों का। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं बुल्ले शाह की लिखी ये गजल हरिहरन की आवाज में।

अभी आप हरिहरन की आवाज में अमीर खुसरो का कलाम सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आपने ये गीत सुना ये दिल आशिकाना फिल्म से। शब्द रचना थी समीर की। इस गीत की तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने। इस गाने को गाया था कुमार सानू के साथ अलका याग्निक ने। चित्रपट से कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुप्त फिल्म का गीत। ये गीत आप सुनेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू की ही आवाज़ों में। आनंद बख्शी की कलम से निकले इस गीत को संगीत से संवारा है विजू शाह ने।

0: अलका याग्निक और सोनू निगम को अभी आपने सुना दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

0: और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हो। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता

0: दाता सौम्या शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले चार वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है में दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार।

0: Minister ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ्फुज और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वजरा और मुसलह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 30 परम वशिष्ठ सेवा मेडल्स, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति वशिष्ठ सेवा मेडल्स अता किए। अति वशिष्ठ सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सारदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल अता किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोबती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कुरा अहलकारों को उनकी गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन UPI, ज़राअत, जहाज़रानी, खलाई तआवुन, मुलज़मान की हवालगी और लाइन ऑफ क्रेडिट समेत मुतअद्दिद शोबों में मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए।

कागज पे सजी स्याही की खुशबू भी कमाल थी। कागज पे सजी स्याही की खुशबू भी कमाल थी। हर खत में धड़कता दिल, हर लफ्ज में सवाल थी। आज ईमेल की रोशनी में भी वही एहसास पलता है, जब गीतों की धुन पर जज्बातों की बरसात ढलता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके द्वारा भेजे गए पत्रों और ईमेल के जरिए चुनते हैं वो नगमे जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका रेडियो साथी पंकज शुक्ला। इस कार्यक्रम में आज हम आपको वो गीत सुनवाएंगे जो आप सुनना पसंद करेंगे और अपनी फरमाइश हम तक भेजेंगे। पहले बता दें आपको अपनी ईमेल आईडी जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश भेजेंगे। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो आइए आज के इस संगीतमय सफ़र की शुरुआत करते हैं।

आज के कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं कर्ज फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। पसंद आप सबकी। ग्राम पहाड़ीपुर रायबरेली से रामराज राजू भानु रामशंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्या राम सागर साहू रसूलपुर वाले और रामचरण प्रजापति, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत कर्ज फिल्म से।

अभी आपने मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। पसंद आप सब श्रोताओं की थी। शिमला हिमाचल प्रदेश से वली उल्लाह डोम, डब्लू उल्लाह डोम, रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली थी रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा जी की तरफ से, और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेम लाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी की। आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विधाता फिल्म का गीत सुरेश वाडकर और अनवर हुसैन की आवाज़ में। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की है। ग्राम व पोस्ट ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत विधाता फिल्म से है।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पगला कहीं का फिल्म का गाना। इस गाने के लिए फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा जी की, और इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है लंबोदर रेडियो श्रोता संघ ग्राम जसवाड़ी के हमारे सभी श्रोताओं की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत पगला कहीं का फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे मेरे जीवन साथी फिल्म से। इस गाने को गाया है किशोर कुमार ने। पसंद हमारे इन सभी श्रोताओं की। ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। इसी गाने के लिए मेल हमें मिली है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है और मेरे जीवन साथी फिल्म से है।

कुछ नगमे दिल को छू जाते हैं, कुछ नगमे दिल को छू जाते हैं, कुछ लम्हे आँखों में रह जाते हैं। हम चल तो दिए हैं वक्त के साथ, पर गीत पुराने दोस्ती निभा जाते हैं। तो साथियों, आज की ये संगीत यात्रा यहीं समाप्त होती है। आप सबके भेजी गई फरमाइशों ने इस कार्यक्रम को बेहद खास बना दिया। हम फिर मिलेंगे कुछ और यादों के साथ, कुछ और गीतों की मिठास के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, अपनी फरमाइश के खत भेजने के लिए हमारा पता। कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 226001। इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी रोज होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना खूब ख्याल। सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और दीजिए अपने रेडियो साथी पंकज शुक्ला को अनुमति। नमस्कार।

ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे सदाबहार गीत जो रिश्तों की मिठास, दिल की अनकही बातें, रूठने मनाने के एहसास और आखिर में एक खूबसूरत विदाई की दास्तां बयां करते हैं। तो आइए सुरों के इस सफर की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, जब कोई अपनी मौजूदगी से हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना दे तो दिल से यही दुआ निकलती है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इसी एहसास के साथ सुनिए ये नगमा।

अभी आपने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार ओपी नैयर। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को अनपढ़ फिल्म में। राजा मेहंदी अली खान साहब के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

दोस्तों, रिश्तों की असली खूबसूरती सिर्फ मिलने में नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में होती है। जब शब्द साथ छोड़ दें तब दिल की आवाज़ ही सबसे सच्ची जुबान बन जाती है। इसी ख्याल को साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। कभी कभी दिल जो कहता है वही सबसे बड़ा सच होता है। तो आइए सुनते हैं दिल की धड़कनों को सिरों में पिरोते हुए ये प्यारा सा गीत।

लेकिन श्रोताओं, हर रिश्ते में कभी ना कभी छोटी छोटी नाराजगियां भी आ जाती हैं। रूठना भी प्यार का एक रंग है और उसका मनाना सबसे प्यारी अदा। इसी नाजुक जज्बातों को बयां करता है हमारा अगला गीत। इस गीत में थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ी सी मुस्कुराहट और ढेर सारा प्यार। तो सुनिए ये सदाबहार गीत।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना ज्वार भाटा फिल्म में। जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी एक मुस्कान और एक प्यार भरा लफ्ज सारी नाराजगी दूर कर देता है। और अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, हर महफिल की तरह हमारी संगीत की इस महफिल को भी आज के लिए अलविदा कहना होगा। लेकिन विदाई का मतलब जुदाई नहीं, बल्कि अगली मुलाकात का वादा होता है। इसी एहसास के साथ सुनिए आज का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जिन गीतों को आपने सुना, उन्होंने हमें सिखाया कि रिश्तों में शुक्रिया भी है, दिल की आवाज़ भी।

देखने का अंदाज भी है और मुस्कुराते हुए विदा लेने की अदा भी। इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपसे होगी मुलाकात, मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला आपसे अनुमति चाहता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ऋषिकेश गांगुर्डे का राग बागेश्री में गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाल मनावे तुम। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं पियरवा घर आओ।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप ऋषिकेश गांगुरडे का राग बागेश्री में गायन सुन रहे थे। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी जिसके बोल थे लाल मनावे। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी, बोल थे पियरवा घर आवो। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों

0: और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture.